0: placards and the tricolour. The Congress workers raised slogans against the Modi minister, who is caught in the eye of the storm. The protesters were stopped from approaching Pradhan's residence and were temporarily detained when they defied the curbs.
1: So right there, the police action begins in the national capital. These are the karyakartas of Indian Youth Congress who are being detained by the Delhi police personnel, and they have been put into the bus. That is Uday Bhanu Chib, the Youth Congress president, who has been taken into detention by the Delhi police.
0: A similar scene unfolded outside the office of the National Testing Agency in Delhi, where NSUI workers also staged a protest, holding placards and demanding a ban on the NTA.
2: हम बदलाव चाहते हैं. NTA को बैन कराना चाहते हैं. 2000 जब लागू हुआ था NTA, इस मकसद के साथ लागू करा गया था कि जितनी पेपर लीक की समस्या है उसको खत्म करा जाए, उसको समाप्त करा जाए. परंतु जब से NTA लागू हुआ है पेपर लीक बढ़ते जा रहे. धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री है अपने बयानों से भागते हैं, पेपर लीक को आम समझा हुआ है.
0: Not just Netas, even doctors' bodies have expressed concerns over the matter. The United Doctors Front has approached the Supreme Court of India regarding the paper leak, urging the Apex Court to dissolve the NTA.
3: Har paper leak, exam controversy ke baad, students, parents, unki family suffer karti hain. Isliye humne Honorable Supreme Court se demand ki hai. India should now have an independent examination authority created through the Act of Parliament.
0: Meanwhile, the Delhi Medical Association wrote a letter to Pradhan expressing concern over the paper cancellation and demanded strict action against the culprits. The Modi government, on the other hand, is going all out against the paper leak mafia. The CBI has arrested Pune-based chemistry lecturer P.V. Kulkarni, claiming he was the kingpin behind the paper leak. According to investigators, P.V. Kulkarni leaked question papers and answer keys to aspirants during secret tuition sessions in Pune. The accused was linked to the examination process through the National Testing Agency, giving him access to confidential NEET papers for the May 3rd exam. The CBI has also arrested Pune-based senior botany teacher Manisha Mandhari. Meanwhile, Kulkarni and another key accused Manisha Vaghmare have now been sent to 10-day CBI custody. Other accused are also being interrogated. The government has made it clear, no tolerance towards culprits.
4: CBI gehra tak jayegi, kisi ko is bar baksa nahi jayega. पिछले बार भी बक्सा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधा कृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है.
0: पेपर लीक्स हैव बीन अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर सेवरल गवर्नमेंट्स इन द पास्ट एंड इवन टुडे. द क्वेश्चन इज, विल द मोदी गवर्नमेंट दिस टाइम डिसमेंटल द पेपर माफिया गैंग परमानेंटली वंस एंड फॉर ऑल? विद अमित भारद्वाज, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे.
5: Colleague Divyesh Singh visited the kingpin P.V. Kulkarni's residence, the same place where he was picked up from by the CBI. Kulkarni stayed at Latur and would often visit Delhi for NTA-related meetings. Take a look.
6: We're right now present in Latur, and behind me you see this is the residence of Professor P.V. Kulkarni, the kingpin in the NEET paper leak case 2026. Mr. P.V. Kulkarni was a chemistry professor at Dayanand College in Latur. After that, he retired and started working for NTA as a subject matter expert. He would help NTA in setting up the NEET question paper. But while setting up the NEET question paper, he also leaked the same questions to some students who had been gathered by another accused, Manisha Vaghmare. And these students, in fact, just a week before the NEET examination 2026, in the last week of April, were tutored, were brought in for classes, special coaching sessions, where P.V. Kulkarni shared the questions with them, orally dictated them the answers, asked them write the answers and by heart it, And these same questions then appeared in the NEET 2026 examinations. From P.V. Kulkarni, the paper goes to Manisha Vaghmare. From Manisha Vaghmare, it goes to Dhananjay Lokhande. Dhananjay Lokhande, it goes to Shubham Khernar. From Shubham Khernar in Nashik, it goes to Yash Yadav in Gurugram. And from Yash Yadav, the paper has gone to the Biwal family in Jaipur, Rajasthan. That is the network that has come to light. Another person arrested by the CBI in this case is Manisha Mandre, a botany professor from Pune again. She was also in touch with P.V. Kulkarni. She also worked with NTA for setting up the question paper. Her role is under probe. She has been arrested, but she is also involved in the leak. That is what CBI says. She had also helped set up the botany questions for the NEET 2026 exam, and she has shared the same with the same network, Manisha Vaghmare and P.V. Kulkarni. You can see the house that is located behind me. The ground floor was occupied by P.V. Kulkarni and his family. The first floor has 5 rooms. We spoke to the neighbors and we learned that the 5 rooms on the first floor have been rented out to NEET aspirants who come to Latur to prepare for NEET examinations every year. And around 15 NEET aspirants also stayed here. CBI can question them as well, whether they were contacted by P.V. Kulkarni for the paper or for NEET preparations, because he has taken special sessions, special coaching sessions with Manisha Vaghmare for NEET aspirants in Pune in the last week of April. That has come to light. That has been revealed in court. That has been informed by CBI to court as well. With camera person Ashish Dhamapurkar and Aniket Jadhav, this is Divesh Singh in Latur for India Today. Sachinji.
5: Let's now get you details and draw the exact characters of this interstate network, the NEET paper leak web, and who exactly are the accused. P.V. Kulkarni, who is the alleged kingpin, and he was the man who leaked the questions and correct answers to the aspirants in Pune. Manisha Mandhare, who was linked to Kulkarni, she leaked biology questions to the students. Manisha Vaghmare, who is connected to Kulkarni and Mandhare, and she was the one who helped circulate the paper and also received the funds. Dhananjay Lokhande, who is linked to Manisha Vaghmare, provided the NEET paper to Shubham. Dr. Omkar Shingote, who is Lokhande's friend, aided him very closely. And Shubham Khernar was the man who bought the NEET paper online for 10 lakh rupees. Yash Yadav was the one who purchased the paper from Shubham and then sold it to Mangilal. Mangilal Biwal, who bought the leaked paper for his son and forwarded it to Dinesh. Dinesh Biwal bought the leaked paper for his son. And well, after the Madhya Pradesh High Court declared Bhotshala a temple, a massive political storm is raging on. Finally, the order has opened the doors of Bhotshala and devotees gather inside the temple to offer prayers at the Hindu religious site. Madhya Pradesh High Court order is being hailed as a major victory for the Hindu side. The court also directed the government to provide separate land to Muslims for the construction of a mosque. Within hours of the verdict, the Hindu side had moved the Supreme Court, filing a caveat to ensure they are heard before any order is passed if the ruling is challenged. But even as one side celebrates, the Muslim side has come out swinging. AIMIM Chief Asaduddin Owaisi calling the judgment erroneous, alleging key laws and historical records were ignored, and even claiming the centre sided with the petitioners. AIMPLB cleric Khalid Rashid Farangi Mahali also expressed deep disappointment, saying Muslims have offered namaz at the site for centuries, but making it clear the fight is far from over, with the Supreme Court now the next stop. Meanwhile, MP Chief Minister Mohan Yadav has welcomed the order, calling it a moment that honours cultural heritage and asserting that the right to worship will now be ensured. He has also backed the call to bring back the idol of Ma Vagdevi from the UK, saying that the state will make all possible efforts to facilitate its return.
7: मुख्यमंत्री जी, आपने धार्मिक स्थल की बात की तो इसी पर एक जुड़ा हुआ सवाल है. राज्य के खास घटनाक्रम पर एक सवाल मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि जो भोजशाला को लेकर फैसला आया है उस पर मैं बात करना चाह रही हूं। आज इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने एसआई के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी। ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
8: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहां तो राहिर्म और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक और उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा। हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना। मुझे भोजशाला में भी मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहां बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न, लेकिन ये तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी, लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया। मध्यप्रदेश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं। न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले लें जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए, तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया।
9: मेरे को लगभग 30 साल हो गए हैं यहां पर संघर्ष करते करते, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं लेकिन कई ऐसे बलिदानी हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, कई जेल यात्राएं गई है, कई तो 30-30 बार जेल गए हैं, कई ने लाठियां खाई हैं, कई पे रासुका लगी है। ऐसे सभी हिंदू वीरों को आज उनको प्रणाम करने का मौका है और धार की जनता के शौर्य को सशत प्रणाम है।
10: यह न्यायालयीन लड़ाई 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के हरिशंकर जी जैन, विष्णु जी जैन, रजना अग्निहोत्री जी और विनय जोशी जी के साथ चालू हुई थी, जिसके अंदर बाद में एएसआई ने वहाँ का भोजशाला का सर्वेक्षण करा, रिपोर्ट पेश हुई और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये सुनवाई का क्रम जारी रहा और आज इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी पूरी आस्था भारत के संविधान में और न्यायपालिका में है और साथ ही जो है जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज की आशा और अपेक्षा के अनुरूप दिया है।
11: जो इस देश के नियम और कानून है उसके आधार पर काम होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के 3 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चले हुए, ज्ञानव्यापी मस्जिद का, बनारस का, संबल की मस्जिद का और मथुरा वृंदावन का, ये सारे के सारे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है, उससे मिला हुआ है। इस प्रकार का फैसला भी जो आया है ये तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इस पर किस प्रकार से ये किया जाएगा इस पर अध्ययन किया जाने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री,
12: मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। यार देख लो आज क्या हो रहा है, जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी, अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं, कोई पीआईएल डालता है 226 में और कोर्ट कैनॉट पास एन ऑर्डर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं उनको जबकि सिविल सूट चल रहा है उसका।
5: Meanwhile, my colleague Ravish Pal Singh also gets us this report from the Bhotshala complex.

0: अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे, जिसको माना गया था हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बनाया बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था, और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है, जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है, और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे। और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है, और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां, ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंभे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी, आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं, इस खंभे के ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। हम दूसरे खंभे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया, और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसको भी यहाँ पर एएसआई की टीम जब यहाँ सर्वे करने आई थी तो इसे कवर किया गया था, क्योंकि यहाँ पर भी इस प्रतिमा को पूरी तरीके से घिस दिया गया था। और यहाँ पे अगर आप देखें ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है, और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है, और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। भोजशाला के भीतर जो 104 खंभे हैं, खंभों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं, और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था, ये यज्ञ कुंड है। बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है, और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है, और उसके बाद यहाँ पे यह यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड, और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं, और ये पूरा परिसर है। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है और काफी ज्यादा कठोर यहाँ निगरानी होती है कई सीसीटीवी कैमरों से, ये पूरा परिसर हम आपको दिखा रहे हैं 104 खंभों पे टिका हुआ, जिसे खुद अब एएसआई ने स्वीकृति दी, उसके बाद हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगाई। लेकिन अगर अभी आप देखें तो अभी भी यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त आपको दिख जाएंगे इस पूरे स्थान पर।
1: From diplomacy to a relaxed stroll, Prime Minister Modi shared a candid moment with Netherlands Prime Minister Rob Jetten on the sidelines of the bilateral. We're leaving you with those pictures. Thank you so much for watching.

0: And at the top of this hour, we're getting some breaking news. This is regarding the NEET paper leak. India Today confronts the NEET paper leak. Accused P.V. Kulkarni and Manisha Vaghmare were being taken from court and the accused refused to answer to India Today questions. Manisha Vaghmare even fainted while she was taken outside the court. And the NEET paper leak accused were evasive on camera. India Today tracks the key accused, which are P.V. Kulkarni and Manisha Vaghmare, while they were being taken from the court. And that is when Manisha Vaghmare even fainted. We are showing you the visuals of her fainting, collapsing just after she was taken from the court. She has been granted 10-day custody and she collapsed while being escorted outside the court, and that is when India Today had confronted both these accused, P.V. Kulkarni and Manisha Vaghmare.
1: कितने कितने लोग इन्वॉल्वड हैं कितने लोग इन्वॉल्वड हैं आपके साथ
2: आपको छात्रों का भविष्य जो है
1: 22 लाख छात्र अभी दोबारा एग्जाम दे रहे हैं आपकी लालच की वजह से कुछ कहेंगे आप कुछ कहेंगे और कितने लोग इन्वॉल्वड हैं आपके साथ और कितने लोग इन्वॉल्वड हैं आपके साथ
2: हां पूर्ण प्रकरण बाहर
1: कितने कितने लोग इन्वॉल्वड हैं आपके साथ और कितने इन्वॉल्वड हैं कब से आपको पेपर लीक करवा रहे हैं कितने दिनों से पेपर लीक करवा रहे हैं आप कितने दिनों से पेपर लीक करवा रहे हैं कितने कितने लोग इन्वॉल्वड हैं कितने लोग इन्वॉल्वड हैं आपके साथ
2: आपको छात्रों का भविष्य
1: 22 लाख छात्र अभी दोबारा एग्जाम दे रहे हैं आपकी लालच की वजह से कुछ कहेंगे आप कुछ
2: कहेंगे 22 के साथ आपने उनके
1: और कितने लोग इन्वॉल्वड हैं आपके साथ और कितने लोग इन्वॉल्वड हैं आपके साथ
2: हां पूर्ण प्रकरण बाहर
1: कितने कितने लोग इन्वॉल्वड हैं आपके साथ और कितने इन्वॉल्वड हैं कब से आपको पेपर लीक करवा रहे हैं कितने दिनों से पेपर लीक करवा रहे हैं कितने दिनों से पेपर लीक करवा रहे हैं
0: So that was the confrontation. India Today had asked questions from the key accused in the NEET paper leak and they

0: He's a professor at RCC Coaching Center. So this person is a professor at a coaching center, and his name has also come to the fore. He is also a part of this entire network of leaking the NEET exam paper. Then comes Manisha Vaghmare, who has links to both the kingpins, P.V. Kulkarni, and also Manisha Mandhare, who has been arrested from Delhi. Now, she used to mobilize the students. She used to gather the students, to which P.V. Kulkarni and Manisha Mandhare then used to leak the questions and papers to those students which were gathered by Manisha Vaghmare. So she also played a crucial role in this paper leak case. She runs admission consultancy firm. So she also had a very active role in this entire case. Then comes Dhananjay Lokhande. So from P.V. Kulkarni, the paper used to go to Manisha Vaghmare, and from Manisha Vaghmare, it then reached Dhananjay Lokhande, who's an ex-medical aspirant. Dhananjay is a resident of Ahilyanagar, and Dhananjay received the question paper from Manisha Vaghmare, and from Dhananjay, the question paper then reached Shubham Kerner, who's a resident of Nashik, and he's a third-year Ayurvedic medical student. So the question paper then reached Nashik to Shubham Kerner, and from Nashik, the paper then reached Haryana's Gurugram, where it was bought by Yash Yadav. He bought the paper from Shubham Kerner, who was from Nashik, so the paper then reached Gurugram from Nashik, and from Gurugram, in Gurugram, it was bought by Yash Yadav, and after Gurugram, the paper then reached Jaipur, where Yash Yadav sold the paper to Mangilal Bival, whose family stays in Jaipur. So the paper then reached from Gurugram to Jaipur. And we're getting some breaking news from Madhya Pradesh. Burning train in Madhya Pradesh. Fire breaks out on moving train in Alot Ratlam district. Fire erupts in coach B1 of the Hazrat Nizamuddin Trivandrum Rajdhani Express. Incident occurs between Alot and Luni Richa stations. The site of the incident falls under the jurisdiction of the Kota Railway Division. The mishap took place on the earlier today, between the Luni Richa and Vikramgarh Alot stations within the Kota division. Upon receiving news of the accident, a relief and rescue team from the Kota Railway Division was dispatched to the scene. The fire originated in coach B1, located towards the front of the train. These are the visuals of the fire that erupted inside the Rajdhani Express. This is the Rajdhani Express that was going towards Trivandrum. And there were 68 passengers inside the coach. Within a matter of seconds, the flames engulfed the entire compartment. The train guard was the first to alert the loco pilot about the fire. And subsequently, the train was brought to a halt and the passengers were evacuated. So over 60 passengers were there in this train. This is the Hazrat Nizamuddin and Trivandrum Rajdhani Express. So this was a train from the national capital, from Hazrat Nizamuddin going towards Kerala. And this is the Rajdhani Express, Hazrat Nizamuddin Trivandrum Rajdhani Express. And this is coach B1 of the train where fire broke out. And my colleague Ravish Pal is now joining us with more details on this. Ravish, is aag ke baare mein aur kya jankari mil rahi hai? Kya koi casualties bhi saamne aa rahi hai? Aur injuries ke baare mein kya details mil rahi hai?
1: देखिए, अच्छी बात यह है कि फिलहाल कोई कैजुअलिटी इस पूरे मामले में नहीं हुई, लेकिन ये मामला थोड़ा गंभीर हो सकता था क्योंकि जिस वक्त ट्रेन में आग लगी उस वक्त ज्यादातर पैसेंजर जो हैं B1 कोच के वो सो रहे थे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 5:30 से 6 बजे के बीच की ये घटना है, और ऐसे में उस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं ट्रेन में, लेकिन एक कोच अटेंडेंट ने सबसे पहले B1 कोच में इस आग को उठते हुए देखा। उसने तुरंत इसकी सूचना जो है TT और साथ ही में जो लोको पायलट थे उन्हें दी, जिसके बाद इस ट्रेन को रोका गया। जब तक ट्रेन को रोका गया तब तक ये आलोट और लूची रीना रेलवे स्टेशन है जो कि कोटा रेल मंडल में आते हैं, और कोटा डिवीजन के अंतर्गत ये जो रेलवे ट्रैक है जो कि इंडिया के सबसे बिजिएस्ट रेलवे ट्रैक्स में से एक माना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है दिल्ली और मुंबई के बीच में, तो वहां पर ये इंसिडेंट हुआ। इस ट्रेन को रोका गया और उसके बाद 15 मिनट में जो पैसेंजर थे, जिनकी तकरीबन 68 नंबर्स में पैसेंजर्स थे, उन्हें बाहर निकाला गया है RPF की मदद से, और ट्रेन का जो दूसरा स्टाफ है उनकी मदद से। ज्यादातर लोगों के सामान भी बाहर निकाल लिए गए, कुछ एक सामान जरूर चले हैं लेकिन लोग पूरी तरीके से सेफ हैं। तकरीबन 2 घंटे तक इस रेलवे ट्रैक पे जो रेल ट्रैफिक है उसे रोका गया था, और इसके बाद ये जो B1 कोच है उसे अलग किया गया है और बाकी के जो पैसेंजर्स है उन्हें दूसरी ट्रेन से अब आगे रवाना किया गया है। देखिए ये घटना बहुत बड़ी हो सकती थी अगर समय रहते उस अटेंडर ने नहीं देखा होता, क्योंकि जिस वक्त आग लगी है ज्यादातर पैसेंजर सो रहे थे, क्योंकि एकदम सुबह सुबह की ये घटना है। और आप जो है कोटा डिवीजन की एक टीम जो है यहाँ पहुंच गई है, ऑफिशियल्स पहुंच गए रेलवे के, और ये पता लगाया जा रहा है कि वजह क्या रही होगी। लेकिन जो इनिशियली रिपोर्ट आ रही है हमारे पास उसमें ये बताया है रेलवे अथॉरिटीज ने कि शॉर्ट सर्किट जो है वो एक पॉसिबल रीजन हो सकता है इस आग के लिए, लेकिन अब रेलवे की जो इंक्वायरी है वो इसके बारे में और अच्छी जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन है वो दे सकेगी कि आखिरकार क्या वजह रही कि इतनी प्रीमियम ट्रेन में चलते टाइम अचानक आग लग गई है।
0: जी रवीश, हमारे साथ बने रहिए। सो दैट इज द लेटेस्ट दैट्स कमिंग इन, एंड व्हाट वी आर लर्निंग इज दैट देयर हैव बीन नो कैजुअलिटीज और इंजरीज। द पैसेंजर्स वर इवैक्यूएटेड। दिस हैपेंड इन द रतलाम डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। दिस आर द विजुअल्स। फायर broke out in the coach B1 of the Hazrat Nizamuddin Trivandrum Rajdhani Express. This is the Rajdhani Express, and the passengers were evacuated. So far, no casualties are being reported. Investigation is also underway. My colleague Ravish Pal continues to stay with us. Ravish, kya aag pe kabu pa liya gaya hai?
1: जी बिल्कुल, आग पे पूरा काबू पा लिया गया है। आग पूरी तरीके से बुझ चुकी है। जैसे कि मैंने बताया कि सुबह 6 बजे के आसपास की घटना थी, अब काफी समय हो गया है, आग तो बुझ गई है, लेकिन कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं कि आखिरकार बार बार चलती बसों चलती ट्रेनों में जो आग लग रही, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही अगर हम बात करें तो हैदराबाद के पास भी एक ट्रेन में आग लगी थी। हालांकि वो ट्रेन जो है वो बोर्डेड थी और खड़ी हुई थी, उसमें आग लगी थी, लेकिन वो भी एक एसी कोच था। और आज जो आग लगी है ये भी एक एसी कोच में आग लगी है। और गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो समझ में बहुत ज्यादा जाहिर सी बात है, वैसे भी टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, और छोटी सी स्पार्किंग या छोटी सी वायरिंग में फॉल्ट जो है वो भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है, और यही हमने यहाँ पे भी देखा है। अब रेलवे की इंक्वायरी के बाद ही और साफ हो सकेगा कि राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन में अगर ऐसी घटना हो रही है तो फिर इसे रोका कैसे जाए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन राहत की बात फिलहाल इतनी है कि कोच अटेंडर की सूझबूझ से और उसकी अवेयरनेस की वजह से जो आग है ये जब तक फैल पाती पूरे कोच को, उससे पहले ही सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया, और 68 पैसेंजर जो है वो एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गए कोच B1 में।
0: जी रवीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो फायर इरप्टेड इन कोच B1 ऑफ द हजरत निजामुद्दीन त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस। दीज आर द विजुअल्स ऑफ द सेम। दिस इंसिडेंट अकर्ड बिटवीन अलॉट एंड लूनी रिचा स्टेशंस, एंड दिस फॉल्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोटा रेलवे डिवीजन, एंड दिस इज द रतलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एंड दिस मिसहैप टुक प्लेस अर्लियर टुडे. And what we're learning is that there have been no casualties or injuries, as the passengers who were in the coach B1 were evacuated on time, and after which they were sent ahead in another train, and this coach was then disconnected from the train. And what we're learning is that the fire has also been doused, and all the passengers in this coach are safe. And with that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. More news and updates will continue on the other side.
2: You are watching India Today.
3: AI is changing the rules in tech. And staying relevant takes more than just keeping up. At WGU, our online technology master's programs give you the skills to keep pace with what's next. Learn more at wgu.edu.
4: Jam out to your favorite songs with today's hits. TuneIn has got you covered with the top songs of today, from pop songs to EDM bangers. And hip-hop beats.
5: I'm in the game, I should enjoy with this Jizu 3.
4: Today's hits will keep the party going 24-7. Listen now. Just search Today's Hits or ask your device to play Today's Hits on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. So thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Director, the taste of success.
7: The action never stops, and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first, welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
8: This has come out as a curb on consumption, which by no stretch of imagination, either politics or economics, is good, because a curb on consumption will lead to lesser economic growth. It will lead to lesser government revenue. Right. I don't think that is the intent of the government.

आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। बात वही है, एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है और हमारे एफर्ट्स की स्केल भी उतनी ही बड़ी है। रिकॉर्ड हाईवे कंस्ट्रक्शन, रिकॉर्ड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें और दुनिया का इतना बड़ा रिन्यूएबल एक्सपांशन, बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, आज का भारत कहता है हम ये लक्ष्य पाकर के ही रहेंगे।

0: मेरा और मेरे डेलीगेशन का गर्मजोशी से स्वागत के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लगभग एक दशक बाद नीदरलैंड की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड पार्टनरशिप ने उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है, भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। बात वही है, एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है और हमारे एफर्ट्स की स्केल भी उतनी ही बड़ी है। रिकॉर्ड हाईवे कंस्ट्रक्शन, रिकॉर्ड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें और दुनिया का इतना बड़ा रिन्यूएबल एक्सपांशन, बड़े

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
2: somebody save me,
1: to timeless favorites,
3: and life is like a song,
1: and new discoveries.
4: So much more than a history. Wake up.
1: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।

0: With that, we're beginning our bulletin with breaking news. It's coming in. This is with regards to Congress now slamming the High Court verdict on the Bhojshala dispute. What we are learning of, this is Digvijay Singh who has spoken about it and said, and I quote, "High Court verdict is very vague. Communal tension is being spread across India. Protected monument, not the place for worship." Digvijay Singh has termed the High Court's verdict in the Bhojshala case very vague, stating that communal tension is being spread across the country. Gwalior, Madhya Pradesh is where these reports are now coming in from. This is on the Bhojshala case, the historic verdict that came in just 2 days ago with regards to declaring the Bhojshala site a Saraswati temple. And now all work is being done by the state government to restore the very idol there, the Saraswati idol there that used to, in fact, be a part of that very temple. But now, amid all of this, there's already politics that's been snowballing over the issue. Digvijay Singh is the latest in that very political episode who's now come out to speak up. Let's listen into what he's saying.
1: उन्होंने आर्थिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दी थी जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि भोजशाला में कहीं मंदिर होने के प्रमाण नहीं मिले। ये बात है 2004 से 2006 के उसका ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है। आज पूरे देश जो सांप्रदायिक तनाव का माहौल पैदा किया जा रहा है उसी का ये बैठक है।
2: हाईकोर्ट का फैसले क्या सहमत नहीं आप? हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है
1: जिनकी बात ये है
2: सहमत नहीं आप?
1: हाईकोर्ट का फैसला जितना वेग है उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है और जब तक अध्ययन पूरा ना हो जाए मुझे उस पर कहना मेरा उचित नहीं।
0: So these are the latest comments that's come in with regards to the Bhojshala dispute, the verdict that's come in. Remember, the case has already seen a historic verdict coming from the Madhya Pradesh High Court, I beg your pardon. And at the same time, what both the Hindu side and the Muslim side seem to have done is the next stop for this very case would be the top court of the country, which is the Supreme Court. So the Hindu side already came in to file that caveat that their side be heard before any ruling is passed in the very court, the Supreme Court, that is. And on the other side, the Muslim side has vowed that they would also take it up to the Supreme Court to file the case, to fight the case further there. And they have not backed down. However, at the same time, if we see after years, this entire temple's doors were open to devotees yesterday, where first images had come in from with devotees pouring in and offering their prayers. And the original idol will be brought in from the United Kingdom, as has been promised by the Madhya Pradesh Chief Minister in an exclusive conversation with India Today itself earlier. And the process is currently underway for that. But on the other side, we also see politics that continues to snowball over this very matter. Let me quickly bring in Ravish Pal, our colleague, into the conversation here. Ravish, a very good afternoon to you. Sabse pehle Digvijay Singh ka ye kehna hai ki ye jo verdict hai, ye kaafi vague hai. Iski koi specific technicalities abhi bhi isse samajh nahi aata. Jo order aaya hai, usse स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं, पर हिंदू साइड इस चीज को बहुत बड़ी एक विक्ट्री की तरह देखती है कि एट द एंड ऑफ द डे रूलिंग जो आई है, जो वर्डिक्ट आई है, वो उन्हीं के साइड में आई है. अब नेक्स्ट स्टेप होगा इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना, बट उसके पहले ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है कांग्रेस की तरफ से, जो भी कॉमेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में और क्या जानकारी है?
3: देखिए, दिग्विजय सिंह का यह दूसरा बयान है भोजशाला के मामले को लेके, क्योंकि जिस दिन ये डिसीजन आया था हाई कोर्ट की इंदौर बेंच का फ्राइडे को, उस दिन भी दिग्विजय सिंह ने यही बातें की थी. हालांकि तब जजमेंट बहुत ज़्यादा क्लियर हो नहीं पाया था क्योंकि दिग्विजय सिंह इंदौर में थे, उन्होंने उस वक्त ये डिसीजन के बाद जो है अपना स्टेटमेंट दिया था. लेकिन आज ग्वालियर में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो उसी का एक तरीके से रिपीटेशन है. दिग्विजय सिंह का कहना है कि अभी इस फैसले को, इस जजमेंट को बहुत अच्छे से डिटेल से स्टडी करने की ज़रूरत है. लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं, अब तो सैटरडे शाम को शनिवार शाम को एएसआई की तरफ से बकायदा ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। एएसआई ने अपने पूरे ऑर्डर में इस स्ट्रक्चर को मंदिर कहा है। इसमें कहीं भी कलाम मौला मॉस्क, जो कि अब तक एएसआई कहता आया था, उसका जिक्र नहीं है। और इसके साथ ही एएसआई ने साफ कर दिया है कि 365 दिन यानी साल भर, यानी जो हिंदू पक्ष की एंट्री पर रिस्ट्रिक्शंस थी, सिर्फ ट्यूजडे को या फिर वसंत पंचमी पर वो पूजा करने जा सकते थे, उसको हटा दिया एएसआई ने। और एएसआई ने साफ कर दिया कि क्योंकि हाईकोर्ट के डिसीजन में इसे एक मंदिर करार दिया गया है, तो ऐसे में हिंदू पक्ष जो है अब वो साल में किसी भी दिन जाकर के यहाँ पूजा कर सकता है। और शायद यही वजह है कि आज रविवार होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग न केवल भोजशाला पहुंचे बल्कि पूजा भी कर रहे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जिन्होंने इसको एक तरीके से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अभी जाएगा क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मुस्लिम पक्ष का, वो जाएंगे। लेकिन इस बीच में पॉलिटिक्स जो है वो तेज हो गई है क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है उन्होंने इंडिया टुडे से बात करते हुए साफ कहा था कि हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको मध्य प्रदेश में धार में धीरे धीरे लागू किया जाएगा, और ऐसे तरीके से लागू किया जाएगा कि जिस तरीके से लोगों ने अयोध्या के वर्डिक्ट को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया, इस वर्डिक्ट को भी वो एक्सेप्ट करेंगे, दोनों ही पक्ष जो है, भले वो मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, और बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के जो है इस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करते हुए भोजशाला में जो स्थिति बनाई गई है हाईकोर्ट की तरफ से उसे लागू किया जाएगा।
0: जी रवेश, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद, बट आप हमारे साथ बने रहे। व्यूअर्स, देयर इज मोर न्यूज इट्स कमिंग इन एट दिस पॉइंट। व्हाइल वी आर क्लोजली ट्रैकिंग द भोजशाला वर्डिक्ट एंड द पॉलिटिक्स अराउंड इट, देयर इज मोर न्यूज कमिंग इन एट दिस पॉइंट। लेट्स क्विकली टेक अ लुक। Now this is on a different note. Jamiat flags rising communalism in India. Jamiat opposes UCC and the Vande Mataram diktat. Jamiat accuses the government of politics of fear and hatred. And they've come out to say, and I quote, polarization is being used for power. Islam cannot be erased. Unite against the fascist forces. Jamiat cries divisive ideological push in the country. Islamic seminary says fear can't govern India. It's an influential seminary that comes out to now say Islam is under attack. This is the latest comments that's coming from the Jamiat at this given point of time with regards to communalism. And they have to say that that is on the rise and there are certain fear-mongering tactics that are being used to govern India. These are, again, allegations that have come in from the Islamic seminary itself. Latest comments and concerns that they have flagged that we are bringing to you. Taking your focus back to the state of Madhya Pradesh, Noida dowry horror that had in fact come in, wherein former judge's Bahu found dead in Noida home. It's an ex-judge and lawyer's son faced dowry death charges. It's 31-year-old Twisha, who is 2 months pregnant, and her mother has come out to say that Twisha was physically abused for dowry. The accused mother and son duo are now out on bail. Remember, this news had come in 3 days back. Twisha's mother has now come out to say that the ex-judge is influencing the probe and that the transfer of this case has been made to Delhi. There was no last rites performed 5 days after Twisha's death took place. No last rites 5 days after her death came out to be reported. This news, in fact, came in from Bhopal, where the bail was granted to the mother and son in the death case of Twisha Sharma, daughter-in-law of former judge Giribala. Let's quickly take you through the response of Twisha's mother in this entire case before we bring in Ravish for more details.
4: जमानत कैंसिल कराना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे ऊपर जो हो रहा है, हमारा कोई भी साथ नहीं देगा, सब उनकी साइड की है यहाँ पर, और हमें डर है यहाँ पर अपनी जान का भी डर है।
5: अंतिम संस्कार भी नहीं किया अभी आप लोगों ने?
4: नहीं, नहीं, नहीं।
5: क्या वजह है, क्यों, क्या मांग कर रहे हैं?
4: हमें पोस्टमार्टम कराना।
0: On that note, let me bring in Ravish Pal back to the conversation here. Ravish, ये जो हत्या हुई थी, ये जो सुसाइड से जो मारे गए थे एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इस पे अभी त्विशा की माता जी जो है वो बोल रही है कि इनको मारा गया था, और ये जो केस का अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी जजमेंट आया, जिसमें जो मदर और सन का डुओ है जिनको बेल मिल चुका है, उनका कहना है कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि देयर इज एन इन्फ्लुएंस फॉर्मर जज गिरिबाला के इन्फ्लुएंस में ये सारा कार्रवाई जो चल रही है इस पूरे केस में वो उसी तरीके से निभाया जा रहा है। और क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे केस में अभी?
3: देखिए, इस पूरे केस में सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको दिखाते हैं, दिखा इसलिए रहे क्योंकि चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर इस वक्त ट्रिशा की पूरी फैमिली जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। और पीछे अगर आप देखें ये जो बड़ी संख्या में पुलिस पर्सनल आपको दिख जाएंगे, ये दरअसल ट्रिशा की जो फैमिली सीएम हाउस पहुंची हुई है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उनके लिए ये पूरी अरेंजमेंट्स यहाँ की गई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये सामने सीएम हाउस है और ठीक सामने की तरफ अगर आप देखें तो ट्रिशा की पूरी फैमिली जो है वो यहाँ प्रदर्शन कर रही थी और यहाँ पे वो बैठी हुई है। ये ट्रिशा की मदर है जो बार बार बेहोश हो रही है, यहाँ पे उनकी तबीयत खराब हो गई है क्योंकि उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ, उनका कहना है कि अब तक जस्टिस मिल नहीं पा रहा, बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपके हस्बैंड अंदर गए हुए हैं बात करने, लेकिन इतने दिन से आप लोग भोपाल में हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है, क्या इन्फ्लुएंशियल फैमिली है इस वजह से हो नहीं रहा है कि किस वजह से अब तक आप बेटी का जो है आप लोग ने क्रिमेशन भी नहीं किया?
6: तबीयत ठीक नहीं है, क्रिमेशन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें रीपोस्टमार्टम कराना है उनका और हमें भी उनकी जर्नी कंप्लीट करनी है, हमें भी उनको एक अच्छा क्रिमेशन देना है। बट हम उनका पीएम दोबारा कराना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो यहाँ से उनकी बॉडी एम्स दिल्ली में मूव हो, हमें ये परमिशन मिले कि हम वहाँ पे ले जाके उनका रीपोस्टमार्टम कराएं और फिर हम उनका क्रिमेशन करें।
3: सीएम हाउस के बाहर
7: ट्रांसफर होना चाहिए,
3: दिल्ली में ट्रांसफर होना
7: चाहिए। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर हमारे कोई भी लोग नहीं है।
3: यहाँ पे आप लोग को लग रहा है इंसाफ नहीं मिलेगा?
7: नहीं मिलेगा।
3: तो मुख्यमंत्री से क्या मांगे आप लोग सीएम हाउस के बाहर बैठे हुए?
7: कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आप ऐसे मत करो, कुछ भी नहीं, आपके आंखों के आगे हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं।

0: जो दूसरे लोगों की न्यूज़ भी सुनती थी टीवी पे, वो भी बोलती थी गलत है, कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती थी।
1: यहाँ पे आप लोग को क्यों रोक दिया गया, अंदर जाने किसको दिया फिर?
2: मेरे को तुषार के फादर अंदर गए हैं, वो बात कर रहे हैं।
1: ये फीमेल मेंबर्स हैं फैमिली की, आगे हम आपको और भी लोगों से बात कराते हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से है, क्योंकि फैमिली जो है वो यहाँ पे बार बार यही मांग कर रही है कि सेकंड पोस्टमार्टम की मांग सर क्यों आप लोग की तरफ से की जा रही है यहाँ पे, जो फर्स्ट पोस्टमार्टम है उसमें क्या आपको लग रहा है कि गलती है?
3: सेकेंड पोस्टमार्टम की हम डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो फर्स्ट पोस्टमार्टम है उसमें जो त्विशा की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो भी रॉन्ग हैं। हम तो अभी डिस्क्रिप्शंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक डिटेल्स हैं। उनकी हाइट 173 सेंटीमीटर थी जो कि उसमें 166 सेंटीमीटर लिखा है। उसके बाद जो बॉडी पे जो ब्रूजेज हैं उसकी कोई डिटेल जस्टिफिकेशन या डिटेल उस पर एलेबोरेशन ही नहीं है कि वो क्यों हुए, कैसे हुए। इवन हम जब कल पुलिस स्टेशन में गए थे तो उनकी भी यही चीज़ थी कि क्यों सिर्फ एक छोटा सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना करके कि बस इट्स सिंपल ब्रूजेस, उसमें कुछ भी ये नहीं लिखा गया कि कैसे हो सकता है, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ कुछ भी उसमें मेंशन नहीं है। इवन जो नेक पे उस पर मार्क हैं वो नीचे की तरफ हैं, जबकि पोस्टमार्टम में जो आया है ये आया है ऊपर की तरफ। इवन वो भी पूरी की पूरी फॉर्ज्ड है, मतलब पोस्टमार्टम आप फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक एवरीथिंग इज फॉर्ज्ड, हर चीज उसमें फॉर्ज्ड ही है।
1: माँ और बेटे को तो बेल मिल गई उस पे, क्या कहेंगे?
3: अभी बेटे को नहीं मिली है, कल उनकी सुनवाई है मंडे को, माँ को मिली है। अब माँ को जो बेल मिली है उसके जो तीन मेन कारण हैं वो हैं, पहले कि उनका बोला कि 63 साल की है एज का एक उसमें वो बताया, दूसरा बताया कि एक चैट था जिसमें ये था त्विशा का अपनी मम्मी से कि उनकी मम्मी उनसे पूछती हैं कि अभी अम्मा कैसी हैं, तो त्विशा ने कहा था कि अम्मा ठीक हैं, जस्ट उसके बेसिस पे कि इनके रिलेशंस अम्मा के साथ अच्छे थे, दैट इज़ वाई द बेल हैज़ बिन ग्रांटेड। जो कि सरासर एक आपको हमने मतलब हमने कोर्ट के सामने अप्रॉक्सीमेटली 50-60 अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस की, बहुत सारे चैट्स प्रोड्यूस किए जिसमें उनके साथ क्या एक्यूजेशन हुए हैं, क्या अत्याचार हुई है, हर चीज़ उसमें मैंशन किया हुआ है, लेकिन बस कोर्ट ने उसमें से बस एक वो लाइन उठा करके उस बेसिस पर उनको ग्रांट कर दिया।
1: सर आप लोग कब से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आरसीएम हाउस में?
4: हम लोग आज सुबह से आए हैं। मैं इसके बेल के बारे में बताना चाहूंगा कि इनको जो बेल दी गई है वो 63 एज है इसलिए उनको बेल दी गई है, ये कारण दिया गया है जज के साथ। वो जज जो है वो भी उनके जूनियर रही है, कभी
1: कल वकील भी काफी आ गए थे कोर्ट में दूसरे।
4: हाँ, कल वो बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो 63 एज के ऊपर फिर जितने लोगों ने अगर ऐसे क्राइम किए हुए हैं उन सबको छोड़ देना चाहिए, फिर आसाराम बापू को छोड़ दीजिए, सभी को जिन्होंने 63 के एज के ऊपर है उन सबको फिर बरी कर दीजिए, जेल में क्यों रखा है उन लोगों को? आपको मैं बताता हूँ, एम्स में हम लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के ऊपर डाउट इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हम लोग आज वहाँ पर गए थे एम्स में एक एप्लीकेशन देने के लिए कि बॉडी को प्रॉपरली प्रिजर्व किया जाए। वहाँ पे एक डॉक्टर अरनीत अरोरा थी वहाँ पे, उन्होंने हमारा एक सिंपल एप्लीकेशन लेने के लिए, जो एप्लीकेशन कमिश्नर ने एक्सेप्ट किया है वो एप्लीकेशन की कॉपी लेने के लिए उन्होंने एक घंटा लगाया, मतलब देवर नॉट रेडी टू टेक द एप्लीकेशन।
1: आपका ये कहना है कि हर तरफ से इन्फ्लुएंस हो रहा है?
4: नहीं, देखिए हमारे देश में तो क्या है ना, हमारे देश में तो वोट भी बिक जाता है, 1500 रुपये अगर लाडली बहन को दे देते हैं तो वो वोट भी बिक जाता है, तो सब कुछ बिकाऊ है, न्याय बिकाऊ है, तो एम्स के डॉक्टर भी बिकाऊ हैं, सब कुछ बिकाऊ है। और इस चक्कर में क्या होता है ना, लेकिन अगर बिकाऊ है तो फिर आप टेंडर निकालिए, आप बताइए न्याय मिलेगा, जो ज्यादा पैसा देगा उसको टेंडर देंगे, तो ऑफिशियल कीजिए, तो ये करप्शन तो कम होगा, ऑफिशियली हम लोग न्याय खरीदेंगे। जिसके बाद
1: कोर्ट में क्या हो गया था जब ये सुनवाई हो रही थी? तो
4: कोर्ट में काफी मुझे भी धमकियां दी गई और जो मेरा जो उनका बहन भाई है मैं जो फौज में आ रहा मेजर है उसको भी मारने पीटने की कोशिश की गई, मतलब मारने पीटने की कोशिश की गई, मारपीट ही दिया समझ लीजिए।
1: किन लोगों ने किया ये?
4: वकील लोगों ने, सारे वकील उनके फेवर में थे, वो बोल रहे थे गिरीवाला बहुत अच्छी औरत है, वो लड़की का कैरेक्टर ही खराब था, इस तरीके के कमेंट्स कर रहे थे, जानबूझ के हरेस किया जा रहा था। फिर लिटरली मतलब हमको फौज बुलानी, क्यूआरटी बुलाना पड़ा, क्यूआरटी आई तो फिर हमारी हेयरिंग हुई, नहीं तो हमारी हेयरिंग भी नहीं होनी थी। कोर्ट में तीन जज अगर हमारा हेयरिंग करने के लिए मना कर देते हैं, तीसरी हेयरिंग में जाकर वो हेयरिंग होती है शाम को 5:30 बजे की, जिससे कि हम लोग उसको चैलेंज ना कर पाए, इस तरीके से सब कुछ मैनिपुलेटेड किया जाता है। आप सोचिए सीएम को, बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को, गवर्नर को, प्राइम मिनिस्टर को, अमित शाह जी को, सब लोगों को, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, सबको हम लोग ट्वीट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कोई हमको पूछने नहीं आया।
1: चलो आप देख सकते हैं जो फैमिली मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस बात से परेशान हैं, निराश हैं कि सुनवाई हो नहीं रही है, और सिर्फ यही नहीं बार बार कोशिश करने के बावजूद भी जो है वो उनको बेटी को जो लेके इंसाफ मिलना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। फिलहाल ये सीएम हाउस के बाहर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे जो पूरी फैमिली है वो

0: यहाँ बैठी हुई है, प्रोटेस्ट कर रही है, डिमांड कर रही है कि बेटी को उनको जस्टिस मिले। और सिर्फ यही नहीं, जो जो अक्यूज्ड हैं, जिनको फिलहाल बेल मिल गई है, उन अक्यूज्ड को जो है वो दोबारा गिरफ्तार किया जाए और जो स्ट्रिक्ट एक्शन जो है इसमें उस फैमिली पे लिया जाए जहाँ पे इनकी बेटी की मौत हुई है।
1: ये जो फैमिली मेंबर्स और इनके रिलेटिव्स वहां पे इकट्ठे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रेज कर रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पहली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सारे डिटेल्स ऐसे हैं जो कि त्विशा की है ही नहीं, बिगिनिंग विथ त्विशा की खुद की डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद उनकी जो इंजरीज थी उसकी भी डिस्क्रिप्शन गलत है और इनकम्प्लीट है। तो उन्होंने दूसरी पोस्टमार्टम की मांग रखी है फिलहाल, एक तो उसके बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए, और दूसरा ये कि ऐसे क्या एविडेंसेस प्रेजेंट किया था त्विशा ने अपने फैमिली मेंबर्स को, जो हरासमेंट वो खुद बेयर कर रही थी अपने ससुराल में, उसको लेकर उसने क्या क्या डिटेल्स अपने पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ शेयर किया था, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए प्लीज।
0: बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो फैमिली है वो सेकंड पोस्टमार्टम की मांग सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि जो डिस्क्रिप्शन है त्विशा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो मैच नहीं करता है, जो त्विशा की हाइट थी या जो शरीर पे निशान थे वो तमाम चीज़ें जो है उसमें या तो गलत दी गई हैं या फिर उसका जिक्र ही नहीं है। तो ये एलिगेशंस फैमिली की तरफ से पहले तो लगाए गए हैं और इसीलिए वो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है एम्स में जो पोस्टमार्टम हुआ है, पहले फैमिली को इस बात का यकीन था कि एम्स में कम से कम ठीक तरीके से पोस्टमार्टम होगा, लेकिन एम्स की रिपोर्ट में जो डिस्क्रिप्शन हुआ है त्विशा का वो बिल्कुल विपरीत है जो त्विशा का शरीर है उससे, और इसीलिए उन्होंने इसमें मांग की है कि सेकंड पोस्टमार्टम होना चाहिए। क्रिमिशन कर नहीं रहे, 5 दिन से ऊपर हो चुके हैं, वो क्रिमिशन अब तक नहीं कर रहे हैं। बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए भी इन्होंने एम्स में एप्लीकेशन दी हुई है। लेकिन दूसरी बात, त्विशा ने क्या बताया था, देखिए जो एलिगेशंस है फैमिली के वो यहाँ पे त्विशा की फैमिली का कहना है कि उसका, त्विशा का जो फोन है वो कई बार अपने भाई को जो कि आर्मी में मेजर है वो ये बता चुकी थी कि जो प्रेगनेंसी हुई थी उसके बाद से लेकर के त्विशा पे लगातार जो प्रेशर है वो बना हुआ था, उसे एक तरीके से प्रताड़ित किया जाता था और वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उसने अपना रिजर्वेशन करवा लिया था रेलवे की ओर से नोएडा वापस जाने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रेन बोर्ड करती या फिर रिजर्वेशन जिस दिन था उस दिन वो जा पाती नोएडा, उससे पहले ही फैमिली के पास एक फ़ोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि त्विशा ने फांसी लगा ली है। फैमिली जो है, जो इन लॉज हैं त्विशा के, उन्होंने सबसे पहले पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो यही दी थी कि जब वो नीचे बैठे हुए थे तो त्विशा अचानक से ऊपर जाती है और ऊपर जाकर के जो अपर फ्लोर से वहां जाकर के वो फांसी लगा लेती है। लेकिन इन तमाम एलिगेशंस को जो त्विशा के भाई है उन्होंने ये कह करके खारिज कर दिया कि ये जो तमाम क्लेम्स हैं कि त्विशा तो खुद इन लॉज से काफी ज्यादा परेशान रहती थी और कई बार त्विशा ने अपने भाई को ये फोन करके बताया था कि उसे वो ले जाए अपने साथ क्योंकि यहाँ वो रह नहीं सकती और वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है।
1: तो लड़के की फैमिली की साइड का इन्फॉर्मेशन काफी अलग है त्विशा के फैमिली के साइड के इन्फॉर्मेशन से। रवीश, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग अबाउट दिस एंटायर केस एट दिस गिवन पॉइंट। इट्स एट अ वेरी सेंसिटिव स्टेज एंड वी आर फॉलोइंग इट अप इन टर्म्स ऑफ व्हाट द प्रोब कम्स आउट टू रिवील, बट फॉर नाउ दैट्स ऑल दैट वी हैड पैक्ड फॉर यू इन दिस वेरी आवर bulletin. Do stay tuned to India Today as we come back in the next hour with more news and updates. Thank you for watching.
2: You are watching India Today.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Hot Mics, now streaming on TuneIn, your go-to show for sports, politics, entertainment, tech, and pop culture, hosted by me, Billy Bush. Get unfiltered takes, A-list guests, real talk, no fluff. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of.
6: thank God I get to.
5: TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
7: Feels like summer. Monte Carlo. It's the way you make me feel.
8: The India Today Media Institute could not have been founded on a firmer footing. The India Today Group's strength in understanding and delivering high-quality content is the very foundation of ITMI. We take pride in training our students to be exceptionally professional. So register now at www.indiatodaymediainstitute.in or call us on 95-600-65465.
9: Three states, three leaders, three defining challenges. In Kerala, V.D. Satishan faces the challenge of reducing debt and providing employment. In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay looks to ensure financial and political stability. And in West Bengal, Suvendu Adhikari aims to make the state a major industrial power. Read it in the latest issue of India Today. Making Sense of India, now available for speed delivery on Amazon and Blinkit. Subscribe now at subscriptions.intoday.in.

0: ये चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी और उनके नेता, उस समय डर के मरे लोगों ने कंप्लेन नहीं किया था और पुलिस भी नहीं लेता। पुलिस भी तैयार है, जनता भी तैयार है, न्याय हमको दिलाना है सबको और होगा।
1: ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम इन पब्लिक स्पीचेस स्टेटमेंट्स आर मेड बाय पीपल, स्पीचेस आर मेड बाय पीपल। आई हैव सीन द सो कॉल्ड स्टेटमेंट बाय अभिषेक बनर्जी, आई डिड नॉट फाइंड इट ऑफेंसिव। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट इज यूजिंग इट्स पावर to browbeat TMC people, I totally oppose. I'm sure that Abhishek Banerjee would take legal steps against the same.
2: देखिए, चुनाव के वक्त तो बहुत कुछ बोला जाता है, चुनाव का परिवेश ही ऐसा रहता है। इन गुड स्पिरिट चुनाव के वक्त जो बोला जाता है चुनाव के बाद उसको छोड़ देना चाहिए, उसको लेके और सोचना नहीं चाहिए। चुनाव में हार जीत होने के बाद यूजुअली जो बोला जाता है उसको लेके और कोई ध्यान नहीं देता है, पर यहाँ दिया जा रहा है। हमने सुना कि एक FIR भी लॉन्च हुआ है। अब लॉन्च हुआ है तो वो कानूनी कार्रवाई जो होना होगा वो होगा, लेकिन इन गुड स्पिरिट इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
3: वो जो बयान दिया इलेक्शन को पहले जो रैली किया, वो एक दिन मैं खुद सुना, वो बोला जो 4 तारीख 12 बजने दीजिए, तुम्हारा कौन दिल्ली का बाप है मैं देख लूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी, ये तो थ्रेड है, तो लोग को खिलाफ है, तो लोग को खिलाफ कोई बयान देगी तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसीलिए FIR हुआ, वो जांच होगी, कोई गिरफ्तार करने पड़ेगा तो गिरफ्तार होगी।
4: On that note, we have breaking news coming in from West Bengal itself. This is a court that's now come in. Bulldozers will roll across the country. Illegal occupants, beware. This is Dilip Ghosh warning in Kharagpur. Large-scale eviction drives were carried out, remember, at several railway locations in Howrah last night itself. Many shopkeepers were reportedly suffering from heavy losses as their stalls and belongings were damaged during the railway administration's anti-encroachment operation. Reacting to the issue, State Panchayat Department Minister Dilip Ghosh has now made strong remarks on Sunday morning in Kharagpur on the same. Take a look as to what he has said.
5: देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
4: Anupam Mishra joining me on the broadcast with more details on this. Anupam, this comes in, very good afternoon to you firstly. This comes in as a warning issued by West Bengal Minister Dilip Ghosh. But what it also does is, it does spread a bit of a uncomfortable atmosphere amongst people in West Bengal when it comes in so early in the governance of the BJP in the very state. And also the fact that we have been getting reports from West Bengal, from different regions in West Bengal, of such bulldozer action taking place. And people have reportedly come out with such concerns that they are facing a lot of troubles because these bulldozer actions are taking place without any notice. And on a lot of people who are saying that they aren't even, accused in any particular encroachment cases.
6: Well, you know, bulldozer action is a very new thing in West Bengal. Earlier, former Chief Minister Mamata Banerjee had criticized the bulldozer action, especially in Uttar Pradesh and BJP ruled state. So bulldozers never seen in West Bengal earlier, but after 4th of May and when the BJP formed the government, we have seen several bulldozer actions, especially in Shialda station, in Howrah station last night, and in Tiljola also. Several places people are coming out in protest of bulldozer action. So it is also concerning for some people. They are also expressing their concern that without any notice, how bulldozer actions are taking place. But, you know, it's the...

0: On that note, viewers, a very good afternoon to you as you're watching India Today with me, Sriya Kundu. We are beginning the bulletin with breaking news right at the top, and this is from the West Asian War Theatre. It's a drone strike caused a fire outside a nuclear power plant in Abu Dhabi on Sunday, wherein authorities have come out to confirm this from the United Arab Emirates. The Abu Dhabi media office has said in a statement that the fire broke out in an external electrical generator outside the perimeter of Baraka nuclear power plant in Al Dhafra. There were no reports of injuries so far, and there's no impact on the radiological safety levels. As per reports, the drone strike, however, came as a fragile ceasefire between the United States and Iran has held, but tensions remain brewing and high and threaten to tip the Middle East back into an open warfare, prolonging the worldwide energy crisis that was sparked by the conflict in the very first place. These are latest details. Yes, we have Ashraf Wani joining us on the broadcast with more details on the same attack that's taken place. Ashraf, a very good afternoon to you. Just take us through the details of this very attack. It's a drone attack is what we are hearing. However, fortunately, no radio level radioactivity level concerns have been raised so far from the bombing right outside that nuclear plant.
1: Absolutely, Shreya. Actually, this is not the first time during the ceasefire when Iran has targeted UAE. We have seen in the recent times when not only the oil vessels, but also the shipping cargo ships were targeted, which were from the origin of the UAE and the Dubai. And today, this is a major escalation being seen not only by the UAE, but also by the Americans, because this is one of the main nuclear facility, or we can say nuclear powerhouse, in the Abu Dhabi Baraka water plant, which was targeted by the drones. So far, IRGC has not taken any responsibility of this drone attack, but it is being believed that this drone was fired by the Iran towards the UAE, and the specific target was this nuclear power plant, where it created a kind of a fire in one of the generator units. And so far, the UAE authorities are saying that they have controlled to some extent this fire. But as you said, the big relief is that there is not any kind of a leakage of nuclear material or nuclear substance, which is a kind of a big relief for the UAE.
0: Very true. It is indeed a big relief, and no injuries or casualties have been reported so far as well by the authorities there from this attack. Thank you, Ashraf, for bringing us those details. On that note, viewers, we're shifting our focus to more breaking news that's coming in. This is with regards to the Noida Dowry death case. This is Twisha's last Instagram chat that's now been accessed. It's with her friend Meenakshi, where Twisha was asking her friend not to marry. Twisha says, "I'm trapped, bro. Bas tu mat fasna." Just quoting what she has exactly said in that very chat. "Can't talk much. I will call when the time is right." Her friend Meenakshi replied, "I'm worried about you, Tuk Tuk. I love you so much. I am with you." This is the interaction, brief interaction that's taken place between the two friends. And remember, why this comes out to be very crucial is because while the family of the man who has been accused in this entire case, that is the husband of Twisha, has come out to claim that this was a suicide case. It is Twisha's family that's claimed that this was not a suicide, that this was under pressure, mental harassment consistently from the family of the very husband, because of which she was pushed to take this extreme step. And this comes in to be very crucial evidence at this point. Let me bring in Ravish Pal Singh, who's been tracking this case very closely in Bhopal, as the parents are based from there. The girl Twisha hails from Bhopal itself. Ravish, सबसे पहले ये जो चैट अब सामने आई है इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस बन जाता है इस केस में, इस चीज को प्रूव करने के लिए कि त्विशा के साथ मेंटल हैरेसमेंट शायद से हो रहा था उस फैमिली के अंदर, जो कि उनके पेरेंट्स ने, त्विशा के पेरेंट्स ने क्लेम किया है कि वो नाखुश थी इस शादी से और उसको टॉर्चर किया जा रहा था उस फैमिली द्वारा.
2: बिल्कुल, और आज जब त्रिशा के पेरेंट्स जो हैं वो मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने के लिए जब अंदर सीएम हाउस में गए थे तो उस दौरान उनके फैमिली मेंबर्स बाकी यहां मौजूद थे बाहर, उन्हीं में से एक उनकी सहेली है मीनाक्षी, और उस फ्रेंड के साथ चैट हुई थी त्रिशा की तकरीबन इस एलिज सुसाइड से एक हफ्ते पहले, और उसमें त्रिशा साफ तौर पर लिख रही है कि मैं तो फंस गई हूँ लेकिन तू इसमें मत फंसना, और ये कहीं ना कहीं एक क्रूशल एविडेंस साबित हो सकता है। परिवार का कहना है कि ये तमाम चीज़ें उन्होंने पुलिस को भी दिखाई है और मुख्यमंत्री की ओएसडी से, त्रिशा के पापा की आज जब मुलाकात हुई है तो उन्होंने भी ओएसडी को सीएम के ये तमाम मैसेजेस चैट्स के स्क्रीनशॉट दिखाए हैं और ये बताया है कि जो उनकी बेटी है वो लगातार हैरेस की जा रही थी और मेंटली टॉर्चर उसे हो रहा था, और ये भी आरोप लगाए हैं कि जो फिजिकल असॉल्ट है वो भी हुआ है उसके साथ, क्योंकि उसकी बॉडी पे ब्रूजेस थे जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शुरुआत में कोई जिक्र नहीं हुआ। तो फैमिली का कहना है कि ओएसडी जो है मुख्यमंत्री के, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ चूक हुई है, कुछ कमियां रह गई हैं और आगे इस पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ये तमाम बातें तो उन्होंने मानी। लेकिन इन सब के बीच में ऐसी कई सारी चीज़ें अब निकल के सामने आ रही है जो ये साफ तौर पर एक तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन के एक उस डायरेक्शन में ले जा रही है जिसमें ये दिख रहा है कि जो डिसीज्ड है त्रिशा वो कहीं ना कहीं इस शादी से खुश नहीं थी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट भी इंडिया टुडे ने एक्सेस की है, अभी वो हम आपको दिखाएंगे, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि त्रिशा जो है उसके डेथ से तकरीबन एक हफ्ते पहले ही उसने अबॉर्शन करवाया था, उसका अबॉर्शन हुआ था। ये शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है कि वो प्रेग्नेंट थी और डेथ से करीब एक हफ्ते पहले ही उसका अबॉर्शन हुआ था, और उसके बाद से ही त्रिशा जो है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थी और अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपनी मदर के साथ वो लगातार चैट्स में इस बात का जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से वो जिस घर में रह रही है वहाँ अब बिल्कुल नहीं रहना चाहती है और उसे बहुत हद तक फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। और ये तमाम चीजें,
0: रवेश एक चीज पूछना चाहूंगी, जो आपने अभी अबॉर्शन का मेंशन किया है, जी आपने जो अभी अबॉर्शन का मेंशन किया है, क्या कोई ऐसी खबर आई है कि अबॉर्शन उसके खुद के मर्जी से हुआ था या फिर फैमिली ने उसको पुश किया था इस स्टेप के लिए भी, जो लड़के की फैमिली थी?
2: देखिए अभी तक इसमें किसी भी फैमिली की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि ये त्रिशा ने अपनी मर्जी से अबॉर्शन करवाया था या इन लॉज के कहने पर अबॉर्शन करवाया था, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जो मैसेजेस भेजे हैं त्रिशा ने और जो चैट्स उनकी फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ, भाई के साथ, माँ के साथ है, उसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिख रहा है कि फिलहाल त्रिशा जो है वो काम करना चाहती थी, कुछ और आगे करना चाहती थी, और वो एक तरीके से ट्रैप्ड सी हो गई थी इस तरीके की लाइफस्टाइल में, जहाँ पे वो ना उसकी इन-लॉज के साथ अच्छी बन रही थी ना अपने हस्बैंड के साथ अच्छी बन रही थी, और इसका जिक्र एक बार नहीं कई बार उसने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ किया था।
0: जी रवीश, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, वी आर ट्रैकिंग दिस केस वेरी क्लोजली। इट कम्स आउट टू बी अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट्स टेकन प्लेस, एंड वेदर इट वॉज इनडीड सुसाइड और देयर वॉज more to this very case, that's something that's being investigated at length at this point of time. On that note, we're shifting our focus to more news that's coming in. Let's quickly take a look. Our next focus is on the National Testing Agency. This move that now is coming to highlight is amid the entire NEET paper leak case. NTA gets four new senior officers, but half of the 16 top posts still vacant since October 2024. Nearly a year after the NEET UG 2024 paper leak scandal triggered a sweeping administrative overhaul of the National Testing Agency, the central government has made fresh senior level appointments to the examination body after 2026 NEET UG paper leak. However, half of the 16 top posts created in response to the crisis remains to be vacant till date. The government has appointed Anuja Bapat, a 1998 batch Indian Statistical Service officer, and Richita Vij, a 2004 batch Indian Revenue Service Customs and Indirect Taxes officer, as joint secretaries at the NTA. And this comes in right after those two appointments which were made yesterday as well amid this entire fiasco. Separately, Akash Jain, a 2013 batch Indian Revenue Service Income Tax Officer, and Aditya Rajendran Bhojgadia of the Indian Audit and Accounts Service

0: उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
1: राहुल गांधी की आदत हो गई है कि हर चीज के लिए प्रधानमंत्री को ब्लेम करते हैं। नीट को लेकर जो दिक्कतें आई हैं उस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत विस्तार से जवाब दे दिया है और आइंदा दिक्कत ना आए इसकी पूरी गारंटी दी गई।
2: राहुल गांधी विपक्षी नेता के नाते से जो कहना कहें, परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो अप्रोप्रिएट एक्शन था, सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया, सीबीआई की जांच हो रही है, धरपकड़ हो रही है और ये भी हो गया कि जो लोग दोषी उनको सख्त से सजा मिलेगी और ये भी कह दिया कि आने वाले जितने एग्जाम हैं अब के बाद वह कंप्यूटर के माध्यम से होंगे, हार्ड कॉपीज नहीं होंगी।
3: On that very note, viewers, we are wrapping up the bulletin this hour right here. But do stay tuned to India Today as we keep coming back with all the top stories through the day. Thank you for watching.
4: You are watching India Today.
5: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
6: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
7: Ba-da-ba-ba-ba.
8: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay,
9: and that'll be me,
8: Norah Jones,
10: with a diamond implied you don't let her,
8: and Daniel Caesar.
11: Have a baby with me.
8: Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
13: So they were disallowed from speaking their language.
12: In-depth conversations with A-list celebrities.
14: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
12: True crime podcasts you just can't stop listening to.
15: Others escape justice to live and die in infamy.
12: Plus the news and sports content you crave in podcast form.
16: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
12: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.

0: जो ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत और नीदरलैंड की साझेदारी और मजबूत होगी और इसका लाभ आप सभी को भी होगा। भारतीय बिजनेस के लिए यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नीदरलैंड बनेगा। और इस जर्नी में हमारा डायस्पोरा ट्रस्टेड ब्रिज बन सकता है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
3: After multiple assassination attempts, they can't even get...
4: They're reliable.
5: Always when I need them.
2: To live sports action.
6: One-hand jam by LeBron on the break.
7: That's another three, Steph Curry.
2: And your favorite music.
8: Well, the dawn begins to crack.
2: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
9: Are watching India Today.
10: Very good evening, viewers. Welcome back. You're watching India Today with me, Sriya Kundu. And this hour, our focus is on that tragic case of dowry death, alleged dowry death that we are focusing on and following very closely. We'll bring you all of those details in this very hour's bulletin. But before that, let's quickly take a look at the headlines first. After fuel price rise, CNG prices hiked again. Total hike of 3 rupees in 48 hours. Taxi and auto fare likely to go up. Prime Minister Modi says global crisis may nullify the decades of gains.
11: दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा
10: CBI intensifies NEET paper leak crackdown. Key accused Manisha Mandare sent to 14-day CBI custody. CBI says Manisha exploited her role as subject expert and leaked the question paper. Political showdown erupts over the NEET paper leak. BJP hits back at Rahul Gandhi, accuses Congress of politicizing the issue. This after Rahul demands Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation. VD Satheshan gears up for the top Keralam job to take oath as Chief Minister tomorrow at Central Stadium in Thiruvananthapuram. UDF also finalizes Keralam cabinet. Ally IUML gets 5 ministerial berths. Andhra Pradesh announces cash incentives to boost birth rate. Chief Minister Chandrababu Naidu says families will get 30,000 rupees for a third child and 40,000 for a fourth child in the state. Big Bengal controversy after 100-plus Aadhaar cards and alleged illegal land deal papers were recovered from a TMC office in Salt Lake. Locals claim their Aadhaar cards were withheld for months while government land was illegally sold. Police have seized the documents. Swedish Gripen fighter jets escort Prime Minister Narendra Modi's plane as he enters Sweden. Prime Minister Modi also gets a warm welcome by the diaspora upon arrival in Gothenburg. It's another day, another daughter. This time, it's in Madhya Pradesh. Just 5 months ago, Tushar Sharma, A resident of Noida in Uttar Pradesh was married to Bhopal-based advocate Samarth Singh. She was promised happiness but was allegedly delivered horror. On Tuesday night, Tushar's family received the news of her death. Tushar's family has leveled some serious allegations against her in-laws and husband. Her family claims she was subjected to mental harassment and domestic violence. They also allege that she was forced to terminate her pregnancy, that is, an abortion. Her brother has even made a bombshell claim that Tushar had called him shortly before her death and spoke about the pressure that she was under. But the police says no suicide note was recovered from the spot. A case of unnatural death has been registered and an investigation is underway. Meanwhile, Tushar's family is having none of it and has started protesting outside the chief minister's residence itself, demanding justice for their daughter. Let me also tell you here that the deceased mother-in-law is a former judge, and a Bhopal court has already granted anticipatory bail to the retired judge Giribala Singh. The sudden death of their 33-year-old daughter has raised many questions. Viewers, the cost of marriage can never be death. Another daughter has died. How many more before stricter laws are put into place? Because clearly, Tushar deserved a future and not a funeral. And justice must be served.
4: छह दिन हो गए, एफआईआर लॉन्च करे हुए तीन दिन हो गए, कोई गिरफ्तार नहीं। हमसे पुलिस कह रही है हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये बताइए, ये बैलेंस बना के चल रहे हैं, ये कौन सा बैलेंस बना के चल रहे हैं? आपका कानून सख्त है, इसमें एंटीसिपेटरी बेल प्रोवाइड की जा रही है उन वेग ग्राउंड पर। आज वो एक काला कानून बन के वकीलों के बीच पहुंच चुका है। वकील इसको इस्तेमाल करेंगे आने वाले टाइम के लिए कि कोई भी क्राइम करे उसको बेल मिल सकती है, एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। आपका ट्रायल भी नहीं हुआ, आपको बेल ट्रायल शुरू नहीं हुआ, एंटीसिपेटरी बेल प्रोवाइड कर दी गई इन ग्राउंड्स पे कि वो मर है, रेपुटेशन वाली है और वो जज है, इस बेस पे आपने उनको एंटीसिपेटरी बेल दे दी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये काला कानून है। इस साफ साफ दिख रहा है कि कानून बड़े लोगों के लिए दूसरा और छोटे लोगों के लिए
5: दूसरा दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो और हो सके तो उसके दिल्ली में इतने बड़े जघन्य कांड करने वाले लोग पूरे माहौल अपनी सत्ता अपनी ताकत की बदौलत मना के उन्होंने रखा हुआ है। इन लोगों का तुरंत किया
12: जाए। दो आरोपी हैं, जो लड़का है समर्थ और उसकी माता है।
13: एंटीसिपेटरी बेल देना माननीय न्यायालय का काम है, बाकी हम अपनी जांच कर रहे हैं और हमारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष और वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है।
10: Now we at India Today are following up this case very closely. Earlier, Tushar's parents protested outside Madhya Pradesh Chief Minister's house, and my colleague Ravish gets us this very report. Take a look.
14: पुलिस की भारी तैनाती है इस वक्त मुख्यमंत्री निवास के बाहर, क्योंकि तुषार का जो पूरा परिवार है और रिश्तेदार जो है वो यहाँ आ गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास के बाहर यहाँ पे अंदर मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग की, जिसके बाद तुषार के जो पिता हैं और एक रिश्तेदार जो है उन्हें मुख्यमंत्री निवास के अंदर भेजा गया है। इंसाफ नहीं मिल पाया है तो वो खुद यहाँ पे अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंची हुई थी और मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उन्होंने मांग की थी। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि यहाँ पर जो तुषार की माँ है वो भीषण गर्मी की वजह से और तनाव की वजह से आप देख सकते हैं वो बार बार बेहोश भी हो रही हैं। परिवार की जो दूसरी महिला सदस्य हैं वो उनको न केवल ढांढस बंधा रही हैं बल्कि यहाँ पर और इंतज़ार कर रही हैं, उनका ध्यान भी रख रही हैं। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि पुलिस भी यहाँ पर तैनात है और कोशिश है यहाँ पर कि कैसे भी करके जो लोग यहाँ पे इकट्ठा है फिलहाल उन्हें हटाया जाए। जो माँ है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, बेहोश हो रही है बार बार, तो उन्हें यहाँ छोड़ दिया गया है बल्कि परिवार के बाकी सदस्यों को जो है तुषार के परिवार के बाकी सदस्यों को दूसरी तरफ भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री निवास से थोड़ा दूर उन्हें भेज दिया गया है और यहाँ पर ये तस्वीर फिलहाल देखने को मिल जाएगी आपको कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ मौजूद हैं।
10: Now, viewers, we will bring before you an evidence that surfaced which shows Tushar's plea for help. Tushar and her friend had this particular chat, and this is what shows that Tushar was trapped, because that's literally what she's written to her friend. I am trapped And this is a WhatsApp message that had taken place, wherein the friend replied back to Trisha saying, "I am worried about you." Again, to which Trisha replied, "You don't marry." Imagine, 5 months after her marriage, that's the comment she is coming up to make to her friend, that please do not marry. Trisha again adds in her message, "I can't talk much," to which the friend replies, "I am with you." But indeed, at times like this, viewers, what really happens is it's a case of mental torture as well that goes ahead. And the person, in certain circumstances, ends up being extremely lonely because help is not at hand. Trisha again says to her friend, "I will call later when the time is right." And unfortunately, that time just never came. That is the reality of the situation. And this is just among the first of few evidences that's been presented. Again, the police is at this given point investigating. Allegations that have come from the friends and family of Trisha are being looked into in depth. Ravish Pal Singh joins me on the broadcast with more details. Ravish, very good evening to you. Sabse pehle, is waqt aapko aur kya jankari mil rahi hai is probe ke bare mein? Kahan kis mukam tak pahunchi hai? Aur jo pichle kuch ghante pehle hum dekh rahe the ki jo protest जारी थी कि फैमिली मेंबर्स जो है त्विशा के वो चीफ मिनिस्टर के घर के सामने बैठ गए थे, क्या वो अभी भी वहीं हैं या बातचीत होने के बाद, उनके पिताजी के साथ बातचीत होने के बाद क्या वो वहां से रवाना हुए हैं?
14: देखिए, बिल्कुल, हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स को बताते हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात जो है त्विशा के पेरेंट्स की नहीं हो पाई। वो तकरीबन 1.5 घंटे तक सीएम हाउस में बैठे रहे, लेकिन जब वो वहाँ से बाहर निकले तो उन्होंने ये बताया कि कोई डेलीगेशन बाहर से आया हुआ था और चीफ मिनिस्टर के पास टाइम नहीं था, तो वो उनसे तो नहीं मिल पाए, लेकिन मुख्यमंत्री के ओएसडी से उनकी मुलाकात ज़रूर हुई है। अब ओएसडी से जो मुलाकात हुई है उसमें क्या बातें कही गई है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, ओएसडी से मुलाकात के बाद त्रिशा के जो फादर हैं उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री के ओएसडी ने ये बात एक्सेप्ट की है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमियां रह गई हैं। उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की, ऐसा उनका कहना है, त्रिशा के फादर का ऐसा कहना है, क्योंकि जो फैमिली है वो बार बार यही कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर के इस केस के इन्वेस्टिगेशन तक कई लूप होल्स थे जिस पर पुलिस ने शायद किसी मजबूरी में ध्यान नहीं दिया। कोई इन्फ्लुएंशियल पावर थी जो शायद पुलिस को ऐसा करने से रोक रही थी, ये कहना है फैमिली का त्रिशा की। और उनका ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में जो प्रशासन है, जो ओएसडी ने उनको बताया मुख्यमंत्री के, कि जो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर जुडिशरी है, ऐसे में कुछ भी अगर उन्हें करना है तो जुडिशरी के जरिए ही करना है। अब डिमांड क्या है? डिमांड जिसको लेकर के वो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, उनकी दो मेजर डिमांड्स थी। पहला कि उनकी बेटी त्रिशा का सेकेंड पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि एम्स में जो पोस्टमार्टम हुआ है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरी उनकी डिमांड थी कि पोस्टमार्टम अगर होना है तो उसके लिए बॉडी को प्रिजर्व करना ज़रूरी है, लेकिन करंटली त्रिशा की जो बॉडी है वो अराउंड 4 to 5 degrees Celsius के टेम्परेचर पर रखी गई है और इससे डिकम्पोज होने का खतरा बढ़ गया है बॉडी का। और अगर ऐसा होता है तो जो पोस्टमार्टम के लिए टिश्यूज़ सेव करने होते हैं या दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जिसके ज़रिए ऑटोप्सी होती है तो वो ख़राब हो सकते हैं। तो उन्होंने ये दूसरी डिमांड की थी कि बॉडी जिस टेम्परेचर पर रखी गई है, प्रिजर्व की गई है, उससे कम किया जाए, अराउंड -4 degree टेम्परेचर पर उस बॉडी को प्रिजर्व किया जाए उनकी बेटी के। अब आप सोचिए कि 12 मई को डेथ होती है त्रिशा की, आज 17th of May है, 5 दिन हो चुके हैं, बॉडी अभी भी क्रिमेट नहीं की गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। भोपाल का टेम्परेचर अराउंड 43-44 degree Celsius के आसपास बना हुआ है। ऐसे में फैमिली को डाउट है कि एविडेंस जो है, जो उस बॉडी में है, वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये दो डिमांड, मेजर डिमांड्स लेकर के वो गए थे। अब इसमें से जो ओएसडी का कहना था उनको, जो त्रिशा के फादर ने इंडिया टुडे से बात करते हुए बताया जब वो वापस आए सीएम हाउस से बाहर, तो उनका यही कहना था कि ओएसडी ने एक्सेप्ट तो किया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लूपहोल से है, लेकिन वो इसमें कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने यही कहा कि वो अपनी तरफ से इतना कर सकते हैं कि इस पूरे मैटर पे जो एसआईटी इन फ्यूचर गठित हो सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें ज्यूडिशरी के पास ही जाना पड़ेगा। उन्होंने ये उन्हें सजेस्ट किया है। अब कल मंडे है, तुषा की फैमिली जो है कल कोर्ट जाने वाली है और कोर्ट में जा करके उन्हें दो चीज़ें फाइल करनी है कोर्ट के सामने कि उनकी बेटी का सेकंड पोस्टमार्टम कराया जाए, ये प्ली वो करने वाले हैं कल, और इसके साथ ही टेम्परेचर जो है बॉडी जिसमें प्रिजर्व की गई है उसे कम किया जाए। अब यहाँ पे जो डर है तुषा की फैमिली को वो ये है कि सैटरडे को कल जब ये लोग कोर्ट गए थे तो इनका ऐसा एलिगेशन है कि जो इन लॉज हैं तुषा के, जिनको अक्यूज्ड भी माना है फैमिली ने, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, खुद वो एक तरीके से जुडिशरी से ही आते हैं। तो कल जब ये कोर्ट गए तो इनका ऐसे एलिगेशन है कि वहाँ के जितने भी एडवोकेट्स थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उन्होंने काफ़ी वर्बली इन्हें अब्यूज़ किया। एलिगेशन ये भी लगाया फैमिली ने कि वहाँ इन लोगों को घेर लिया गया था और कई तरीके के कमेंट्स ऐसे किए गए, डिमोरलाइज कमेंट्स वहाँ पे किए गए, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी क्योंकि तुषा की जो फैमिली है वो आर्मी बैकग्राउंड से आती है। तुषा का जो ब्रदर है वो इंडियन आर्मी में मेजर है, उनकी जो सिस्टर इन लॉ है वो खुद आर्मी की डॉक्टर हैं और उन्हें काफ़ी सारे मेडिकल नेग्लिजेंस इस केस में दिखे। तो उन्होंने जब कोर्ट में देखा कि एडवोकेट्स ने उन्हें घेर लिया उनकी फैमिली को, तुषा की फैमिली को, तो उन्होंने आर्मी के अपने कुछ फ्रेंड्स को फ़ोन किया जो भोपाल में है, और भोपाल में आर्मी की क्विक रिएक्शन टीम जो है वो उनके कहने पर वहाँ पहुँची और उनकी मौजूदगी में फिर बाद में कोर्ट में हियरिंग हुई। हालांकि बाद में तुषा की जो मदर इन लॉ है उन्हें बेल मिल गई है उनकी एज को देखते हुए। अब मंडे कल जो है वो तुषा का जो हस्बैंड है उसकी बेल पे भी हियरिंग होनी है, तो कल बड़ा क्रूशियल दिन है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है इस केस में अब तक। और मुख्यमंत्री निवास के बाहर जो प्रोटेस्ट उनका तकरीबन 3 से 4 घंटे तक चलता रहा, दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, वो फिलहाल कॉल्ड ऑफ हो गया है क्योंकि फैमिली जो है वो सीएम हाउस से बाहर जा चुकी है ओएसडी से मिलने के बाद। अब आज की पूरी रात वो कल क्या करना है, कोर्ट में कैसे एप्लीकेशन फाइल करनी है उस पर बात करेंगे और आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है ताकि तुषा को जस्टिस मिले उस पर भी वो आज बात करके कल दोपहर या शाम तक काफी तस्वीर साफ होने वाली है।
10: रवीश, एक जो बात फैमिली ने रेज की है वो ये है, और जैसे आप भी बता रहे हैं कि क्योंकि ये जो लड़के की फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी मदर हैं, वो खुद एक फॉर्मर जज रह चुकी है, जिसकी वजह से तुषा की फैमिली को यही डर है कि कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस है इस पूरे केस के, केस में जब प्रोब हो रहा है उस पर भी और जो हियरिंग्स हो रही है उस पर भी। और इसी वजह से उन्होंने एक मांग रखी थी कि इस केस को भोपाल से ट्रांसफ़र किया जाए दिल्ली में। वैसे भी तुषा खुद नोएडा की निवासी हैं और इसीलिए उनका ये कहना था कि ये और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू ही ना हो, एटलीस्ट जुडिशरी की तरफ से यहाँ पे कंटिन्यू ही ना हो, इसको दिल्ली में लेके जाया जाए और पोस्टमार्टम भी वापस से दिल्ली में हो। क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई है उनकी जो ओएसडी के साथ, उनके फादर ने जब पूरा सारा पॉइंट्स और डिमांड्स उनके साथ रेज किया, और क्या वो मुमकिन है अभी?
14: जी बिल्कुल, उन्होंने ये बातें रखी सीएम के ओएसडी से, ये बातें रखी है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया आपको, ओएसडी ने साफ कर दिया कि ये उनके जरिस्डिक्शन में आता नहीं है कि इंक्वायरी यहाँ पे हो, इन्वेस्टिगेशन या फिर मध्य प्रदेश से बाहर हो, क्योंकि देखिए क्राइम यहाँ अगर कमिट हुआ है, घटना यहाँ घटित हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है इन्वेस्टिगेशन पहले वहीं होगी। अब इन्वेस्टिगेशन को अगर यहाँ से बाहर ले जाना है, मध्य प्रदेश से बाहर ले जाना है, पोस्टमार्टम से लेकर के केस की इन्वेस्टिगेशन तक, तो इसके लिए जुडिशरी की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। यही बात ओएसडी ने तुषा की फैमिली को बताई है कि अगर आपको केस बाहर ले जाना है मध्य प्रदेश से, इन्वेस्टिगेशन बाहर करवानी है या फिर पोस्टमार्टम भोपाल एम्स में ना करवा के कहीं और करवाना है सेकंड पोस्टमार्टम, तो उसके लिए भी जुडिशरी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और इंडिया टुडे से बात करते हुए उनके जो फादर है तुषा के, उन्होंने यही बात कही कि वो जिनसे लड़ने यहाँ पे आए हैं उनसे लड़ने के लिए आखिर मदद मांगने भी उन्हीं के पास जाना है, यानी जुडिशरी जिसमें खुद तुषा के इन लॉज इन्वॉल्व हैं, उसी जुडिशरी के पास जाकर के उनसे ये बात करनी है उन्हें कि उनकी बेटी को जस्टिस के लिए इस केस को यहाँ से बाहर यानी दिल्ली शिफ्ट कर दिया।
10: एक तरीके से ये सिस्टम के अगेंस्ट, सिस्टम के खिलाफ ही ये फाइट देखी जा रही है। जी जी रवीश, ये एक तरीके से ये फाइट उस फैमिली, तुषा के फैमिली के लिए सिस्टम के अगेंस्ट ही हो चुकी है अभी तक। तो इस मुकाम पर सबसे ज्यादा जो जरूरी होगी वो ये है कि वो क्या क्या एविडेंस पेश कर सकते हैं अभी फिलहाल, जो हियरिंग नेक्स्ट होने वाली है कल, कि तुषा एक्चुअली टॉर्चर हो रही थी उस घर पर, और एक ऐसा एविडेंस जो सामने आया है वो है जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैट हुई थी त्विशा और अपने उनके दोस्त के बीच में, जो हम इंडिया टुडे पर भी दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को. और क्या जानकारी आपको मिल रही है ऐसी, और क्या एविडेंस सामने आई है जो त्विशा के फैमिली को अपना केस प्रेजेंट करने में मदद कर सकती है? थोड़ा ब्रीफ में बताइए.
14: देखिए, तीन मेजर एविडेंस फैमिली का क्लेम है कि उनके पास तीन मेजर एविडेंस है. पहला तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेके ही उनका एलिगेशन ये है कि वो रिपोर्ट गलत है. उससे वो इसलिए सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे त्रिशा की हाइट से लेकर के जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं. यानी जो फिजिकल अगर हम बात करें त्रिशा का जो डिफ्रेंसिएशन था वो पोस्ट

0: हाइट अलग बताई गई है, दिशा की जो हाइट है वो अलग है, ज्यादा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस हाइट को कम बताया गया है। तो ऐसे कई सारे टेक्निकल एविडेंस है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिसको फैमिली सामने रख सकती है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है त्रिशा की इंस्टाग्राम चैट्स और व्हाट्सएप चैट्स। इसमें त्रिशा बार बार ये अपनी फैमिली मेंबर्स से, अपने भाई से, अपनी माँ से ये कहती दिख रही है कि वो जिस जगह पे है वो फंस गई है, वहाँ पे उसे अब वहाँ पे नहीं रहना है। और उसकी व्हाट्सएप चैट्स में साफ तौर पे दिख रहा है कि वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, और यहाँ तक कि जब उसकी माँ उसको हेल्प करने के लिए भी कह रही थी तो अपनी माँ को भी इस पूरे मामले से दूर रखने की बात कर रही थी। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग है, जो व्हाट्सएप चैट पुलिस को दी है उन्होंने, उसमें एक जगह ये जिक्र है कि त्रिशा ने, क्योंकि उसकी डेथ 12 मई को हुई है और उससे एक हफ्ते पहले ही त्रिशा का अबॉर्शन हुआ था, तो अबॉर्शन जब हुआ था तो उसके बारे में जिक्र है एक चैट में। अपनी माँ से त्रिशा ये कह रही है कि उसका हस्बैंड जो है वो पूछता है कि ये बच्चा किसका है। तो ये सारी बातें थी जो त्रिशा को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, और ये सारी एविडेंस भी पुलिस के सामने फैमिली ने रखे हैं, और कल जब हियरिंग होगी तो कोर्ट इन एविडेंस पे कितना जोर देता है ये भी देखने वाली बात होगी।
1: जी, तो फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक जो अबॉर्शन को लेकर एलिगेशन है, और यहीं पे रवीश आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जो अबॉर्शन को लेकर एलिगेशन है, क्या फैमिली का ये मानना है कि अबॉर्शन फोर्स्ड था उसके हस्बैंड के फैमिली की तरफ से?
0: देखिए, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टेटमेंट्स लिए थे इन लॉज के, त्रिशा के, तो इन लॉज ने पुलिस को ये बताया है कि त्रिशा जो है वो ये बेबी नहीं चाहती थी, फैमिली तो चाहती थी, यानी इन लॉज तो चाहते थे, वो नहीं चाहती थी, ऐसा पुलिस को उन्होंने कहा है। लेकिन अभी ये तमाम बातें इसलिए खुल के सामने नहीं आ पे क्योंकि पुलिस का जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो फिलहाल पूरी तरीके से सुसाइड पे, या फिर मर्डर है, या जो भी है उस पे है लाइन ऑफ एक्शन जो है पुलिस का, वो फिलहाल उस पे जा रहा है क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया है। मिस पुणे रह चुकी थी त्रिशा, फैमिली का कहना है कि वो बहुत स्ट्रांग माइंडसेट की लड़की थी, और अगर वो कभी न्यूज में या मीडिया में या कभी देखती थी किसी को सुसाइड की कोई न्यूज आती थी तो वो खुद कहती थी कि सुसाइड इज नॉट द लास्ट ऑप्शन। तो जो लड़की सुसाइड को हमेशा से गलत मानती आई थी वो सुसाइड क्यों करेगी? ये फैमिली का एलिगेशन है। मिस पुणे वो रह चुकी थी, एक अच्छी फैमिली से आती थी,
1: तो फिलहाल अबॉर्शन को लेकर कोई दबाव था कि नहीं वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। रवीश, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। That is where this entire case stands. But at the end of the day, the question still comes down to, it is another daughter's life lost in this country. And what caused that very loss? That remains to be the question of the hour that we are also finding answers for and awaiting answers to on India Today. On that note, we're wrapping up this bulletin right here. Do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and news right here. Thank you for watching.
2: Watching India Today. All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations like ESPN Radio.
3: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
2: Big 12 Radio.
4: Today is Big 12 Insiders Game Day. We're breaking
2: and
4: down.
2: Talk sports.
5: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
2: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.

विषय राजनीतिक है ही नहीं, मैंने कहा एक सामाजिक व्याधि है। इस सामाजिक व्याधि से समाज को मुक्त रखना पड़ेगा, सभी की दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, सभी राजनीतिक पार्टियों की दायित्व है। एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार किया ही जाएगा। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी।

0: Him shortly before her death and spoke about the pressure that she was under. But the police says no suicide note was recovered from the spot. A case of unnatural death has been registered and an investigation is underway. Meanwhile, Twisha's family is having none of it and has started protesting outside the chief minister's residence, demanding justice for their daughter. Let me also tell you that the deceased mother-in-law is a former judge. And a Bhopal court has already granted anticipatory bail to retired Judge Giribala Singh. The sudden death of their 33-year-old daughter has raised many questions. Viewers, the cost of marriage can never be death. Another daughter has died, and the question remains how many more before stricter laws are put in place. Clearly, Twisha deserved a future and not a funeral, and justice must be served. Here, we had an exclusive conversation with her father on the case and the challenges, the harrowing time that they are going through at this point, demanding the basic in this very case, which is justice for their daughter. Listen in. And joining me in their hour of grief is Twisha's father and brother. Mr. Sharma, thank you so much. Hamare saath judne ke liye. Hum samajh sakte hain. कि आपके लिए ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होगा आपके फैमिली के लिए अपने बेटी के लॉस पर और जो पीड़ा आप अभी गुजर रहे हैं जिस पीड़ा से हम उसको समझ सकते हैं बट कुछ सवाल है जो हम भी आपसे पूछना चाहेंगे और जिनका जवाब पूरी देश अभी जानना चाहेगी पहले बात तो जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गए वहाँ आप किससे मिले और उनसे क्या बातचीत हुई और उनके पास आपने क्या मांगे रखी
1: जी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हमारी कोई ज्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की हमसे और एक तरीके से देखा जाए तो लाचारी प्रकट हुई. उन्होंने बोला कि इस जुडिशरी में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते और जुडिशरी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और इसमें एक चीज बड़ी स्पष्टता सामने निकल के आ रही है कि जो अक्यूज्ड हैं उनकी फैमिली से एक बहुत बड़ी लोकायुक्त हैं जिनका नाम सत्येंद्र सिंह है जो इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो एक लोकायुक्त के सामने कोई प्रशासन का अधिकारी कोई बड़े से बड़ा नेता भी जाने से डरता है और इसी के कारण जो है हम हर चीज से यहाँ पर तड़प रहे हैं. तड़प तड़प के सांस हमारी मर रही है और ये कानून हमारे लिए एक अभिशाप बन चुका है. आज आप देखिए कि मैं इतने दिन से यहाँ तड़फ रहा हूँ. बड़ी मुश्किल से मेरी FIR हुई. उसके बाद एक एक स्टेप पर हमारे अड़ंगे डाले गए. ये साफ साफ प्रतीत होता है PM रिपोर्ट से और बॉडी को देखने के बाद चोट के मार्क्स देखने के बाद में कि देयर इज सम सस्पिशियस थिंग्स.
0: एक एक ऐसी कॉल सामने आई है कि त्विशा सुसाइड के पहले इसे अभी सुसाइड जो पुलिस कह रही है ठहरा रही है उसके पहले उनकी बात हुई थी अपने भाई के साथ. क्या आपको पता है उस कॉल में एग्जैक्टली बात क्या हुई थी? क्या उसने बताया था कि उसको डर है अपने जान गंवाने की?
1: नहीं नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी. वो कॉल में जो बात हुई थी उनकी जो कॉल थी वो अपनी मदर के साथ बातचीत कर रही थी. वो रो रही थी. वो 10:05 में रो रही थी. जब बातचीत करते ही करते ही 10:05 पर उसका पीछे से आवाज आई और एक जो आवाज समर्थ की लग रही थी उसके हस्बैंड की लग रही थी और धड़ाम से फोन कट कर दिया गया और उसके बाद ये बराबर फोन मिलाती रही और इसको समर्थ को भी मिलाया, लड़की को भी अपने मिलाया, इनकी सास को भी मिलाया. किसी तीनों ने फोन नहीं उठाया और जब फोन उठाया तब ये घटना घट चुकी थी.
0: एक और जो सवाल सामने प्लीज बोलिए.
1: जब फोन उठाया उसने तब बोला शी इज नो मोर.
0: मेरा आखिरी दो सवाल है आपसे. एक ये कि जो अबॉर्शन की रिपोर्ट्स आई है क्या आपके पास ऐसी कोई खबर थी त्विशा से खुद कि उस पे किसी तरह का भी दबाव है उस फैमिली से समर्थ के फैमिली से
1: भयानक दबाव के लिए? उसके ऊपर इतना भयानक दबाव था कि उसके चैट्स में साफ रिफ्लेक्ट होता है. वो उससे दोनों ये माँ बेटे कहते थे किसका बच्चा है ये.
0: तो आप क्लेम कर रहे हैं कि अबॉर्शन का दबाव था समर्थ की फैमिली से?
1: दबाव था. ये तो लड़की ने बोला कि पापा मैं इस बच्चे को इनके कंसेंट के साथ ही इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ. मैं नहीं चाहती ऐसी स्थिति में बच्चे के की जहां पर मुझे ऐसा ट्रस्ट ही नहीं किया जा रहा है. तो इसने उन्हीं के घर के ही सारे क्लिनिक से जहां इन्होंने एविडेंस दिए हैं, आप उन एविडेंस को देखोगे, फैब्रिकेटेड एविडेंस इन्होंने जमा किए हैं कि डॉक्टर्स की राय है।

0: जो कि जो पेपर उन्होंने सबमिट किया उसमें साफ साफ लिखा है कि इट इज नॉट फॉर द लॉ पर्पस। उसमें उन्होंने डेट के भी जो डाले हैं उसमें भी डेट ऐसा लग रहा है कि उसमें अपने हिसाब से डेट डाली गई है उसके अंदर। सेम डेट में वो अबॉर्शन का भी ट्रीटमेंट करा रही है, सेम डेट में वो अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करा रही है और उसमें डॉक्टर उसके वो लिख रहा है। तो ये इनके फैमिली डॉक्टर्स ही हैं जो जो उनकी क्लिनिक्स हैं जहां पर ये लोग ये एक्टिविटी करके रहे। दो लॉट ऑफ डूबियस थिंग जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपको मैंने बताया इतना इन्फ्लुएंसियल हो गया कि हमारे ऊपर कोर्ट में अटैक हुआ, हमको वहां से भगाने की कोशिश की गई, यहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल है, हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं ना हम किन के
1: जी
0: खिलाफ लड़ रहे
1: बिल्कुल,
0: हैं,
1: एक
0: जुडिशियल
1: तरीके से क्या
0: उनका
1: आप कहेंगे कि आपका ये लड़ाई अब ये सिस्टम के अगेंस्ट ही हो चुका है?
0: बिल्कुल अंग्रेज हो चुका है जी, सिस्टम बिल्कुल काम लचरी हो चुका है। सिस्टम हमसे भरोसा जरूर दिला रहा है पर काम ही नहीं कर पा रहा ना। आपका अभियुक्त घूम रहे हैं, फ्री होकर के घूम रहे हैं, गिरीवाला जी को बेल दे दी गई, आपके पीएम रिपोर्ट के लिए अटका दिया गया आपका काम, और क्या आप उम्मीद करेंगे न्याय की? हम चिल्ला रहे हैं, हम मर रहे हैं यहां पर, हमको मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है। हम
1: जी
0: चाह रहे हैं भाई देशवासियों से कैसे भी ये एक तरीके का निर्भया कांड की तरीके से निकल के आ रहा है, यहां पर सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है हमको।
1: नवनीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ऐसे मुश्किल वक्त पर बहुत बहुत
0: जी
1: धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपकी बात पहुंचा रहे हैं।
0: न्याय
1: हम
0: तो
1: ये
0: जाइए
1: केस
0: आप इसको किसी भी तरीके से, मेरे केस को इंडिपेंडेंट बॉडी से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, PM2 जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप लोगों का यही सहयोग है, ये अपील मेरी सुने जो इसके जिम्मेदार पोस्ट पर लोग हैं। मैं एक बहुत भारत का एक सम्मानी छोटा सा नागरिक हूं, प्लीज हेल्प मी आउट।
1: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपके मैसेज को आगे तक लेके जाएंगे। थैंक
0: थैंक यू जी, थैंक यू।
1: यू। ऑन दैट नोट, वॉज थलाइवर अनहैपी ओवर तलपति'ज विन? दैट्स द क्वेश्चन दैट्स बीन ड्राइविंग द बज फॉर डेज। नाउ रजनीकांत हैज स्टेप्ड इन टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, डिनाइंग एनी जेलसी, कॉलिंग द स्पेक्युलेशन मिसप्लेस्ड and addressing the moments that triggered the chatter. India Today reports on the same. Take a look.
2: சார் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு.
1: Was Thalaivar unhappy over Talapati's win? After weeks of speculation, Rajnikanth puts the buzz to rest, setting the record straight on his stance over Vijay's victory.
3: Vijay mele enak porama na adu seal vandu illa adu seal da na illa nu solli vilagi aachi adu seal da illadhu bodu avaru mele enak ye porama oru vela கமல்ஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் எனக்கு பொறாமை வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. எனக்கும் விஜயருக்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் நான் முதலையே சொல்லியிருக்கேன். நான் வந்து விஜய் வந்து நான் சும்மா இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டால் அது எனக்கு நல்லதில்லை, கெட்ட பேர். விஜய் என்னை பற்றி கம்பேர் பண்ணிட்டா அவருக்கு நல்லதில்லை, சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்துட்ருக்காரு. அவர் சிஎம் ஆனதில் எனக்கு என்ன பொறாமை.
1: He also strikes a personal note, calls Stalin's loss upsetting, says friendship is beyond politics.
3: ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அந்த குளத்தூரில் வந்து தோத்தது எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது. அதுக்காக ஒரு நண்பனுங்கிற முறையில் நட்பு முறையில் அவர் போய் நான் பார்த்தேன். அதுக்கு வந்து நான் வந்து இங்கே விஜய் வந்து சிஎம் ஆகக்கூடாது, போர் வரக்கூடாது, அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து ரஜினி அங்கே போயிருக்காங்க, வேறு ஏதோ ரெண்டு பெரிய பார்ட்டியை வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலையில் நான் அதெல்லாம் பேச முடியுமா? அப்படி பேசுற ஒரு தரங்கெட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை.
1: So what's triggered the buzz? Thalaivar's meeting with Stalin soon after the results set the rumor mills churning. And adding fuel to the fire, that moment of silence when asked about Vijay as chief minister.
2: சார் விஜய் முதல்வரா பொறுப்பேற்றிருக்காரு.
1: Kamal Hassan also weighs in, backs Vijay, but cools expectations. Says judging a government in days is like astrology. Calls for 6 months and says don't over or underestimate newcomers.
4: ரெண்டு நாள்ல சொல்லக்கூடியது ஜோசியமா தான் இருக்க முடியும், ஆறு நாள்ல சொல்லக்கூடியது அப்படித்தான் இருக்க முடியும், பதினஞ்சு நாள்லயும் அப்படித்தான் இருக்க முடியும். அதான் ஒரு ஆறு மாசம் டைம் கொடுக்க வேண்டாம். புதியவர்கள் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர், அதனால புதியவர்கள்ங்கிறது வந்து புதுசு கிடையாது. அரசியல் சுதந்திரம் இந்தியா கிடைச்ச போது எல்லாருமே புதிய மினிஸ்டர்ஸ் தான்.
1: From whispers to clarity, Thalaivar draws the line. No jealousy, no rivalry. But the bigger question now, will this finally put the speculation to rest, or will it only add fresh fuel to the fire? With Pramod Madhav and Ankita Garg, Bureau Report, India Today. On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin this hour right here, but do stay tuned to India Today as we come back with more news and updates in the next hour. Thank you for watching and stay tuned.
5: You are watching India Today.
6: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
7: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
9: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
10: After multiple assassination attempts, they can't even get.
11: They're reliable.
12: Always when I need them.
9: To live sports action.
13: One hand jam by LeBron on the break.
14: That's another three, Steph Curry.
9: And your favorite music.
15: Well, the dawn begins to crack. It's
9: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.

0: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
1: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
0: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
3: It's your boy,
2: just
3: Jay-Z.
2: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: नीट में दो साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से दो दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
5: विषय राजनीतिक है ही नहीं, मैंने कहा एक सामाजिक व्याधि है। इस सामाजिक व्याधि से समाज को मुक्त रखना पड़ेगा, सभी की दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, सभी राजनीतिक पार्टियों की दायित्व है। एनपीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार किया ही जाएगा। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी।

0: access to confidential botany and zoology question pools, which she leaked to students. Delhi's Rouse Avenue court has now sent Mandhare to a 14-day CBI custody.
1: Manisha ji, aapko paas se mic
2: ye ye bare
0: mein. Investigators believe one of the earliest dissemination points emerged through the connection between Manisha Mandhare and another Pune-based accused, Manisha Waghmare. As per the CBI, Mandhare had mobilized NEET exam candidates through Waghmare and disclosed questions to these students. The court proceedings have also unearthed links between P.V. Kulkarni, a retired chemistry professor, and the chemistry paper setting process. Both Manisha Waghmare and P.V. Kulkarni have also been sent to 10-day CBI custody. The probe is still underway, and investigators say more arrests and disclosures are possible as the digital and financial evidence trail is examined. Meanwhile, the opposition continues to target the government over the paper leak. Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi has reiterated that Education Minister Dharmendra Pradhan must be sacked. Directly targeting Prime Minister Narendra Modi, Rahul Gandhi alleged that the BJP-RSS nexus has destroyed India's education system.
3: सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है, RSS, BJP और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।
0: In response, the BJP has accused the Congress of politicizing the issue, clarifying that the government has immediately taken corrective measures.
4: Rahul Gandhi ki aadat ho gayi hai ki har cheez ke liye Pradhan Mantri ko blame karte hain. NEET ko lekar jo dikkatein aayi hain, us par Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan ne bahut vistar se jawab de diya hai. Aur aainda dikkat na aaye iski puri guarantee di gayi.
5: राहुल गांधी विपक्षी नेता के नाते से जो कहना कहें, परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो अप्रोप्रिएट एक्शन था, सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया, सीबीआई की जांच हो रही है, धरपकड़ हो रही है।
0: As the CBI digs deeper and political heat intensifies, the NEET leakgate probe is now as much about accountability as it is about restoring trust in the system. With Anmol Bali and Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
6: Another day, another daughter, this time in Madhya Pradesh. Just 5 months ago, Twisha Sharma, resident of Uttar Pradesh's Noida, was married to Bhopal-based advocate Samarth Singh. She was promised happiness but was allegedly delivered horror. On Tuesday night, Twisha's family received the news of her death. Twisha's family has leveled some very serious allegations against her in-laws and husband. Her family claims she was subjected to mental harassment and domestic violence. They also allege that she was forced to terminate her pregnancy. The family has even made a claim that Twisha had called her mother shortly before her death and spoke about the pressure that she was under. But the police say no suicide note was recovered from the spot. It's a case of unnatural death that's been registered and an investigation is underway. Meanwhile, Twisha's family is having none of it and has started protesting outside the Chief Minister's residence, demanding justice for their daughter. Let me also tell you that the deceased's mother-in-law is a former judge, and a Bhopal court has already granted anticipatory bail to retired Judge Giribala Singh, citing her age. The sudden death of their 33-year-old daughter has raised several questions. Viewers, the cost of marriage can never be death. Another daughter has died. How many more before stricter laws are put in place? Clearly, Twisha deserved a future and not a funeral. And justice must be served.
7: दो आरोपी हैं, जो लड़का है समर्थ और उसकी माता है।
8: एंटीस्पेट्री बेल देना माननीय न्यायालय का काम है। बाकी हम अपनी जांच कर रहे हैं और हमारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष और वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है।
6: Earlier, I spoke with Twisha's father, listening to what he had to say. And joining me in their hour of grief is Twisha's father and brother. Mr. Sharma, thank you so much for joining us. We can understand that कि आपके लिए ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट टाइम होगा आपके फैमिली के लिए अपने बेटी के लॉस पर, और जो पीड़ा आप अभी गुजर रहे हैं जिस पीड़ा से, हम उसको समझ सकते हैं, बट कुछ सवाल है जो हम भी आपसे पूछना चाहेंगे और जिनका जवाब पूरी देश अभी जानना चाहेगी। पहले बात तो, जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गए, वहां आप किससे मिले और उनसे क्या बातचीत हुई और उनके पास आपने क्या मांगे रखी?
2: जी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हमारी कोई ज्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की हमसे, और एक तरीके से देखा जाए तो लाचारी प्रकट हुई। उन्होंने बोला कि इस जुडिशरी में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते और जुडिशरी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और इसमें एक चीज बड़ी स्पष्टता सामने निकल के आ रही है कि जो अक्यूज्ड हैं उनकी फैमिली से एक बहुत बड़ी लोकायुक्त हैं जिनका नाम सत्येंद्र सिंह है, जो इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो एक लोकायुक्त के सामने कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई बड़े से बड़ा नेता भी जाने से डरता है, और इसी के कारण जो है हम हर चीज से यहाँ पर तड़प रहे हैं, तड़प तड़प के सांस हमारी मर रही है, और ये कानून हमारे लिए एक अभिशाप बन चुका है। आज आप देखिए कि मैं इतने दिन से यहाँ तड़प रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी FIR हुई, उसके बाद एक एक स्टेप पर हमारे अड़ंगे डाले गए। ये साफ साफ प्रतीत होता है PM रिपोर्ट से और बॉडी को देखने के बाद, चोट के मार्क्स देखने के बाद में, कि देयर इज सम सस्पिशियस थिंग्स।
6: एक ऐसी कॉल सामने आई है कि त्विशा सुसाइड के पहले, इसे अभी सुसाइड जो पुलिस कह रही है, ठहरा रही है, उसके पहले उनकी बात हुई थी अपने भाई के साथ, क्या आपको पता है उस कॉल में एग्जैक्टली बात क्या हुई थी? क्या उसने बताया था कि उसको डर है अपने जान गंवाने की?
2: नहीं नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। वो कॉल में जो बात हुई थी, उनकी जो कॉल थी, वो अपनी मदर के साथ बातचीत कर रही थी, वो रो रही थी, वो 10-5 में रो रही थी। जब बातचीत करते ही करते 10-5 पर उसका पीछे से आवाज आई, और एक जो आवाज समर्थ की लग रही थी, उसके हस्बैंड की लग रही थी, और धड़ाम से फोन कट कर दिया गया, और उसके बाद ये बराबर फोन मिलाती रही, और इसको समर्थ को भी मिलाया, लड़की को भी अपने मिलाया, इनकी सास को भी मिलाया, किसी तीनों ने फोन नहीं उठाया, और जब फोन उठाया तब ये घटना घट चुकी थी।
6: एक और जो सवाल सामने, प्लीज बोलिए।
2: जब फोन उठाया उसने तब बोला शी इज नो मोर।
6: मेरा आखिरी दो सवाल है आपसे, एक ये कि जो अबॉर्शन की रिपोर्ट्स आई है, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर थी त्विशा से खुद कि उस पे किसी तरह का भी दबाव है उस फैमिली से, समर्थ के फैमिली से?
2: भयानक दबाव उसके ऊपर, इतना भयानक दबाव था कि उसके चैट्स में साफ रिफ्लेक्ट होता है, वो उसे दोनों ये माँ बेटे कहते थे किसका बच्चा है ये।
6: तो आप क्लेम कर रहे हैं कि अबॉर्शन का दबाव था समर्थ की
2: दबाव
6: से?
2: था, ये तो लड़की ने बोला कि पापा मैं इस बच्चे को इनके कंसेंट के साथ ही इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती ऐसी स्थिति में बच्चे के की जहां पर मुझे ऐसा ट्रस्ट ही नहीं किया जा रहा है। तो इसने उन्हीं के घर के ही सारे क्लिनिक से जहां इन्होंने एविडेंस दिए हैं, आप उन एविडेंस को देखोगे, फैब्रिकेटेड एविडेंस इन्होंने जमा किए कि डॉक्टर्स की राय है, जो कि जो पेपर उन्होंने सबमिट किया उसमें साफ साफ लिखा है कि इट इज नॉट फॉर द लॉ पर्पस। उसमें उन्होंने डेट के भी जो डाले हैं उसमें भी डेट ऐसा लग रहा है कि उसमें अपने हिसाब से डेट डाली गई है, उसके अंदर सेम डेट में वो अबॉर्शन का भी ट्रीटमेंट करा रही है, सेम डेट में वो अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करा रही है, और उसमें डॉक्टर उसके वो लिख रहा है। तो ये इनके फैमिली डॉक्टर्स ही हैं जो उनकी क्लिनिक्स हैं जहां पर ये लोग ये एक्टिविटी करके रहे। देयर आर लॉट ऑफ डूबियस थिंग्स। दी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपको मैंने बताया इतना इन्फ्लुएंसियल हो गया कि हमारे ऊपर कोर्ट में अटैक हुआ, हमको वहां से भगाने की कोशिश की गई, यहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल है, हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं, आप समझ रहे हैं ना हम किनके खिलाफ।
6: बिल्कुल, एक तरीके से क्या आप कहेंगे कि आपका ये लड़ाई अब ये सिस्टम के अगेंस्ट ही हो चुका है?
2: बिल्कुल अंग्रेज हो चुका है जी, सिस्टम बिल्कुल काम लचरी हो चुका है, सिस्टम हमसे भरोसा जरूर दिला रहा है पर काम ही नहीं कर पा रहा ना। आपका अभियुक्त घूम रहे, फ्री होकर के घूम रहे हैं, गिरीवाला जी को बेल दे दी गई, आपके PM रिपोर्ट के लिए अटका दिया गया आपका काम, और क्या आप उम्मीद करेंगे न्याय की? हम चिल्ला रहे हैं, हम मर रहे हैं यहाँ पर, हमको हम मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है। जी। हम चाह रहे हैं भाई देशवासियों से कैसे भी ये एक तरीके का निर्भया कांड की तरीके से निकल के आ रहा है, यहाँ पर सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है हमको।
6: नवनिधि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ऐसे मुश्किल वक्त पर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपकी बात पहुंचा रहे हैं। हम ये केस
2: इसको किसी भी तरीके से मेरे केस को इंडिपेंडेंट बॉडी से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, PM2 जल्दी से जल्दी होना चाहिए, आप लोगों का यही सहयोग है, ये अपील मेरी सुने जो इसके जिम्मेदार पोस्ट पर लोग हैं। मैं एक बहुत भारत का एक सम्मानी छोटा सा नागरिक हूँ, प्लीज हेल्प मी आउट।
6: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपके मैसेज को आगे तक लेके जाएंगे।
2: थैंक यू।
6: On that note, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and news through the very day. Thank you for watching. This is Riya Kundu.
9: You are watching India Today. Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
10: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hello and welcome to the latest edition of It's Gone Viral. In the next half an hour, we will be showing you some of the images and videos that have gone viral last week and created some buzz online. Take a look.
11: मैं पुणे में एक बहुत ही सेलिब्रेटेड फ्रेंचाइजी में डिनर के लिए गई थी जहाँ के पटियाला बनारसी शॉट्स बहुत फेमस है, इफ यू नो यू नो। मैंने वहाँ पे QR कोड स्कैन किया, मेन्यू में से खाना ऑर्डर किया और बिल पे करके घर वापस आ गई। घर पहुंचने के बाद मुझे अननोन नंबर से रात को एक मैसेज आया, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क डाल के उसे छोड़ दिया। जब मैंने सुबह उठ के उस मैसेज को देखा और आगे प्रोब करी, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, इट जस्ट फ्रोज मी। आई एम अटैचिंग द स्क्रीनशॉट्स अलोंग एंड यू विल सी हाउ दिस पर्सन इज टेलिंग मी दैट ही इज एन एम्प्लॉई ऑफ दैट प्लेस, ही सर्व्ड मी लास्ट नाइट, इट्स जस्ट अ फ्रेंडली मैसेज एंड दैट ही वांट्स टू नो माय एज।
12: So what started as a simple restaurant visit in Pune has now snowballed into a viral privacy debate online. A woman alleged that a staff member used her personal phone number, collected through a QR code menu system, to send her late night messages after she left the restaurant.
11: The individual has been terminated from the entire franchisee. But when I asked for his termination letter, so that was against the policy. The next thing was I told him to give it to me in writing, asked the HR to write me a formal email.
12: The incident has left social media users deeply unsettled, with many questioning just how safe their personal data really is in an increasing digital dining culture.
11: QR code, remember, you're just not ordering food, aap apni safety aur apna database platter par inhe serve kar rahe ho.
13: Hi everyone, Dara on the road again. I am in Delhi, hence the Modi jacket, and I'm in boardroom here, but I'm going to swap the boardroom for the blue line metro here in Delhi. Millions of people take the metro, whether they're going to work, play, going to see family, etc. And now you can get that experience with a few taps on the Uber app. So what do you say? Let's give it a shot.
12: Delhi traffic may officially have a new victim. Uber's own CEO, Dara Khosrowshahi, has gone viral after sharing glimpses of himself traveling by Delhi metro instead of taking a cab during rush hour. The internet instantly found the moment hilarious and painfully relatable, joking that if the head of the Uber trusts the metro more than Delhi roads, then the city's traffic situation truly speaks for itself.
13: All right, got a real feel of the Delhi pulse on the Delhi metro. It was fast, it was affordable, it was reliable, it was absolutely awesome.
14: Chalo dekhte hain pahadon mein ek din maggi bechkar kitne rupaye kama sakte hain. Morning mein sabhi cheezon ko arrange kiya aur ek small maggi shop ready thi. Maggi ko special banane ke liye paas ke jharne se natural water liya, noodles boil kiye, veggies cut kiye aur masala dal ke maggi taiyar thi.
12: Simple. A Delhi content creator swapped deadlines for mountains and maggi, turning a scenic hilltop into a one day food business experiment.
14: Isliye maine apni cooking speed tez ki aur agle 3 ghante mein में मैं 90 प्लेट्स मैगी सेल
12: Armed with packets of instant noodles and a camera, Devansh Tyagi documented how much money he could earn selling India's favorite comfort snack to tourists. The viral video has fascinated viewers online, with many joking that Maggie in the mountains may actually be one of the country's strongest economies.
14: और मैंने कमाए पूरे 24,000 रुपए. शेयर करो अपने अनएम्प्लॉयड दोस्तों से और पूछो वो इतना क्यों नहीं कमा पा रहे हैं.
15: You guys have to align, everybody has to align to my rules and regulations. If you do not like it, please leave tomorrow. It's completely okay.
12: One brutally honest resignation post from a Gen Z employee has exploded online and became the internet's newest workplace anthem. Shared by creator Draupadi, the video struck a nerve with thousands of exhausted professionals speaking openly about burnout, toxic work environments and emotional exhaustion.
15: Please leave tomorrow. It's completely okay.
12: An Indian wedding nearly descended into chaos before a Swiggy Instamart delivery rider unexpectedly became the hero of the function. In the now viral clip, guests can be rushing towards the delivery partner carrying an urgent last-minute order needed at the venue. The internet cannot stop laughing at the scene, with users joking that modern Indian weddings now rely as much on delivery apps as they do on decorators and caterers. Decades after Titanic traumatized audiences with Jack Dawson's death, one creator has decided to personally rewrite cinema history with AI.
16: Every night in my dreams, I see you.
12: A Dubai-based content creator inserted himself into the iconic film and hilariously saved Jack using over-the-top edits, dramatic timing, and pure internet confidence. The video has now gone massively viral, with users joking that he succeeded where Rose, The Door and Hollywood all failed. Kolkata recently turned into a giant nostalgia concert as legendary singer Usha Uttuk performed Rumba Ho at the iconic Trinkas on Park Street. Videos from the evening have flooded social media, showing audiences singing, dancing, and reliving decades of memories.
17: पता है क्रांति क्या होता है? मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, पुल पर जितने लोग खड़े हैं, हमारे टीम ने वो कर दिखाया जो अब तक नामुमकिन था. सीतामढ़ी नगर निगम लगभग 46 वार्ड है. 46 वार्ड के पार्षद यहाँ पहुँचे हुए हैं. DPRO सर पहुँचे हुए, DM सर पहुँचने वाले.
12: A neglected river in Bihar, Sitamari, buried under years of garbage, sludge and public apathy is now slowly coming back to life because a group of local youngsters refuse to ignore it any longer.

0: There is no resolution to the war in West Asia. Global crisis is increasing because of the conflict. But at the receiving end is Aam Aadmi. It is another blow to the common man. The prices of CNG have been increased once again. This time, the prices have been increased by 1 rupee per kilo, marking the second consecutive increase in 48 hours and deepening the fuel cost burden on commuters. Earlier on May 15th, CNG prices were increased by rupees 2 per kilo. With the latest revision, CNG in Delhi will now cost 80.09 per kilo. In Noida and Ghaziabad, the revised rate stands at 88.70 per kilo. This hike will likely affect transportation costs as lakhs of private vehicle owners, cab operators and commercial transport users depend on CNG.
1: First time, in fact, the CNG prices have breached 80 rupees per kg. In fact, in Noida and other parts of NCR, Ghaziabad, it will be eventually 88, more than even 88 rupees per kilogram. In fact, one of the CNG pumps, many of these areas, we also ventured this since this morning after we heard the announcement. Few of the CNG pumps are not even operational. We have been told that they are waiting for a notification and probably this will be also time for them to profit making. But eventually there is no idea how, you know, what will be that, what extent the price is going to go up. But at these CNG pumps, kitna asar padega is pe?
2: Bahut mushkil padega isme. 2-3 rupiya din bhar ka kam se kam 15-20 rupiya. एक ऑटो से 50,000 ऑटो है, कितना रुपया लगा रहे हैं सरकार, कितना फायदे में जा रही है वो देखिए पहले आप.
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रेज्ड एन अलार्म दैट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स कुड इंपैक्ट डेकेड्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस.
3: आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है. पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है. ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं.
0: The repeated hikes are attributed to surging international gas prices, higher crude oil costs, rupee depreciation and supply disruptions due to the ongoing West Asia conflict. As India is gearing up to tackle the crisis, the Modi government is receiving criticism from opposition, calling the hike post-election recovery campaign.
4: Desh bhar mein jaye, desh ki janta bhar mein jaye, aam aadmi mar jaye. आम आदमी को जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं होगा. किसान मर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है. अब इसका परिणाम क्या होगा? आज डीजल नहीं मिल रहा है, लाइन की लाइन लगी है लंबी. पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है. सोने के दाम बढ़ गए, फॉरेन कंट्री मत जाओ बोल रहे और 15-15 दिन के लिए पंतप्रधान भाग रहे. ये सब जो है वो केवल उपदेश जो है, ये आज की हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है.
0: As the political war of words rages on, the inflating fuel prices continues to burn a hole in the common man's pocket. With Karan Singh and Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today.
5: Now, the CBI's investigation into the NEET paper leak is widening by the day. The probe is now uncovering a highly organized network from professors linked to the paper setting process to coaching connections and an alleged trail running across multiple states. The political battle over the controversy is also intensifying, with the opposition targeting the centre over alleged lapses in the examination system. While the government says strict action is already underway, here's a report on the same.
6: CBI's probe into the NEET paper leak is now revealing a multi-layered racket involving alleged insiders linked to the exam process, middlemen, coaching connections and the circulation of question papers across states. Among the alleged kingpins is Pune-based botany professor Manisha Mandhare. According to the CBI, Mandhare was associated with the examination process as a subject expert and had access to confidential botany and zoology question pools, which she leaked to students. Delhi's Rouse Avenue court has now sent Mandhare to a 14-day CBI custody.
7: Manisha ji, aapko
6: master. Investigators believe one of the earliest dissemination points emerged through the connection between Manisha Mandhare and another Pune-based accused, Manisha Vaghmare. As per the CBI, Mandhare had mobilized NEET exam candidates through Vaghmare and disclosed questions to these students. The court proceedings have also unearthed links between P.V. Kulkarni, a retired chemistry professor, and the chemistry paper setting process. Both Manisha Vaghmare and P.V. Kulkarni have also been sent to 10-day CBI custody. The probe is still underway, and investigators say more arrests and disclosures are possible as the digital and financial evidence trail is examined. Meanwhile, the opposition continues to target the government over the paper leak. Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi has reiterated that Education Minister Dharmendra Pradhan must be sacked. Directly targeting Prime Minister Narendra Modi, Rahul Gandhi alleged that the BJP-RSS nexus has destroyed India's education system.
8: कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।
6: In response, the BJP has accused the Congress of politicizing the issue, clarifying that the government has immediately taken corrective measures.
9: Rahul Gandhi ki aadat ho gayi hai ki har cheez ke liye Pradhan Mantri ko blame karte hain. NEET ko lekar jo dikkatein aayi hain, us par Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan ne bahut vistar se jawab de diya hai. Aur aainda dikkat na aaye iski puri guarantee di gayi.
10: राहुल गांधी विपक्षी नेता के नाते से जो कहना कहें, परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो अप्रोप्रिएट एक्शन था, सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया, सीबीआई की जांच हो रही है, धरपकड़ हो रही है।
6: As the CBI digs deeper and political heat intensifies, the NEET leakgate probe is now as much about accountability as it is about restoring trust in the system. With Anmol Bali and Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
5: Another day, another daughter, this time in Madhya Pradesh. Just 5 months ago, Twisha Sharma, resident of Uttar Pradesh's Noida, was married to Bhopal-based advocate Samarth Singh. She was promised happiness but was allegedly delivered horror. On Tuesday night, Twisha's family received the news of her death. Twisha's family has leveled some very serious allegations against her in-laws and husband. Her family claims she was subjected to mental harassment and domestic violence. They also allege that she was forced to terminate her pregnancy. The family has even made a claim that Twisha had called her mother shortly before her death and spoke about the pressure that she was under. But the police say no suicide note was recovered from the spot. It's a case of unnatural death that's been registered and an investigation is underway. Meanwhile, Twisha's family is having none of it and has started protesting outside the Chief Minister's residence, demanding justice for their daughter. Let me also tell you that the deceased's mother-in-law is a former judge, and a Bhopal court has already granted anticipatory bail to retired Judge Giribala Singh, citing her age. The sudden death of their 33-year-old daughter has raised several questions. Viewers, the cost of marriage can never be death. Another daughter has died. How many more before stricter laws are put in place? Clearly, Twisha deserved a future and not a funeral. And justice must be served.
11: दो आरोपी हैं, जो लड़का है समर और उसकी मदर।
12: Anticipatory bail देना माननीय न्यायालय का काम है। बाकी हम अपनी जांच कर रहे हैं और हमारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष और वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है।
5: Earlier, I spoke with Twisha's father, listening to what he had to say. And joining me in their hour of grief is Twisha's father and brother. Mr. Sharma, thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम समझ सकते हैं कि आपके लिए ये कितना ज़्यादा difficult time होगा आपके family के लिए अपने बेटी के loss पर, और जो पीड़ा आप अभी गुजर रहे हैं जिस पीड़ा से, हम उसको समझ सकते हैं. बट कुछ सवाल है जो हम भी आपसे पूछना चाहेंगे और जिनका जवाब पूरी देश अभी जानना चाहेगी. पहले बात तो, जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गए, वहां आप किससे मिले और उनसे क्या बातचीत हुई और उनके पास आपने क्या मांगे रखी?
7: जी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हमारी कोई ज्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की हमसे, और एक तरीके से देखा जाए तो लाचारी प्रकट हुई. उन्होंने बोला कि इस जुडिशरी में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते और जुडिशरी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. और इसमें एक चीज बड़ी स्पष्टता सामने निकल के आ रही है कि जो अक्यूज्ड हैं उनकी फैमिली से एक बहुत बड़ी लोकायुक्त हैं जिनका नाम सत्येंद्र सिंह है, जो इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो एक लोकायुक्त के सामने कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई बड़े से बड़ा नेता भी जाने से डरता है, और इसी के कारण जो है हम हर चीज से यहाँ पर तड़प रहे हैं. तड़प तड़प के सांस हमारी मर रही है और ये कानून हमारे लिए एक अभिशाप बन चुका है. आज आप देखिए कि मैं इतने दिन से यहाँ तड़प रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी FIR हुई, उसके बाद एक एक स्टेप पर हमारे अड़ंगे डाले गए. ये साफ साफ प्रतीत होता है PM रिपोर्ट से और बॉडी को देखने के बाद, चोट के मार्क्स देखने के बाद में, कि देयर इज सम सस्पिशियस थिंग्स.
5: एक ऐसी कॉल सामने आई है कि त्विशा सुसाइड के पहले, इसे अभी सुसाइड जो पुलिस कह रही है, ठहरा रही है, उसके पहले उनकी बात हुई थी अपने भाई के साथ. क्या आपको पता है उस कॉल में एग्जैक्टली बात क्या हुई थी? क्या उसने बताया था कि उसको डर है अपने जान गंवाने की?
7: नहीं नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी. वो कॉल में जो बात हुई थी, उनकी जो कॉल थी, वो अपनी मदर के साथ बातचीत कर रही थी. वो रो रही थी, वो 10-5 में रो रही थी. जब बातचीत करते ही करते 10-5 पर उसका पीछे से आवाज आई और एक जो आवाज समर्थ की लग रही थी, उसके हस्बैंड की लग रही थी, और धड़ाम से फोन कट कर दिया गया. और उसके बाद ये बराबर फोन मिलाती रही और इसको समर्थ को भी मिलाया, लड़की को भी अपने मिलाया, इनकी सास को भी मिलाया, किसी तीनों ने फोन नहीं उठाया. और जब फोन उठाया तब ये घटना घट चुकी थी.
5: एक और जो सवाल सामने, जी नहीं नहीं प्लीज बोलिए.
7: जब फोन उठाया उसने तब बोला शी इज नो मोर.
5: मेरा आखिरी दो सवाल है आपसे. एक ये कि जो अबॉर्शन की रिपोर्ट्स आई है, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर थी त्विशा से खुद कि उस पे किसी तरह का भी दबाव है उस फैमिली से, समर्थ के फैमिली से?
7: भयानक दबाव उसके ऊपर, इतना भयानक दबाव था कि उसके चैट्स में साफ रिफ्लेक्ट होता है. वो उससे दोनों ये माँ बेटे कहते थे किसका बच्चा है ये.
5: तो आप क्लेम कर रहे हैं कि अबॉर्शन का दबाव था?
7: था ये तो लड़की ने बोला कि पापा मैं इस बच्चे को इनके कंसेंट के साथ ही इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ. मैं नहीं चाहती ऐसी स्थिति में बच्चे के की, जहां पर मुझे ऐसा ट्रस्टी नहीं किया जा रहा है. तो इसने उन्हीं के घर के ही सारे क्लिनिक से जहां इन्होंने एविडेंस दिए हैं, आप उन एविडेंस को देखोगे, फैब्रिकेटेड एविडेंस इन्होंने जमा किए कि डॉक्टर्स की राय है, जो कि जो पेपर उन्होंने सबमिट किया उसमें साफ साफ लिखा है कि इट इज नॉट फॉर द लॉ पर्पस. उसमें उन्होंने डेट के भी जो डाले हैं उसमें भी डेट ऐसा लग रहा है कि उसमें अपने हिसाब से डेट डाली गई है. उसके अंदर सेम डेट में वो अबॉर्शन का भी ट्रीटमेंट करा रही है, सेम डेट में वो अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करा रही है, और उसमें डॉक्टर उसके वो लिख रहा है. तो ये इनके फैमिली डॉक्टर्स ही हैं जो उनकी क्लिनिक्स हैं जहां पर ये लोग ये एक्टिविटी करके रहे. देयर आर लॉट ऑफ ड्यूबियस थिंग्स. आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपको मैंने बताया इतना इन्फ्लुएंसियल हो गया कि हमारे ऊपर कोर्ट में अटैक हुआ, हमको वहां से भगाने की कोशिश की गई, यहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल है, हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं. आप समझ रहे हैं ना हम किन के खिलाफ?
5: बिल्कुल. एक तरीके से क्या आप कहेंगे कि आपका ये लड़ाई अब ये सिस्टम के अगेंस्ट ही हो चुका है?
7: बिल्कुल अंग्रेज हो चुका है जी सिस्टम, बिल्कुल काम लचरी हो चुका है. सिस्टम हमसे भरोसा जरूर दिला रहा है पर काम ही नहीं कर पा रहा ना. आपका अभियुक्त घूम रहे हैं, फ्री होकर के घूम रहे हैं. गिरीवाला जी को बेल दे दी गई, आपके PM रिपोर्ट के लिए अटका दिया गया आपका काम. और क्या आप उम्मीद करेंगे न्याय की? हम चिल्ला रहे हैं, हम मर रहे हैं यहां पर, हमको मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है। हम
5: जी
7: चाह रहे हैं भाई देशवासियों से कैसे भी, ये एक तरीके का निर्भया कांड की तरीके से निकल के आ रहा है, यहां पर सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है हमको।
5: नवनीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ऐसे मुश्किल वक्त पर बहुत बहुत
7: जी
5: धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपकी बात पहुंचा रहे हैं।
7: न्याय
5: हम ये
7: मिले
5: केस
7: आप इसको किसी भी तरीके से, मेरे केस को इंडिपेंडेंट बॉडी से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, PM2 जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप लोगों का यही सहयोग है, ये अपील मेरी सुने जो इसके जिम्मेदार पोस्ट पर लोग हैं। मैं एक बहुत भारत का एक सम्मानी छोटा सा नागरिक हूं, प्लीज हेल्प मी आउट।
5: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपके मैसेज को आगे तक लेके जाएंगे। थैंक
7: थैंक यू जी, थैंक यू।
5: यू। यूनियन मिनिस्टर बंदी संजय कुमार सन बंदी साई भागीरथ हैज बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद अ पॉक्सो केस रजिस्टर्ड बाय साइबराबाद पुलिस। After days of search operations and mounting political attention, Bhagirath surrendered on Saturday and was taken into custody. The case has triggered a major storm in the state, with activists demanding strict action, while Bandi Sanjay has termed the case a political conspiracy. Here's a report. Take a look.
6: After days of cat and mouse chase, Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. Images accessed by India Today showed Bhagirath, accompanied by his lawyers, surrendering before the cops late on Saturday. After days of search operations, lookout notices and political heat, Bhagirath was taken into custody and later remanded to judicial custody by a local court. The case was registered based on a complaint involving a 17-year-old girl. Police invoked serious sections of the Bharatiya Nyay Sanhita along with the provisions of the POXO Act after recording the survivor's statement before a magistrate.
13: Police, SOT Police, Cyberabad has took custody of the Bandi Bhagirath. Police have conducted the investigation which they usually conduct as per BNSS. And as per POXO protocols, we have full confidence in the investigation. We have full confidence in the judicial procedure. We are very confident that we will be cleared of these allegations and we will come out clean.
6: Cyberabad police said that multiple teams were deployed across several locations, including Delhi and Karimnagar, before Bhagirath was traced near the police academy area and apprehended by the special operations team during a patrolling operation. The arrest has triggered sharp political and public reactions, with activists demanding strict action in the case.
14: We have been demanding since initially that this fellow should be arrested and put behind the bars, and the trial should be made on the immediate trials. We demand that a sitting judge, this case should be addressed.
6: Union Minister Bandi Sanjay has said that when it comes to law, everyone is equal. He, however, maintained that the charges against his son are nothing but a political conspiracy. With Abdul Bashir in Hyderabad, Bureau Report, India Today.
5: Was Thalaivar unhappy over Talapathy's win? That's the question that's been driving the buzz for days. Now Rajnikant has stepped in to set the record straight, denying any jealousy, calling the speculation misplaced and addressing the moments that triggered the very chatter. India Today reports. Take a look.
15: சார் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு.
6: Was Thalaivar unhappy over Talapathy's win? After weeks of speculation, Rajnikanth puts the buzz to rest, setting the record straight on his stance over Vijay's victory.
16: விஜய் மேலே எனக்கு போறாமே நான் அரசியல் வந்து இல்லை, அரசியல் நான் இல்லைன்னு சொல்லி விலகி ஆச்சு. அரசியல் நான் இல்லாத போது அவர் மேலே எனக்கு ஏன் போறாமே? ஒருவேளை கமல்ஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் என்ன பொறாமை வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. எனக்கும் விஜயருக்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ். நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன். நான் வந்து விஜயை வந்து நான் சும்மா இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டால் அது எனக்கு நல்லதில்லை கெட்ட பேர். விஜய் என்னை பற்றி கம்பேர் பண்ணிவிட்டால் அவருக்கு நல்லதில்லை. சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்துட்ருக்கேன். அவர் சிஎம் ஆனதில் எனக்கு என்ன போகிறாங்க.
5: He also strikes a personal note, calls Stalin's loss upsetting, says friendship is beyond politics.
16: Stalin avargal vandha adu kolathurile vandha thottathu enakku konja sangalama irundhathu adukaga oru nanbanangra murayila nadpu murayila avaru poyana paathar அதுக்கு வந்து நான் வந்து இங்கே விஜய் வந்து அரசியம் ஆகக்கூடாது போர் வரக்கூடாது அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து ரஜினி அங்கே போயிருக்காங்க. வேறு ஏதோ ரெண்டு பெரிய பார்ட்டியை வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலையில் தான் அதெல்லாம் பேச முடியுமா? அப்படி பேசுகிற ஒரு தரங்கெட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை.
5: So what's triggered the buzz? Talaiva's meeting with Stalin soon after

0: There is no resolution to the war in West Asia. Global crisis is increasing because of the conflict. But at the receiving end is Aam Aadmi. It is another blow to the common man. The prices of CNG have been increased once again. This time, the prices have been increased by 1 rupee per kilo, marking the second consecutive increase in 48 hours and deepening the fuel cost burden on commuters. Earlier on May 15th, CNG prices were increased by rupees 2 per kilo. With the latest revision, CNG in Delhi will now cost 80.09 per kilo. In Noida and Ghaziabad, the revised rate stands at 88.70 per kilo. This hike will likely affect transportation costs as lakhs of private vehicle owners, cab operators and commercial transport users depend on CNG.
1: First time, in fact, the CNG prices have breached 80 rupees per kg. In fact, in Noida and other parts of NCR, Ghaziabad, it will be eventually 88, more than even 88 rupees per kilogram. In fact, one of the CNG pumps, many of these areas, we also ventured this since this morning after we heard the announcement. Few of the CNG pumps are not even operational. We have been told that they are waiting for a notification and probably this will be also time for them to profit making. But eventually there is no idea how, you know, what will be that, what extent the price is going to go up. But at these the CNG pumps, kitna asar padega isko?
2: Bahut mushkil padega isme. 2-3 rupiya din bhar ka kam se kam 15-20 rupiya. एक ऑटो से 50,000 ऑटो है, कितना रुपया लगा रहे हैं सरकार, कितना फायदे में जा रही है वो देखिए पहले आप.
0: Prime Minister Modi has raised an alarm that global conflicts could impact decades of economic progress.
3: आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है. पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है. ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं.
0: The repeated hikes are attributed to surging international gas prices, higher crude oil costs, rupee depreciation and supply disruptions due to the ongoing West Asia conflict. As India is gearing up to tackle the crisis, the Modi government is receiving criticism from opposition, calling the hike post-election recovery campaign.
4: Desh bhar mein jaye, desh ki janta bhar mein jaye, aam aadmi mar jaye. आम आदमी को जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं होगा. किसान मर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है. अब इसका परिणाम क्या होगा? आज डीजल नहीं मिल रहा है, लाइन की लाइन लगी है लंबी. पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है. सोने के दाम बढ़ गए, फॉरेन कंट्री मत जाओ बोल रहे और 15-15 दिन के लिए पंतप्रधान भाग रहे. ये सब जो है वो केवल उपदेश जो है, ये आज की हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है.
0: As the political war of words rages on, the inflating fuel prices continues to burn a hole in the common man's pocket. With Karan Singh and Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today.
5: Now, the CBI's investigation into the NEET paper leak is widening by the day. The probe is now uncovering a highly organized network from professors linked to the paper setting process to coaching connections and an alleged trail running across multiple states. The political battle over the controversy is also intensifying, with the opposition targeting the centre over alleged lapses in the examination system. While the government says strict action is already underway, here's a report on the same.
6: CBI's probe into the NEET paper leak is now revealing a multi-layered racket involving alleged insiders linked to the exam process, middlemen, coaching connections and the circulation of question papers across states. Among the alleged kingpins is Pune-based botany professor Manisha Mandhare. According to the CBI, Mandhare was associated with the examination process as a subject expert and had access to confidential botany and zoology question pools, which she leaked to students. Delhi's Rouse Avenue court has now sent Mandhare to a 14-day CBI custody.
7: Manisha ji, aapko mastermind.
6: Investigators believe one of the earliest dissemination points emerged through the connection between Manisha Mandhare and another Pune-based accused, Manisha Vaghmare. As per the CBI, Mandhare had mobilized NEET exam candidates through Vaghmare and disclosed questions to these students. The court proceedings have also unearthed links between P.V. Kulkarni, a retired chemistry professor, and the chemistry paper setting process. Both Manisha Vaghmare and P.V. Kulkarni have also been sent to 10-day CBI custody. The probe is still underway, and investigators say more arrests and disclosures are possible as the digital and financial evidence trail is examined. Meanwhile, the opposition continues to target the government over the paper leak. Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi has reiterated that Education Minister Dharmendra Pradhan must be sacked. Directly targeting Prime Minister Narendra Modi, Rahul Gandhi alleged that the BJP-RSS nexus has destroyed India's education system.
8: Sachai hai. कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है जो सेंटर है उसको डैमेज किया है ये एक नेक्सस है आरएसएस बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है.
6: In response, the BJP has accused the Congress of politicizing the issue, clarifying that the government has immediately taken corrective measures.
9: Rahul Gandhi ki aadat ho gayi hai ki har cheez ke liye Pradhan Mantri ko blame karte hain. NEET ko lekar jo dikkatein aayi hain, us par Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan ne bahut vistar se jawab de diya hai. Aur aainda dikkat na aaye iski puri guarantee di gayi.
10: राहुल गांधी विपक्षी नेता के नाते से जो कहना कहें परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो एप्रोप्रिएट एक्शन था सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया सीबीआई की जांच हो रही है धरपकड़ हो रही है.
6: As the CBI digs deeper and political heat intensifies, the NEET leakgate probe is now as much about accountability as it is about restoring trust in the system. With Anmol Bali and Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
5: Another day, another daughter, this time in Madhya Pradesh. Just 5 months ago, Twisha Sharma, resident of Uttar Pradesh's Noida, was married to Bhopal-based advocate Samarth Singh. She was promised happiness but was allegedly delivered horror. On Tuesday night, Twisha's family received the news of her death. Twisha's family has leveled some very serious allegations against her in-laws and husband. Her family claims she was subjected to mental harassment and domestic violence. They also allege that she was forced to terminate her pregnancy. The family has even made a claim that Twisha had called her mother shortly before her death and spoke about the pressure that she was under. But the police say no suicide note was recovered from the spot. It's a case of unnatural death that's been registered and an investigation is underway. Meanwhile, Twisha's family is having none of it and has started protesting outside the Chief Minister's residence, demanding justice for their daughter. Let me also tell you that the deceased's mother-in-law is a former judge, and a Bhopal court has already granted anticipatory bail to retired Judge Giribala Singh, citing her age. The sudden death of their 33-year-old daughter has raised several questions. Viewers, the cost of marriage can never be death. Another daughter has died. How many more before stricter laws are put in place? Clearly, Twisha deserved a future and not a funeral. And justice must be served.
11: दो आरोपी हैं, जो लड़का है समर्थ और उसकी मदर.
12: Anticipatory bail देना माननीय न्यायालय का काम है. बाकी हम अपनी जांच कर रहे हैं और हमारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष और वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है.
5: Earlier, I spoke with Twisha's father, listening to what he had to say. And joining me in their hour of grief is Twisha's father and brother. Mr. Sharma, thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम समझ सकते हैं कि आपके लिए ये कितना ज़्यादा difficult time होगा आपके family के लिए अपने बेटी के loss पर, और जो पीड़ा आप अभी गुजर रहे हैं जिस पीड़ा से, हम उसको समझ सकते हैं. बट कुछ सवाल है जो हम भी आपसे पूछना चाहेंगे और जिनका जवाब पूरी देश अभी जानना चाहेगी. पहले बात तो, जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गए, वहां आप किससे मिले और उनसे क्या बातचीत हुई और उनके पास आपने क्या मांगे रखी?
7: जी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हमारी कोई ज्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की हमसे, और एक तरीके से देखा जाए तो लाचारी प्रकट हुई. उन्होंने बोला कि इस जुडिशरी में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते और जुडिशरी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. और इसमें एक चीज बड़ी स्पष्टता सामने निकल के आ रही है कि जो अक्यूज्ड हैं उनकी फैमिली से एक बहुत बड़ी लोकायुक्त हैं जिनका नाम सत्येंद्र सिंह है, जो इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो एक लोकायुक्त के सामने कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई बड़े से बड़ा नेता भी जाने से डरता है, और इसी के कारण जो है हम हर चीज से यहाँ पर तड़प रहे हैं. तड़प तड़प के सांस हमारी मर रही है और ये कानून हमारे लिए एक अभिशाप बन चुका है. आज आप देखिए कि मैं इतने दिन से यहाँ तड़प रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी FIR हुई, उसके बाद एक एक स्टेप पर हमारे अड़ंगे डाले गए. ये साफ साफ प्रतीत होता है PM रिपोर्ट से और बॉडी को देखने के बाद, चोट के मार्क्स देखने के बाद में, कि देयर इज सम सस्पिशियस थिंग्स.
5: एक ऐसी कॉल सामने आई है कि त्विशा सुसाइड के पहले, इसे अभी सुसाइड जो पुलिस कह रही है, ठहरा रही है, उसके पहले उनकी बात हुई थी अपने भाई के साथ. क्या आपको पता है उस कॉल में एग्जैक्टली बात क्या हुई थी? क्या उसने बताया था कि उसको डर है अपने जान गंवाने की?
7: नहीं नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी. वो कॉल में जो बात हुई थी, उनकी जो कॉल थी, वो अपनी मदर के साथ बातचीत कर रही थी. वो रो रही थी, वो 10-5 में रो रही थी. जब बातचीत करते ही करते 10-5 पर उसका पीछे से आवाज आई और एक जो आवाज समर्थ की लग रही थी, उसके हस्बैंड की लग रही थी, और धड़ाम से फोन कट कर दिया गया. और उसके बाद ये बराबर फोन मिलाती रही और इसको समर्थ को भी मिलाया, लड़की को भी अपने मिलाया, इनकी सास को भी मिलाया, किसी तीनों ने फोन नहीं उठाया. और जब फोन उठाया तब ये घटना घट चुकी थी.
5: एक और जो सवाल सामने, जी नहीं नहीं प्लीज बोलिए.
7: जब फोन उठाया उसने तब बोला शी इज नो मोर.
5: मेरा आखिरी दो सवाल है आपसे. एक ये कि जो अबॉर्शन की रिपोर्ट्स आई है, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर थी त्विशा से खुद कि उस पे किसी तरह का भी दबाव है उस फैमिली से, समर्थ के फैमिली से?
7: भयानक दबाव उसके ऊपर, इतना भयानक दबाव था कि उसके चैट्स में साफ रिफ्लेक्ट होता है. वो उससे दोनों ये माँ बेटे कहते थे किसका बच्चा है ये.
5: तो आप क्लेम कर रहे हैं कि अबॉर्शन का दबाव था समर्थ के फैमिली से?
7: दबाव था. ये तो लड़की ने बोला कि पापा मैं इस बच्चे को इनके कंसेंट के साथ ही इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ. मैं नहीं चाहती ऐसी स्थिति में बच्चे के की जहां पर मुझे ऐसा ट्रस्टी नहीं किया जा रहा है. तो इसने उन्हीं के घर के ही सारे क्लिनिक से जहां इन्होंने एविडेंस दिए हैं, आप उन एविडेंस को देखोगे, फैब्रिकेटेड एविडेंस इन्होंने जमा किए कि डॉक्टर्स की राय है, जो कि जो पेपर उन्होंने सबमिट किया उसमें साफ साफ लिखा है कि इट इज नॉट फॉर द लॉ पर्पस. उसमें उन्होंने डेट के भी जो डाले हैं उसमें भी डेट ऐसा लग रहा है कि उसमें अपने हिसाब से डेट डाली गई है. उसके अंदर सेम डेट में वो अबॉर्शन का भी ट्रीटमेंट करा रही है, सेम डेट में वो अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करा रही है, और उसमें डॉक्टर उसके वो लिख रहा है. तो ये इनके फैमिली डॉक्टर्स ही हैं जो उनकी क्लिनिक्स हैं जहां पर ये लोग ये एक्टिविटी करके रहे. देयर आर लॉट ऑफ ड्यूबियस थिंग्स. आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपको मैंने बताया इतना इन्फ्लुएंसियल हो गया कि हमारे ऊपर कोर्ट में अटैक हुआ, हमको वहां से भगाने की कोशिश की गई, यहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल है, हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं. आप समझ रहे हैं ना हम किसके खिलाफ?
5: बिल्कुल. एक तरीके से क्या आप कहेंगे कि आपका ये लड़ाई अब ये सिस्टम के अगेंस्ट ही हो चुका है?
7: बिल्कुल अंग्रेज हो चुका है जी सिस्टम, बिल्कुल काम लचरी हो चुका है. सिस्टम हमसे भरोसा जरूर दिला रहा है पर काम ही नहीं कर पा रहा ना. आपका अभियुक्त घूम रहे हैं, फ्री होकर के घूम रहे हैं. गिरीवाला जी को बेल दे दी गई, आपके PM रिपोर्ट के लिए अटका दिया गया आपका काम. और क्या आप उम्मीद करेंगे न्याय की? हम चिल्ला रहे हैं, हम मर रहे हैं यहाँ पर. हमको हम मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है। हम चाह रहे हैं भाई देशवासियों से कैसे भी ये एक तरीके का निर्भया कांड की तरीके से निकल के आ रहा है, यहाँ पर सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है हमको।
5: नवनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ऐसे मुश्किल वक्त पर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपकी बात पहुंचा रहे हैं। हम ये केस
7: इसको किसी भी तरीके से मेरे केस को इंडिपेंडेंट बॉडी से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, PM2 जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप लोगों का यही सहयोग है, ये अपील मेरी सुने जो इसके जिम्मेदार पोस्ट पर लोग हैं। मैं एक बहुत भारत का एक सम्मानी छोटा सा नागरिक हूँ, प्लीज हेल्प मी आउट।
5: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपके मैसेज को आगे तक लेके जाएंगे।
7: थैंक यू।
5: Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. After days of search operations and mounting political attention, Bhagirath surrendered on Saturday and was taken into custody. The case has triggered a major storm in the state, with activists demanding strict action, while Bandi Sanjay has termed the case a political conspiracy. Here's a report. Take a look.
6: After days of cat and mouse chase, Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. Images accessed by India Today showed Bhagirath, accompanied by his lawyers, surrendering before the cops late on Saturday. After days of search operations, lookout notices and political heat, Bhagirath was taken into custody and later remanded to judicial custody by a local court. The case was registered based on a complaint involving a 17-year-old girl. Police invoked serious sections of the Bharatiya Nyay Sanhita along with the provisions of the POXO Act after recording the survivor's statement before a magistrate.
13: Police, SOT Police, Cyberabad has took custody of the Bandi Bhagirath. Police have conducted the investigation which they usually conduct as per BNSS. And as per POXO protocols, we have full confidence in the investigation. We have full confidence in the judicial procedure. We are very confident that we will be cleared of these allegations and we will come out clean.
6: Cyberabad police said that multiple teams were deployed across several locations, including Delhi and Karimnagar, before Bhagirath was traced near the police academy area and apprehended by the special operations team during a patrolling operation. The arrest has triggered sharp political and public reactions, with activists demanding strict action in the case.
14: We have been demanding since initially that this fellow should be arrested and put behind the bars, and the trial should be made on the immediate trials. We demand that a sitting judge, this case should be addressed.
6: Union Minister Bandi Sanjay has said that when it comes to law, everyone is equal. He, however, maintained that the charges against his son are nothing but a political conspiracy. With Abdul Bashir in Hyderabad, Bureau Report, India Today.
5: Was Talaivar unhappy over Talapati's win? That's the question that's been driving the buzz for days. Now Rajnikant has stepped in to set the record straight, denying any jealousy, calling the speculation misplaced and addressing the moments that triggered the very chatter. India Today reports. Take a look.
15: Sir, Vijay Mudalwara Purpetrikare.
5: Was Talaivar unhappy over Talapati's win? After weeks of speculation, Rajnikant puts the buzz to rest, setting the record straight on his stance over Vijay's victory.
16: Vijay mele enak poraame na adisiyal vandu illa adisiyal na illa nu solli vilagi aachi adisiyal na illadhu bodu avaru mele enak yen poraame oru vela கமல்ஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் என்ன பொறாமல் வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. எனக்கும் விஜயருக்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ். நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன். நான் வந்து விஜயை வந்து நான் சும்மா இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டால் அது எனக்கு நல்லதில்லை கெட்ட பேர். விஜய் என்னை பற்றி கம்பேர் பண்ணிவிட்டால் அவருக்கு நல்லதில்லை. சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்துட்ருக்கேன். அவர் சிஎம் ஆனதில் எனக்கு என்ன போகிறாங்க.
5: He also strikes a personal note, calls Stalin's loss upsetting, says friendship is beyond politics.
16: Stalin avargal vandha adu kolathurile vandha thottathu enakku konja sangalama irundhathu adukaga oru nanbanangra murayila nadpu murayila avaru poyana paathar அதுக்கு வந்து நான் வந்து இங்கே விஜய் வந்து அது சிஎம் ஆகக்கூடாது போர் வரக்கூடாது அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து ரஜினி அங்கே போயிருக்காங்க வேறு ஏதோ ரெண்டு பெரிய பார்ட்டியை வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலையில தான் அதெல்லாம் பேச முடியுமா? அப்படி பேசுகிற ஒரு தரங்கெட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை.
5: So what triggered the buzz? Thalaiwar's meeting with Stalin soon after the results set the rumor mills churning and adding fuel to the fire. That moment of silence when asked about Vijay as chief minister.
15: Sir, Vijay mudalvara porpe irukkaru.
5: Kamal Hassan also weighs in, backs Vijay but cools expectations. Says judging a government in days is like astrology. Calls for 6 months and says don't over or underestimate newcomers.
17: ரெண்டு நாள்ல சொல்லக்கூடியது ஜோசியமா தான் இருக்க முடியும். ஆறு நாள்ல சொல்லக்கூடியது அப்படிதான் இருக்க முடியும். 15 நாள்லயும் அப்படிதான் இருக்க முடியும். அதான் ஒரு 6 மாசம் டைம் கொடுக்க வேண்டாம். புதியவர்கள் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர். அதனால புதியவர்கள்ங்கிறது வந்து புதுசு கிடையாது அரசியல். சுதந்திரம் இந்தியா கிடைச்ச போது எல்லாருமே புதிய மினிஸ்டர்ஸ் தான்.
5: From whispers to clarity, Thalaiwar draws the line. No jealousy, no rivalry. But the bigger question now, will this finally put the speculation to rest or will it only add fresh fuel to the fire? With Pramod Madhav and Ankita Garg, Bureau Report, India Today. Tamil superstar Vijay's dramatic rise to the Chief Minister's chair in Tamil Nadu is sparking political comparisons across the south, especially with the Andhra Pradesh Deputy Chief Minister Pawan Kalyan. But the Janasena chief has now made it clear that Andhra's political landscape is very different from Tamil Nadu's and that political success cannot be replicated overnight. Here's a report on the same. Take a look.
6: Vijay's stunning ascent to Tamil Nadu's top job has sent ripples far beyond the state's borders. Amid this political fervor, comparisons have emerged with Andhra Pradesh's superstar and Deputy Chief Minister Pawan Kalyan. While speaking to his party workers at Jan Sena's headquarters in Mangalagiri, Pawan Kalyan acknowledged the mounting pressure. The power star directly addressed his fans and political supporters who are wondering whether Pawan will immediately achieve the same feat as Vijay. Pawan pointedly reminded supporters that every state has its own distinct political dynamics and that what works in Tamil Nadu doesn't automatically translate to Andhra Pradesh. Solo politics, he made clear, is far easier said than done. Pawan Kalyan used a Telugu idiom to illustrate his point and sought to dismiss any comparisons to the new Tamil Nadu Chief Minister.
18: మన ముఖ్యంగా మొన్న తమిళనాడు ఎలక్షన్స్ వచ్చి ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా నన్ను చంపేస్తారు అందరం. దాని పరిస్థితులు వేరు, మన పరిస్థితులు వేరు. అంటే ఎందుకు చెప్తా అంటే దాని పరిస్థితులు వేరు, మన పరిస్థితులు వేరు.
6: Pawan's remarkable political ascent saw him transform from a mass hero to a mass politician.
18: Unka shikar karega.
6: Although he faced early headwinds after founding the Jan Sena party in 2014, he rebounded to achieve a stunning victory in the 2024 elections, assuming office as the Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh. Therefore, Pawan's legion of fans are unlikely to stop comparing him with Vijay anytime soon. Bureau Report, India Today.
5: On his birthday, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu announced cash incentives for families having more than two children to tackle falling birth rates. Families may get Rs. 30,000 for a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. While the government says the move targets demographic decline, the opposition has criticized it as a diversionary tactic. Take a look at this report.
6: It was Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu's birthday, but the gift was for the people of the state. Chief Minister Naidu announced major incentives for families with more than two children to tackle declining population growth. Under the proposal, families will get Rs. 30,000 on the birth of a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. This announcement was made after the government noticed decline in the young population and the fertility rate is also hitting all-time low of 1.5. It was feared that 23% of the population may be over the age of 60 by 2047. Chief Minister Naidu, like before, said that children should be seen as wealth, not a burden, as he flagged concerns over falling population numbers earlier multiple times. Chief Minister Naidu assured that the government's population management policy will focus on boosting the birth rate. He also added that Anganwadi centres will be strengthened to provide nutritious food for mothers and children through the Women and Child Welfare Department. But while the Chief Minister laid out the details of the plan, the opposition was quick to react. Congress MP Karthi Chidambaram took a swipe at the announcement with just one word: seriously? Meanwhile, YSR Congress called the move an attempt to divert attention from what he termed the failures of the TDP-led government in Andhra Pradesh. From cash incentives to political criticism, Naidu's population push has now triggered a large debate. Can money motivate bigger families, or is this simply a political headline ahead of a demographic challenge? Bureau Report, India Today.
5: On that note, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and news through the very day. Thank you for watching. This is Riya Kundu.
19: Watching India Today. From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
20: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
21: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
22: और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।

0: There is no resolution to the war in West Asia. Global crisis is increasing because of the conflict. But at the receiving end is Aam Aadmi. It is another blow to the common man. The prices of CNG have been increased once again. This time, the prices have been increased by 1 rupee per kilo, marking the second consecutive increase in 48 hours and deepening the fuel cost burden on commuters. Earlier on May 15th, CNG prices were increased by rupees 2 per kilo. With the latest revision, CNG in Delhi will now cost 80.09 per kilo. In Noida and Ghaziabad, the revised rate stands at 88.70 per kilo. This hike will likely affect transportation costs as lakhs of private vehicle owners, cab operators and commercial transport users depend on CNG.
1: First time, in fact, the CNG prices have breached 80 rupees per kg. In fact, in Noida and other parts of NCR, Ghaziabad, it will be eventually 88, more than even 88 rupees per kilogram. In fact, one of the CNG pumps, many of these areas, we also ventured this since this morning after we heard the announcement. Few of the CNG pumps are not even operational. We have been told that they are waiting for a notification and probably this will be also time for them to profit making. But eventually there is no idea how, you know, what will be that, what extent the price is going to go up. But at these the CNG pumps, kitna asar padega is par?
2: Bahut mushkil padega isme. 2-3 rupiya din bhar ka kam se kam 15-20 rupiya. एक ऑटो से 50,000 ऑटो है, कितना रुपया लगा रहे हैं सरकार, कितना फायदे में जा रही है वो देखिए पहले आप.
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रेज्ड एन अलार्म दैट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स कुड इंपैक्ट डेकेड्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस.
3: आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है. पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है. ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं.
0: The repeated hikes are attributed to surging international gas prices, higher crude oil costs, rupee depreciation and supply disruptions due to the ongoing West Asia conflict. As India is gearing up to tackle the crisis, the Modi government is receiving criticism from opposition, calling the hike post-election recovery campaign.
4: Desh bhar mein jaye, desh ki janta bhar mein jaye, aam aadmi mar jaye. आम आदमी को जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं होगा. किसान मर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है. अब इसका परिणाम क्या होगा? आज डीजल नहीं मिल रहा है, लाइन की लाइन लगी है लंबी. पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है. सोने के दाम बढ़ गए, फॉरेन कंट्री मत जाओ बोल रहे और 15-15 दिन के लिए पंतप्रधान भाग रहे. ये सब जो है वो केवल उपदेश जो है, ये आज की हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है.
0: As the political war of words rages on, the inflating fuel prices continues to burn a hole in the common man's pocket. With Karan Singh and Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today.
5: Now, the CBI's investigation into the NEET paper leak is widening by the day. The probe is now uncovering a highly organized network from professors linked to the paper setting process to coaching connections and an alleged trail running across multiple states. The political battle over the controversy is also intensifying, with the opposition targeting the centre over alleged lapses in the examination system. While the government says strict action is already underway, here's a report on the same.
6: Probe into the NEET paper leak is now revealing a multi-layered racket involving alleged insiders linked to the exam process, middlemen, coaching connections, and the circulation of question papers across states. Among the alleged kingpins is Pune-based botany professor Manisha Mandhare. According to the CBI, Mandhare was associated with the examination process as a subject expert and had access to confidential botany and zoology question pools, which she leaked to students. Delhi's Rouse Avenue Court has now sent Mandhare to a 14-day CBI custody.
7: Manisha ji, aapko paas hai mic. Ye
6: Investigators believe one of the earliest dissemination points emerged through the connection between Manisha Mandhare and another Pune-based accused, Manisha Vaghmare. As per the CBI, Mandhare had mobilized NEET exam candidates through Vaghmare and disclosed questions to these students. The court proceedings have also unearthed links between P.V. Kulkarni, a retired chemistry professor, and the chemistry paper setting process. Both Manisha Vaghmare and P.V. Kulkarni have also been sent to 10-day CBI custody. The probe is still underway and investigators say more arrests and disclosures are possible as the digital and financial evidence trail is examined. Meanwhile, the opposition continues to target the government over the paper leak. Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi has reiterated that Education Minister Dharmendra Pradhan must be sacked. Directly targeting Prime Minister Narendra Modi, Rahul Gandhi alleged that the BJP-RSS nexus has destroyed India's education system.
8: सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है, RSS, BJP और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।
6: In response, the BJP has accused the Congress of politicizing the issue, clarifying that the government has immediately taken corrective measures.
9: Rahul Gandhi ki aadat ho gayi hai ki har cheez ke liye Pradhan Mantri ko blame karte hain. NEET ko lekar jo dikkatein aayi hain, us par Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan ne bahut vistar se jawab de diya hai. Aur aainda dikkat na aaye iski puri guarantee di gayi hai.
10: राहुल गांधी विपक्षी नेता के नाते से जो कहना कहें, परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो अप्रोप्रिएट एक्शन था, सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया, सीबीआई की जांच हो रही है, धरपकड़ हो रही है।
6: As the CBI digs deeper and political heat intensifies, the NEET leakgate probe is now as much about accountability as it is about restoring trust in the system. With Anmol Bali and Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
5: Another day, another daughter, this time in Madhya Pradesh. Just 5 months ago, Twisha Sharma, resident of Uttar Pradesh's Noida, was married to Bhopal-based advocate Samarth Singh. She was promised happiness but was allegedly delivered horror. On Tuesday night, Twisha's family received the news of her death. Twisha's family has leveled some very serious allegations against her in-laws and husband. Her family claims she was subjected to mental harassment and domestic violence. They also allege that she was forced to terminate her pregnancy. The family has even made a claim that Twisha had called her mother shortly before her death and spoke about the pressure that she was under. But the police say no suicide note was recovered from the spot. It's a case of unnatural death that's been registered and an investigation is underway. Meanwhile, Twisha's family is having none of it and has started protesting outside the Chief Minister's residence, demanding justice for their daughter. Let me also tell you that the deceased's mother-in-law is a former judge, and a Bhopal court has already granted anticipatory bail to retired Judge Giribala Singh, citing her age. The sudden death of their 33-year-old daughter has raised several questions. Viewers, the cost of marriage can never be death. Another daughter has died. How many more before stricter laws are put in place? Clearly, Twisha deserved a future and not a funeral. And justice must be served.
11: दो आरोपी हैं, जो लड़का है समर्थ और उसकी माता।
12: Anticipatory bail देना माननीय न्यायालय का काम है। बाकी हम अपनी जांच कर रहे हैं और हमारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष और वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है।
5: Earlier, I spoke with Twisha's father, listening to what he had to say. And joining me in their hour of grief is Twisha's father and brother. Mr. Sharma, thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम समझ सकते हैं कि आपके लिए ये कितना ज़्यादा difficult time होगा आपके family के लिए अपने बेटी के loss पर, और जो पीड़ा आप अभी गुजर रहे हैं जिस पीड़ा से, हम उसको समझ सकते हैं. बट कुछ सवाल है जो हम भी आपसे पूछना चाहेंगे और जिनका जवाब पूरी देश अभी जानना चाहेगी. पहले बात तो, जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गए, वहां आप किससे मिले और उनसे क्या बातचीत हुई और उनके पास आपने क्या मांगे रखी?
13: जी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हमारी कोई ज्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की हमसे, और एक तरीके से देखा जाए तो लाचारी प्रकट हुई. उन्होंने बोला कि इस जुडिशरी में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते और जुडिशरी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. और इसमें एक चीज बड़ी स्पष्टता सामने निकल के आ रही है कि जो अक्यूज्ड हैं उनकी फैमिली से एक बहुत बड़ी लोकायुक्त हैं जिनका नाम सत्येंद्र सिंह है, जो इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो एक लोकायुक्त के सामने कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई बड़े से बड़ा नेता भी जाने से डरता है, और इसी के कारण जो है हम हर चीज से यहाँ पर तड़प रहे हैं. तड़प तड़प के सांस हमारी मर रही है और ये कानून हमारे लिए एक अभिशाप बन चुका है. आज आप देखिए कि मैं इतने दिन से यहाँ तड़प रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी FIR हुई, उसके बाद एक एक स्टेप पर हमारे अड़ंगे डाले गए. ये साफ साफ प्रतीत होता है PM रिपोर्ट से और बॉडी को देखने के बाद, चोट के मार्क्स देखने के बाद में, कि देयर इज सम सस्पिशियस थिंग्स.
5: एक एक ऐसी कॉल सामने आई है कि त्विशा सुसाइड के पहले, इसे अभी सुसाइड जो पुलिस कह रही है, ठहरा रही है, उसके पहले उनकी बात हुई थी अपने भाई के साथ. क्या आपको पता है उस कॉल में एग्जैक्टली बात क्या हुई थी? क्या उसने बताया था कि उसको डर है अपने जान गंवाने की?
13: नहीं नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी. वो कॉल में जो बात हुई थी, उनकी जो कॉल थी, वो अपनी मदर के साथ बातचीत कर रही थी. वो रो रही थी, वो 10-5 में रो रही थी. जब बातचीत करते ही करते ही 10-5 पर उसका पीछे से आवाज आई, और एक जो आवाज समर्थ की लग रही थी, उसके हस्बैंड की लग रही थी, और धड़ाम से फोन कट कर दिया गया. और उसके बाद ये बराबर फोन मिलाती रही, और इसको समर्थ को भी मिलाया, लड़की को भी अपने मिलाया, इनकी सास को भी मिलाया, किसी तीनों ने फोन नहीं उठाया. और जब फोन उठाया तब ये घटना घट चुकी थी.
5: एक और जो सवाल सामने, नहीं प्लीज बोलिए.
13: जब फोन उठाया उसने तब बोला शी इज नो मोर.
5: मेरा आखिरी दो सवाल है आपसे. एक ये कि जो अबॉर्शन की रिपोर्ट्स आई है, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर थी त्विशा से खुद कि उस पे किसी तरह का भी दबाव है उस फैमिली से, समर्थ के फैमिली से?
13: भयानक दबाव उसके ऊपर, इतना भयानक दबाव था कि उसके चैट्स में साफ रिफ्लेक्ट होता है. वो उससे दोनों ये माँ बेटे कहते थे किसका बच्चा है ये.
5: तो आप क्लेम कर रहे हैं कि अबॉर्शन का दबाव था समर्थ की फैमिली से?
13: दबाव था. ये तो लड़की ने बोला कि पापा मैं इस बच्चे को इनके कंसेंट के साथ ही इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ. मैं नहीं चाहती ऐसी स्थिति में बच्चे के की जहां पर मुझे ऐसा ट्रस्टी नहीं किया जा रहा है. तो इसने उन्हीं के घर के ही सारे क्लिनिक से जहां इन्होंने एविडेंस दिए हैं, आप उन एविडेंस को देखोगे, फैब्रिकेटेड एविडेंस इन्होंने जमा किए कि डॉक्टर्स की राय है, जो कि जो पेपर उन्होंने सबमिट किया उसमें साफ साफ लिखा है कि इट इज नॉट फॉर द लॉ पर्पस. उसमें उन्होंने डेट के भी जो डाले हैं उसमें भी डेट ऐसा लग रहा है कि उसमें अपने हिसाब से डेट डाली गई है. उसके अंदर सेम डेट में वो अबॉर्शन का भी ट्रीटमेंट करा रही है, सेम डेट में वो अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करा रही है, और उसमें डॉक्टर उसके वो लिख रहा है. तो ये इनके फैमिली डॉक्टर्स ही हैं जो उनकी क्लिनिक्स हैं जहां पर ये लोग ये एक्टिविटी करके रहे. देयर आर लॉट ऑफ ड्यूबियस थिंग्स. आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपको मैंने बताया इतना इन्फ्लुएंसियल हो गया कि हमारे ऊपर कोर्ट में अटैक हुआ, हमको वहां से भगाने की कोशिश की गई, यहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल है, हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं. आप समझ रहे हैं ना हम किन के खिलाफ?
5: बिल्कुल. एक तरीके से क्या आप कहेंगे कि आपका ये लड़ाई अब ये सिस्टम के अगेंस्ट ही हो चुका है?
13: बिल्कुल अंग्रेज हो चुका है जी सिस्टम, बिल्कुल काम लचरी हो चुका है सिस्टम. हमसे भरोसा जरूर दिला रहा है पर काम ही नहीं कर पा रहा ना. आपका अभियुक्त घूम रहे, फ्री होकर के घूम रहे हैं. गिरिवाला जी को बेल दे दी गई, आपके PM रिपोर्ट के लिए अटका दिया गया आपका काम. और क्या आप उम्मीद करेंगे न्याय की? हम चिल्ला रहे हैं, हम मर रहे हैं यहां पर, हमको मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है।
5: जी।
13: हम चाह रहे हैं भाई देशवासियों से कैसे भी, ये एक तरीके का निर्भया कांड की तरीके से निकल के आ रहा है, यहां पर सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है हमको।
5: नवनीति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ऐसे मुश्किल वक्त पर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपकी बात पहुंचा रहे हैं। हम ये केस,
13: इसको किसी भी तरीके से, मेरे केस को इंडिपेंडेंट बॉडी से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, PM2 जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप लोगों का यही सहयोग है, ये अपील मेरी सुने जो इसके जिम्मेदार पोस्ट पर लोग हैं। मैं एक बहुत भारत का एक सम्मानी छोटा सा नागरिक हूँ, प्लीज हेल्प मी आउट।
5: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपके मैसेज को आगे तक लेके जाएंगे।
13: थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू,
5: थैंक यू। Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. After days of search operations and mounting political attention, Bhagirath surrendered on Saturday and was taken into custody. The case has triggered a major storm in the state, with activists demanding strict action, while Bandi Sanjay has termed the case a political conspiracy. Here's a report. Take a look.
14: After days of cat and mouse chase, Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. Images accessed by India Today showed Bhagirath, accompanied by his lawyers, surrendering before the cops late on Saturday. After days of search operations, lookout notices and political heat, Bhagirath was taken into custody and later remanded to judicial custody by a local court. The case was registered based on a complaint involving a 17-year-old girl. Police invoked serious sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita along with the provisions of the POXO Act after recording the survivor's statement before a magistrate.
15: Police, SOT Police, Cyberabad has took custody of the Bandi Bhagirath. Police have conducted the investigation which they usually conduct as per BNSS. And as per POXO protocols, we have full confidence in the investigation. We have full confidence in the judicial procedure. We are very confident that we will be cleared of these allegations and we will come out clean.
14: Cyberabad police said that multiple teams were deployed across several locations, including Delhi and Karimnagar, before Bhagirath was traced near the police academy area and apprehended by the special operations team during a patrolling operation. The arrest has triggered sharp political and public reactions, with activists demanding strict action in the case.
16: We have been demanding since initially that this fellow should be arrested and put behind the bars, and the trial should be made on the immediate trials. We demand that a sitting judge, this case should be addressed.
14: Union Minister Bandi Sanjay has said that when it comes to law, everyone is equal. He, however, maintained that the charges against his son are nothing but a political conspiracy. With Abdul Bashir in Hyderabad, Bureau Report, India Today.
5: Was Thalaivar unhappy over Talapati's win? That's the question that's been driving the buzz for days. Now Rajnikanth has stepped in to set the record straight, denying any jealousy, calling the speculation misplaced and addressing the moments that triggered the very chatter. India Today reports, take a look.
17: சார், விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு.
14: Was Thalaivar unhappy over Talapati's win? After weeks of speculation, Rajnikanth puts the buzz to rest, setting the record straight on his stance over Vijay's victory.
18: விஜய் மேலே எனக்கு பொறாமை, நான் அரசியல் வந்து இல்லை, அரசியல் நான் இல்லைன்னு சொல்லி விலகி ஆச்சு. அரசியல் நான் இல்லாத போது அவர் மேலே எனக்கு ஏன் பொறாமை? ஒருவேளை கமல்ஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் என்ன பொறாமை வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. எனக்கும் விஜயருக்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ். நான் முதலையே சொல்லியிருக்கேன். என் நான் வந்து விஜயை வந்து நான் சும்மா இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டால் அது எனக்கு நல்லதில்லை கெட்ட பேர். விஜய் என்னை பற்றி கம்பேர் பண்ணிட்டால் அவருக்கு நல்லதில்லை. சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்துட்ருக்காரு. அவர் சிஎம் ஆனதில் எனக்கு என்ன போகிறாங்க.
14: He also strikes a personal note, calls Stalin's loss upsetting, says friendship is beyond politics.
18: Stalin avargal vandha adu kolathurile vandha thottathu enakku konja sangalama irundhathu adukaga oru nanbanangra murayila nadpu murayila avaru poyira paathara அதுக்கு வந்து நான் வந்து இங்கே விஜய் வந்து அது சிஎம் ஆகக்கூடாது, போர் வரக்கூடாது, அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து ரஜினி அங்கே போயிருக்காங்க, வேறு ஏதோ ரெண்டு பெரிய பார்ட்டியை வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலையில் தான் அதெல்லாம் பேச முடியுமா? அப்படி பேசுகிற ஒரு தரங்கெட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை.
14: So what's triggered the buzz? Talaiwa's meeting with Stalin soon after the results set the rumor mill.

0: There is no resolution to the war in West Asia. Global crisis is increasing because of the conflict. But at the receiving end is Aam Aadmi. It is another blow to the common man. The prices of CNG have been increased once again. This time, the prices have been increased by 1 rupee per kilo, marking the second consecutive increase in 48 hours and deepening the fuel cost burden on commuters. Earlier on May 15th, CNG prices were increased by rupees 2 per kilo. With the latest revision, CNG in Delhi will now cost 80.09 per kilo. In Noida and Ghaziabad, the revised rate stands at 88.70 per kilo. This hike will likely affect transportation costs as lakhs of private vehicle owners, cab operators and commercial transport users depend on CNG.
1: First time, in fact, the CNG prices have breached 80 rupees per kg. In fact, in Noida and other parts of NCR, Ghaziabad, it will be eventually 88, more than even 88 rupees per kilogram. In fact, one of the CNG pumps, many of these areas, we also ventured this since this morning after we heard the announcement. Few of the CNG pumps are not even operational. We have been told that they are waiting for a notification and probably this will be also time for them to profit making. But eventually there is no idea how, you know, what will be the, at what extent the price is going to go up. But at these the CNG pumps, kitna asar padega is par?
2: Bahut mushkil padega isme. 2-3 rupiya din bhar ka kam se kam 15-20 rupiya. एक ऑटो से 50,000 ऑटो है कितना रुपये लगा रहे हैं सरकार कितना फायदे में जा रही है वो देखिए पहले आप.
0: Prime Minister Modi has raised an alarm that global conflicts could impact decades of economic progress.
3: आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है. पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है. ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं.
0: The repeated hikes are attributed to surging international gas prices, higher crude oil costs, rupee depreciation and supply disruptions due to the ongoing West Asia conflict. As India is gearing up to tackle the crisis, the Modi government is receiving criticism from opposition, calling the hike post-election recovery campaign.
4: देश भर में जाए, देश की जनता भर में जाए, आम आदमी मर जाए. आम आदमी को जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं होगा. किसान मर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है. अब इसका परिणाम क्या होगा? आज डीजल नहीं मिल रहा है, लाइन की लाइन लगी है लंबी. पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है. सोने के दाम बढ़ गए, फॉरेन कंट्री मत जाओ बोल रहे और 15-15 दिन के लिए पंतप्रधान भाग रहे. ये सब जो है वो केवल उपदेश जो है, ये आज की हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है.
0: As the political war of words rages on, the inflating fuel prices continues to burn a hole in the common man's pocket. With Karan Singh and Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today.
5: Now, the CBI's investigation into the NEET paper leak is widening by the day. The probe is now uncovering a highly organized network from professors linked to the paper setting process to coaching connections and an alleged trail running across multiple states. The political battle over the controversy is also intensifying, with the opposition targeting the centre over alleged lapses in the examination system. While the government says strict action is already underway, here's a report on the same.
6: Probe into the NEET paper leak is now revealing a multi-layered racket involving alleged insiders linked to the exam process, middlemen, coaching connections, and the circulation of question papers across states. Among the alleged kingpins is Pune-based botany professor Manisha Mandhare. According to the CBI, Mandhare was associated with the examination process as a subject expert and had access to confidential botany and zoology question pools, which she leaked to students. Delhi's Rouse Avenue Court has now sent Mandhare to a 14-day CBI custody.
7: Manisha ji, aapko
6: Investigators believe one of the earliest dissemination points emerged through the connection between Manisha Mandhare and another Pune-based accused, Manisha Waghmare. As per the CBI, Mandhare had mobilized NEET exam candidates through Waghmare and disclosed questions to these students. The court proceedings have also unearthed links between P.V. Kulkarni, a retired chemistry professor, and the chemistry paper setting process. Both Manisha Waghmare and P.V. Kulkarni have also been sent to 10-day CBI custody. The probe is still underway and investigators say more arrests and disclosures are possible as the digital and financial evidence trail is examined. Meanwhile, the opposition continues to target the government over the paper leak. Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi has reiterated that Education Minister Dharmendra Pradhan must be sacked. Directly targeting Prime Minister Narendra Modi, Rahul Gandhi alleged that the BJP-RSS nexus has destroyed India's education system.
8: सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है. ये एक नेक्सस है, RSS, BJP और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, professors बिठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है.
6: In response, the BJP has accused the Congress of politicizing the issue, clarifying that the government has immediately taken corrective measures.
9: राहुल गांधी की आदत हो गई है कि हर चीज के लिए प्रधानमंत्री को ब्लेम करते हैं. नीट को लेकर जो दिक्कतें आई हैं उस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत विस्तार से जवाब दे दिया है. और आइंदा दिक्कत ना आए इसकी पूरी गारंटी दी गई.
10: राहुल गांधी विपक्षी नेता के नाते से जो कहना कहें, परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो अप्रोप्रिएट एक्शन था, सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया. सीबीआई की जांच हो रही है, धरपकड़ हो रही है.
6: As the CBI digs deeper and political heat intensifies, the NEET leakgate probe is now as much about accountability as it is about restoring trust in the system. With Anmol Bali and Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
5: Another day, another daughter. This time in Madhya Pradesh. Just 5 months ago, Twisha Sharma, resident of Uttar Pradesh's Noida, was married to Bhopal-based advocate Samarth Singh. She was promised happiness but was allegedly delivered horror. On Tuesday night, Twisha's family received the news of her death. Twisha's family has leveled some very serious allegations against her in-laws and husband. Her family claims she was subjected to mental harassment and domestic violence. They also allege that she was forced to terminate her pregnancy. The family has even made a claim that Twisha had called her mother shortly before her death and spoke about the pressure that she was under. But the police say no suicide note was recovered from the spot. It's a case of unnatural death that's been registered and an investigation is underway. Meanwhile, Twisha's family is having none of it and has started protesting outside the Chief Minister's residence, demanding justice for their daughter. Let me also tell you that the deceased mother-in-law is a former judge and a Bhopal court has already granted anticipatory bail to retired Judge Giribala Singh, citing her age. The sudden death of their 33-year-old daughter has raised several questions. Viewers, the cost of marriage can never be death. Another daughter has died. How many more before stricter laws are put in place? Clearly, Twisha deserved a future and not a funeral. And justice must be served.
11: Two aaropi hain, jo ladka hai Samarth aur uski mother.
12: Anticipatory bail dena माननीय न्यायालय का काम है. बाकी हम अपनी जांच कर रहे हैं और हमारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष और वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है.
5: Earlier, I spoke with Twisha's father, listening to what he had to say. And joining me in their hour of grief is Twisha's father and brother. Mr. Sharma, thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम समझ सकते हैं कि आपके लिए ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट टाइम होगा आपके फैमिली के लिए अपने बेटी के लॉस पर, और जो पीड़ा आप अभी गुजर रहे हैं जिस पीड़ा से, हम उसको समझ सकते हैं. बट कुछ सवाल है जो हम भी आपसे पूछना चाहेंगे और जिनका जवाब पूरी देश अभी जानना चाहेगी. पहले बात तो, जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गए, वहां आप किससे मिले और उनसे क्या बातचीत हुई और उनके पास आपने क्या मांगे रखी?
7: जी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हमारी कोई ज्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की हमसे, और एक तरीके से देखा जाए तो लाचारी प्रकट हुई. उन्होंने बोला कि इस जुडिशरी में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते और जुडिशरी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. और इसमें एक चीज बड़ी स्पष्टता सामने निकल के आ रही है कि जो अक्यूज्ड हैं उनकी फैमिली से एक बहुत बड़ी लोकायुक्त हैं जिनका नाम सत्येंद्र सिंह है, जो इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो एक लोकायुक्त के सामने कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई बड़े से बड़ा नेता भी जाने से डरता है, और इसी के कारण जो है हम हर चीज से यहाँ पर तड़प रहे हैं. तड़प तड़प के सांस हमारी मर रही है और ये कानून हमारे लिए एक अभिशाप बन चुका है. आज आप देखिए कि मैं इतने दिन से यहाँ तड़प रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी FIR हुई, उसके बाद एक एक स्टेप पर हमारे अड़ंगे डाले गए. ये साफ साफ प्रतीत होता है PM रिपोर्ट से और बॉडी को देखने के बाद, चोट के मार्क्स देखने के बाद में, कि देयर इज सम सस्पिशियस थिंग्स.
5: एक ऐसी कॉल सामने आई है कि त्विशा सुसाइड के पहले, इसे अभी सुसाइड जो पुलिस कह रही है, ठहरा रही है, उसके पहले उनकी बात हुई थी अपने भाई के साथ. क्या आपको पता है उस कॉल में एग्जैक्टली बात क्या हुई थी? क्या उसने बताया था कि उसको डर है अपने जान गंवाने की?
7: नहीं नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी. वो कॉल में जो बात हुई थी, उनकी जो कॉल थी, वो अपनी मदर के साथ बातचीत कर रही थी. वो रो रही थी, वो 10-5 में रो रही थी. जब बातचीत करते ही करते 10-5 पर उसका पीछे से आवाज आई और एक जो आवाज समर्थ की लग रही थी, उसके हस्बैंड की लग रही थी, और धड़ाम से फोन कट कर दिया गया. और उसके बाद ये बराबर फोन मिलाती रही और इसको समर्थ को भी मिलाया, लड़की को भी अपने मिलाया, इनकी सास को भी मिलाया, किसी तीनों ने फोन नहीं उठाया. और जब फोन उठाया तब ये घटना घट चुकी थी.
5: एक और जो सवाल सामने, नहीं प्लीज बोलिए.
7: जब फोन उठाया उसने तब बोला शी इज नो मोर.
5: मेरा आखिरी दो सवाल है आपसे. एक ये कि जो अबॉर्शन की रिपोर्ट्स आई है, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर थी त्विशा से खुद कि उस पे किसी तरह का भी दबाव है उस फैमिली से, समर्थ के फैमिली से?
7: भयानक दबाव उसके ऊपर, इतना भयानक दबाव था कि उसके चैट्स में साफ रिफ्लेक्ट होता है. वो उससे दोनों ये माँ बेटे कहते थे किसका बच्चा है ये.
5: तो आप क्लेम कर रहे हैं कि अबॉर्शन का दबाव था समर्थ की
7: दबाव
5: से?
7: था. ये तो लड़की ने बोला कि पापा मैं इस बच्चे को इनके कंसेंट के साथ ही इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ. मैं नहीं चाहती ऐसी स्थिति में बच्चे के की जहां पर मुझे ऐसा ट्रस्ट ही नहीं किया जा रहा है. तो इसने उन्हीं के घर के ही सारे क्लिनिक से जहां इन्होंने एविडेंस दिए हैं, आप उन एविडेंस को देखोगे, फैब्रिकेटेड एविडेंस इन्होंने जमा किए कि डॉक्टर्स की राय है, जो कि जो पेपर उन्होंने सबमिट किया उसमें साफ साफ लिखा है कि इट इज नॉट फॉर द लॉ पर्पस. उसमें उन्होंने डेट के भी जो डाले हैं उसमें भी डेट ऐसा लग रहा है कि उसमें अपने हिसाब से डेट डाली गई है. उसके अंदर सेम डेट में वो अबॉर्शन का भी ट्रीटमेंट करा रही है, सेम डेट में वो अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करा रही है, और उसमें डॉक्टर उसके वो लिख रहा है. तो ये इनके फैमिली डॉक्टर्स ही हैं जो उनकी क्लिनिक्स हैं जहां पर ये लोग ये एक्टिविटी करके रहे. देयर आर लॉट ऑफ डूबियस थिंग. आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपको मैंने बताया इतना इन्फ्लुएंसियल हो गया कि हमारे ऊपर कोर्ट में अटैक हुआ, हमको वहां से भगाने की कोशिश की गई, यहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल है, हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं. आप समझ रहे हैं ना हम किन के खिलाफ?
5: बिल्कुल. एक तरीके से क्या आप कहेंगे कि आपका ये लड़ाई अब ये सिस्टम के अगेंस्ट ही हो चुका है?
7: बिल्कुल अंग्रेज हो चुका है जी सिस्टम, बिल्कुल काम लचरी हो चुका है सिस्टम. हमसे भरोसा जरूर दिला रहा है पर काम ही नहीं कर पा रहा ना. आपका अभियुक्त घूम रहे हैं, फ्री होकर के घूम रहे हैं. गिरीवाला जी को बेल दे दी गई, आपके PM रिपोर्ट के लिए अटका दिया गया आपका काम. और क्या आप उम्मीद करेंगे न्याय की? हम चिल्ला रहे हैं, हम मर रहे हैं यहाँ पर. हमको हम मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है।
5: जी।
7: हम चाह रहे हैं भाई देशवासियों से कैसे भी ये एक तरीके का निर्भया कांड की तरीके से निकल के आ रहा है, यहाँ पर सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है हमको।
5: नवनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ऐसे मुश्किल वक्त पर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपकी बात पहुंचा रहे हैं। हम ये केस
7: इसको किसी भी तरीके से मेरे केस को इंडिपेंडेंट बॉडी से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, PM2 जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप लोगों का यही सहयोग है, ये अपील मेरी सुने जो इसके जिम्मेदार पोस्ट पर लोग हैं। मैं एक बहुत भारत का एक सम्मानी छोटा सा नागरिक हूँ, प्लीज हेल्प मी आउट।
5: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपके मैसेज को आगे तक लेके जाएंगे।
7: थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू,
5: थैंक यू। Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. After days of search operations and mounting political attention, Bhagirath surrendered on Saturday and was taken into custody. The case has triggered a major storm in the state, with activists demanding strict action, while Bandi Sanjay has termed the case a political conspiracy. Here's a report. Take a look.
6: After days of cat and mouse chase, Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. Images accessed by India Today showed Bhagirath, accompanied by his lawyers, surrendering before the cops late on Saturday. After days of search operations, lookout notices and political heat, Bhagirath was taken into custody and later remanded to judicial custody by a local court. The case was registered based on a complaint involving a 17-year-old girl. Police invoked serious sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita along with the provisions of the POXO Act after recording the survivor's statement before a magistrate.
13: Police, SOT Police, Cyberabad has took custody of the Bandi Bhagirath. Police have conducted the investigation which they usually conduct as per BNSS. And as per POXO protocols, we have full confidence in the investigation. We have full confidence in the judicial procedure. We are very confident that we will be cleared of these allegations and we will come out clean.
6: Cyberabad police said that multiple teams were deployed across several locations, including Delhi and Karimnagar, before Bhagirath was traced near the police academy area and apprehended by the special operations team during a patrolling operation. The arrest has triggered sharp political and public reactions, with activists demanding strict action in the case.
14: We have been demanding since initially that this fellow should be arrested and put behind the bars, and the trial should be made on the immediate trials. We demand that a sitting judge, this case should be addressed.
6: Union Minister Bandi Sanjay has said that when it comes to law, everyone is equal. He, however, maintained that the charges against his son are nothing but a political conspiracy. With Abdul Bashir in Hyderabad, Bureau Report, India Today.
5: Was Thalaivar unhappy over Talapathy's win? That's the question that's been driving the buzz for days. Now Rajnikanth has stepped in to set the record straight, denying any jealousy, calling the speculation misplaced and addressing the moments that triggered the very chatter. India Today reports, take a look.
15: சார் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு.
5: Was Thalaivar unhappy over Talapathy's win? After weeks of speculation, Rajnikanth puts the buzz to rest, setting the record straight on his stance over Vijay's victory.
16: விஜய் மேல எனக்கு பொறாமை, நான் அரசியல் வந்து இல்லை, அரசியல் நான் இல்லைன்னு சொல்லி விலகி ஆச்சு. அரசியல் நான் இல்லாத போது அவர் மேல எனக்கு ஏன் பொறாமை? ஒருவேளை கமல்ஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் எனக்கு பொறாமை வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. எனக்கும் விஜயருக்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ். நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன். என் நான் வந்து விஜய் வந்து நான் சும்மா இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டால் அது எனக்கு நல்லது இல்லை, கெட்ட பேர். விஜய் என்னை பற்றி கம்பேர் பண்ணிட்டா அவருக்கு நல்லது இல்லை. சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்துட்ருக்கேன். அவர் சிஎம் ஆனதில் எனக்கு என்ன போகிறாங்க.
5: He also strikes a personal note, calls Stalin's loss upsetting, says friendship is beyond politics.
16: ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அந்த குளத்தூரில் வந்து தோத்தது எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது. அதுக்காக ஒரு நண்பனுங்கிற முறையில் நட்பு முறையில் அவரை போய் நான் பார்த்தேன். அதுக்கு வந்து நான் வந்து இங்கே விஜய் வந்து அது சிஎம் ஆகக்கூடாது, இப்போ அவர் வரக்கூடாது, அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து ரஜினி அங்கே போயிருக்காங்க, வேற ஏதோ ரெண்டு பெரிய பார்ட்டியை வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலையில் தான் அதெல்லாம் பேச முடியுமா? அப்படி பேசுகிற ஒரு தரங்கெட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை.
5: Triggered the buzz. Thalaiwala's meeting with Stalin soon after the results set the rumor mills churning. And adding fuel to the fire, that moment of silence when asked about Vijay as chief minister.
15: Sir, Vijay mudalvara porpe irukkaru.
5: Kamal Hassan also weighs in, backs Vijay but cools expectations. Says judging a government in days is like astrology. Calls for 6 months and says don't over or underestimate newcomers.
3: ரெண்டு நாள்ல சொல்லக்கூடியது ஜோசியமா தான் இருக்க முடியும். 6 நாள்ல சொல்லக்கூடியது அப்படி தான் இருக்க முடியும். 15 நாள்லயும் அப்படி தான் இருக்க முடியும். அதான் ஒரு 6 மாசம் டைம் கொடுக்க வேண்டாம். நம்ம புதியவர்கள் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர். அதனால புதியவர்கள்ங்கிறது வந்து புதுசு கிடையாது. அரசியல் சுதந்திரம் இந்தியா கிடைச்ச போது எல்லாருமே புதிய மினிஸ்டர்ஸ் தான்.
5: From whispers to clarity, Thalaiwala draws the line. No jealousy, no rivalry. But the bigger question now, will this finally put the speculation to rest or will it only add fresh fuel to the fire? With Pramod Madhav and Ankita Garg, Bureau Report, India Today. Tamil superstar Vijay's dramatic rise to the chief minister's chair in Tamil Nadu is sparking political comparisons across the south, especially with the Andhra Pradesh deputy chief minister Pawan Kalyan. But the Janasena chief has now made it clear that Andhra's political landscape is very different from Tamil Nadu's and that political success cannot be replicated overnight. Here's a report on the same. Take a look.
6: Vijay's stunning ascent to Tamil Nadu's top job has sent ripples far beyond the state's borders. Amid this political fervor, comparisons have emerged with Andhra Pradesh's superstar and deputy chief minister Pawan Kalyan. While speaking to his party workers at Jan Sena's headquarters in Mangalagiri, Pawan Kalyan acknowledged the mounting pressure. The power star directly addressed his fans and political supporters who are wondering whether Pawan will immediately achieve the same feat as Vijay. Pawan pointedly reminded supporters that every state has its own distinct political dynamics and that what works in Tamil Nadu doesn't automatically translate to Andhra Pradesh. Solo politics, he made clear, is far easier said than done. Pawan Kalyan used a Telugu idiom to illustrate his point and sought to dismiss any comparisons to the new Tamil Nadu chief minister.
17: మన ముఖ్యంగా మొన్న తమిళనాడు ఎలక్షన్స్ వచ్చి ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా నన్ను చంపేస్తారు అందరం. దాని పరిస్థితులు వేరు, మన పరిస్థితులు వేరు. అంటే ఎందుకు చెప్తా అంటే దాని పరిస్థితులు వేరు, మన పరిస్థితులు వేరు.
6: Pawan's remarkable political ascent saw him transform from a mass hero to a mass politician. Although he faced early headwinds after founding the Jan Sena party in 2014, he rebounded to achieve a stunning victory in the 2024 elections, assuming office as the deputy chief minister of Andhra Pradesh. Therefore, Pawan's legion of fans are unlikely to stop comparing him with Vijay anytime soon. Bureau Report, India Today.
5: On his birthday, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu announced cash incentives for families having more than two children to tackle falling birth rates. Families may get Rs. 30,000 for a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. While the government says the move targets demographic decline, the opposition has criticized it as a diversionary tactic. Take a look at this report.
6: It was Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu's birthday, but the gift was for the people of the state. Chief Minister Naidu announced major incentives for families with more than two children to tackle declining population growth. Under the proposal, families will get Rs. 30,000 on the birth of a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. This announcement was made after the government noticed decline in the young population and the fertility rate is also hitting all-time low of 1.5. It was feared that 23% of the population may be over the age of 60 by 2047. Chief Minister Naidu, like before, said that children should be seen as wealth, not a burden, as he flagged concerns over falling population numbers earlier multiple times. Chief Minister Naidu assured that the government's population management policy will focus on boosting the birth rate. He also added that Anganwadi centres will be strengthened to provide nutritious food for mothers and children through the Women and Child Welfare Department. But while the Chief Minister laid out the details of the plan, the opposition was quick to react. Congress MP Karthi Chidambaram took a swipe at the announcement with just one word: seriously? Meanwhile, YSR Congress called the move an attempt to divert attention from what he termed the failures of the TDP-led government in Andhra Pradesh. From cash incentives to political criticism, Naidu's population push has now triggered a large debate. Can money motivate bigger families, or is this simply a political headline ahead of a demographic challenge? Bureau Report, India Today.
5: On that note, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and news through the very day. Thank you for watching. This is Riya Kundu.
18: Watching India Today.
19: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
20: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
21: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
22: You're listening to CNBC.
23: This is 80s hits, exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
24: Keep it on smooth jazz.
25: This is Roots Reggae.
26: Exclusively on TuneIn.
27: This is classic hip-hop.
28: Exclusively on TuneIn.
21: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn, and you're instantly connected. The shows, music, and news you love, anytime you want.
29: தனது நம்பிக்கையை தெரிவிக்கிறது என்னும் தீர்மானத்தை முழிகிறேன்.
30: The assembly session began with Vijay proposing the trust motion, with allies extending their support to the Vijay government one by one. Then came the AIADMK split and boost to Vijay in the number game, as reported by India Today. The AIADMK rebel group led by SP Velumani announced support to the Vijay government, ignoring the whip issued by the party. Edappadi K. Palaniswamy, who is facing off with rebels in his party, claimed that ministerial berths have been offered to break his party. Allegations of horse trading also echoed in the assembly, with the leader of the opposition, Udayanidhi Stalin, too, levelling serious charges and the chief minister hitting back. With 144 MLAs in his kitty, including 25 AIADMK rebels, Vijay now stands much stronger since falling short of majority. With Pramod Madhav and Anaga Keshav in Chennai, Bureau Report, India Today.

0: There is no resolution to the war in West Asia. Global crisis is increasing because of the conflict. But at the receiving end is Aam Aadmi. It is another blow to the common man. The prices of CNG have been increased once again. This time, the prices have been increased by 1 rupee per kilo, marking the second consecutive increase in 48 hours and deepening the fuel cost burden on commuters. Earlier on May 15th, CNG prices were increased by rupees 2 per kilo. With the latest revision, CNG in Delhi will now cost 80.09 per kilo. In Noida and Ghaziabad, the revised rate stands at 88.70 per kilo. This hike will likely affect transportation costs as lakhs of private vehicle owners, cab operators and commercial transport users depend on CNG.
1: First time, in fact, the CNG prices have breached 80 rupees per kg. In fact, in Noida and other parts of NCR, Ghaziabad, it will be eventually 88, more than even 88 rupees per kilogram. In fact, one of the CNG pumps, many of these areas, we also ventured this since this morning after we heard the announcement. Few of the CNG pumps are not even operational. We have been told that they are waiting for a notification and probably this will be also time for them to profit making. But eventually there is no idea how, you know, what will be that, what extent the price is going to go up. But at these CNG pumps, kitna asar padega is par?
2: Bahut muskil padega isme. 2-3 rupiya din bhar ka kam se kam 15-20 rupiya. एक ऑटो से 50,000 ऑटो है कितना रुपया लगा रहे हैं सरकार कितना फायदे में जा रही है वो देखिए पहले आप.
0: Prime Minister Modi has raised an alarm that global conflicts could impact decades of economic progress.
3: आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है. पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है. ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं.
0: द रिपीटेड हाइक्स आर एट्रिब्यूटेड टू सर्जिंग इंटरनेशनल गैस प्राइसेस, higher crude oil costs, rupee depreciation and supply disruptions due to the ongoing West Asia conflict. As India is gearing up to tackle the crisis, the Modi government is receiving criticism from opposition calling the hike post-election recovery campaign.
4: Desh bhar mein jaye, desh ki janta bhar mein jaye, aam aadmi mar jaye. आम आदमी को जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं होगा. किसान मर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है. अब इसका परिणाम क्या होगा? आज डीजल नहीं मिल रहा है, लाइन की लाइन लगी है लंबी. पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है. सोने के दाम बढ़ गए, फॉरेन कंट्री मत जाओ बोल रहे और 15-15 दिन के लिए पंतप्रधान भाग रहे. ये सब जो है वो केवल उपदेश जो है, ये आज की हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है.
0: As the political war of words rages on, the inflating fuel prices continues to burn a hole in the common man's pocket. With Karan Singh and Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today.
5: Now, the CBI's investigation into the NEET paper leak is widening by the day. The probe is now uncovering a highly organized network from professors linked to the paper setting process to coaching connections and an alleged trail running across multiple states. The political battle over the controversy is also intensifying, with the opposition targeting the centre over alleged lapses in the examination system. While the government says strict action is already underway, here's a report on the same.
6: CBI's probe into the NEET paper leak is now revealing a multi-layered racket involving alleged insiders linked to the exam process, middlemen, coaching connections and the circulation of question papers across states. Among the alleged kingpins is Pune-based botany professor Manisha Mandhare. According to the CBI, Mandhare was associated with the examination process as a subject expert and had access to confidential botany and zoology question pools, which she leaked to students. Delhi's Rao's Avenue Court has now sent Mandhare to a 14-day CBI custody.
7: Manisha ji, aapko paanch
6: Investigators believe one of the earliest dissemination points emerged through the connection between Manisha Mandhare and another Pune-based accused, Manisha Waghmare. As per the CBI, Mandhare had mobilized NEET exam candidates through Waghmare and disclosed questions to these students. The court proceedings have also unearthed links between P.V. Kulkarni, a retired chemistry professor, and the chemistry paper setting process. Both Manisha Waghmare and P.V. Kulkarni have also been sent to 10-day CBI custody. The probe is still underway and investigators say more arrests and disclosures are possible as the digital and financial evidence trail is examined. Meanwhile, the opposition continues to target the government over the paper leak. Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi has reiterated that Education Minister Dharmendra Pradhan must be sacked. Directly targeting Prime Minister Narendra Modi, Rahul Gandhi alleged that the BJP-RSS nexus has destroyed India's education system.
8: सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है. ये एक नेक्सस है, RSS, BJP और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है.
6: In response, the BJP has accused the Congress of politicizing the issue, clarifying that the government has immediately taken corrective measures.
9: Rahul Gandhi ki aadat ho gayi hai ki har cheez ke liye Pradhan Mantri ko blame karte hain. NEET ko lekar jo dikkatein aayi hain, us par Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan ne bahut vistar se jawab de diya hai. Aur aainda dikkat na aaye iski puri guarantee di gayi.
10: राहुल गांधी विपक्षी नेता के नाते से जो कहना कहें, परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो एप्रोप्रिएट एक्शन था, सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया. सीबीआई की जांच हो रही है, धरपकड़ हो रही है.
6: As the CBI digs deeper and political heat intensifies, the NEET leak gate probe is now as much about accountability as it is about restoring trust in the system. With Anmol Bali and Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
5: Another day, another daughter, this time in Madhya Pradesh. Just 5 months ago, Twisha Sharma, resident of Uttar Pradesh's Noida, was married to Bhopal-based advocate Samarth Singh. She was promised happiness but was allegedly delivered horror. On Tuesday night, Twisha's family received the news of her death. Twisha's family has leveled some very serious allegations against her in-laws and husband. Her family claims she was subjected to mental harassment and domestic violence. They also allege that she was forced to terminate her pregnancy. The family has even made a claim that Twisha had called her mother shortly before her death and spoke about the pressure that she was under. But the police say no suicide note was recovered from the spot. It's a case of unnatural death that's been registered and an investigation is underway. Meanwhile, Twisha's family is having none of it and has started protesting outside the Chief Minister's residence, demanding justice for their daughter. Let me also tell you that the deceased's mother-in-law is a former judge, and a Bhopal court has already granted anticipatory bail to retired Judge Giribala Singh, citing her age. The sudden death of their 33-year-old daughter has raised several questions. Viewers, the cost of marriage can never be death. Another daughter has died. How many more before stricter laws are put in place? Clearly, Twisha deserved a future and not a funeral. And justice must be served.
11: दो आरोपी हैं, जो लड़का है समर्थ और उसकी मदर.
12: एंटीसिपेटरी बेल देना माननीय न्यायालय का काम है. बाकी हम अपनी जांच कर रहे हैं और हमारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष और वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है.
5: Earlier, I spoke with Twisha's father, listening to what he had to say. And joining me in their hour of grief is Twisha's father and brother. Mr. Sharma, thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम समझ सकते हैं कि आपके लिए ये कितना ज़्यादा difficult time होगा आपके family के लिए अपने बेटी के loss पर, और जो पीड़ा आप अभी गुजर रहे हैं जिस पीड़ा से, हम उसको समझ सकते हैं. बट कुछ सवाल है जो हम भी आपसे पूछना चाहेंगे और जिनका जवाब पूरी देश अभी जानना चाहेगी. पहले बात तो, जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गए, वहां आप किससे मिले और उनसे क्या बातचीत हुई और उनके पास आपने क्या मांगे रखी?
13: जी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हमारी कोई ज्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की हमसे, और एक तरीके से देखा जाए तो लाचारी प्रकट हुई. उन्होंने बोला कि इस जुडिशरी में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते और जुडिशरी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. और इसमें एक चीज बड़ी स्पष्टता सामने निकल के आ रही है कि जो अक्यूज्ड हैं उनकी फैमिली से एक बहुत बड़ी लोकायुक्त हैं जिनका नाम सत्येंद्र सिंह है, जो इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो एक लोकायुक्त के सामने कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई बड़े से बड़ा नेता भी जाने से डरता है, और इसी के कारण जो है हम हर चीज से यहाँ पर तड़प रहे हैं. तड़प तड़प के सांस हमारी मर रही है और ये कानून हमारे लिए एक अभिशाप बन चुका है. आज आप देखिए कि मैं इतने दिन से यहाँ तड़प रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी FIR हुई, उसके बाद एक एक स्टेप पर हमारे अड़ंगे डाले गए. ये साफ साफ प्रतीत होता है PM रिपोर्ट से और बॉडी को देखने के बाद, चोट के मार्क्स देखने के बाद में, कि देयर इज सम सस्पिशियस थिंग्स.
5: एक ऐसी कॉल सामने आई है कि त्विशा सुसाइड के पहले, इसे अभी सुसाइड जो पुलिस कह रही है, ठहरा रही है, उसके पहले उनकी बात हुई थी अपने भाई के साथ. क्या आपको पता है उस कॉल में एग्जैक्टली बात क्या हुई थी? क्या उसने बताया था कि उसको डर है अपने जान गंवाने की?
13: नहीं नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी. वो कॉल में जो बात हुई थी, उनकी जो कॉल थी, वो अपनी मदर के साथ बातचीत कर रही थी. वो रो रही थी, वो 10-5 में रो रही थी. जब बातचीत करते ही करते 10-5 पर उसका पीछे से आवाज आई और एक जो आवाज समर्थ की लग रही थी, उसके हस्बैंड की लग रही थी, और धड़ाम से फोन कट कर दिया गया. और उसके बाद ये बराबर फोन मिलाती रही और इसको समर्थ को भी मिलाया, लड़की को भी अपने मिलाया, इनकी सास को भी मिलाया, किसी तीनों ने फोन नहीं उठाया. और जब फोन उठाया तब ये घटना घट चुकी थी.
5: एक और जो सवाल सामने, जी नहीं नहीं प्लीज बोलिए.
13: जब फोन उठाया उसने तब बोला शी इज नो मोर.
5: मेरा आखिरी दो सवाल है आपसे. एक ये कि जो अबॉर्शन की रिपोर्ट्स आई है, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर थी त्विशा से खुद कि उस पे किसी तरह का भी दबाव है उस फैमिली से, समर्थ के फैमिली से?
13: भयानक दबाव उसके ऊपर, इतना भयानक दबाव था कि उसके चैट्स में साफ रिफ्लेक्ट होता है. वो उससे दोनों ये माँ बेटे कहते थे किसका बच्चा है ये.
5: तो आप क्लेम कर रहे हैं कि अबॉर्शन का दबाव था?
13: ये तो लड़की ने बोला कि पापा मैं इस बच्चे को इनके कंसेंट के साथ ही इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ. मैं नहीं चाहती ऐसी स्थिति में बच्चे के की जहां पर मुझे ऐसा ट्रस्ट ही नहीं किया जा रहा है. तो इसने उन्हीं के घर के ही सारे क्लिनिक से जहां इन्होंने एविडेंस दिए हैं, आप उन एविडेंस को देखोगे, फैब्रिकेटेड एविडेंस इन्होंने जमा किए कि डॉक्टर्स की राय है, जो कि जो पेपर उन्होंने सबमिट किया उसमें साफ साफ लिखा है कि इट इज नॉट फॉर द लॉ पर्पस. उसमें उन्होंने डेट के भी जो डाले हैं उसमें भी डेट ऐसा लग रहा है कि उसमें अपने हिसाब से डेट डाली गई है. उसके अंदर सेम डेट में वो अबॉर्शन का भी ट्रीटमेंट करा रही है, सेम डेट में वो अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करा रही है, और उसमें डॉक्टर उसके वो लिख रहा है. तो ये इनके फैमिली डॉक्टर्स ही हैं जो उनकी क्लिनिक्स हैं जहां पर ये लोग ये एक्टिविटी करके रहे. देयर आर लॉट ऑफ डूबियस थिंग्स. आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपको मैंने बताया इतना इन्फ्लुएंसियल हो गया कि हमारे ऊपर कोर्ट में अटैक हुआ, हमको वहां से भगाने की कोशिश की गई, यहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल है, हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं. आप समझ रहे हैं ना हम किन के खिलाफ?
5: बिल्कुल. एक तरीके से क्या आप कहेंगे कि आपका ये लड़ाई अब ये सिस्टम के अगेंस्ट ही हो चुका है?
13: बिल्कुल अंग्रेज हो चुका है जी सिस्टम, बिल्कुल काम लचरी हो चुका है. सिस्टम हमसे भरोसा जरूर दिला रहा है पर काम ही नहीं कर पा रहा ना. आपका अभियुक्त घूम रहे हैं, फ्री होकर के घूम रहे हैं. गिरीवाला जी को बेल दे दी गई, आपके PM रिपोर्ट के लिए अटका दिया गया आपका काम. और क्या आप उम्मीद करेंगे न्याय की? हम चिल्ला रहे हैं, आप मर रहे हैं यहाँ पर. हमको मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है। हम चाह रहे हैं भाई देशवासियों से कैसे भी ये एक तरीके का निर्भया कांड की तरीके से निकल के आ रहा है, यहां पर सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है हमको।
5: नवनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ऐसे मुश्किल वक्त पर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपकी बात पहुंचा रहे हैं। हम ये केस
13: इसको किसी भी तरीके से मेरे केस को इंडिपेंडेंट बॉडी से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, PM2 जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप लोगों का यही सहयोग है, ये अपील मेरी सुने जो इसके जिम्मेदार पोस्ट पर लोग हैं। मैं एक बहुत भारत का एक सम्मानी छोटा सा नागरिक हूँ, प्लीज हेल्प मी आउट।
5: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपके मैसेज को आगे तक लेके जाएंगे।
13: थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू,
5: थैंक यू। Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. After days of search operations and mounting political attention, Bhagirath surrendered on Saturday and was taken into custody. The case has triggered a major storm in the state, with activists demanding strict action, while Bandi Sanjay has termed the case a political conspiracy. Here's a report. Take a look.
6: After days of cat and mouse chase, Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. Images accessed by India Today showed Bhagirath, accompanied by his lawyers, surrendering before the cops late on Saturday. After days of search operations, lookout notices and political heat, Bhagirath was taken into custody and later remanded to judicial custody by a local court. The case was registered based on a complaint involving a 17-year-old girl. Police invoked serious sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita along with the provisions of the POXO Act after recording the survivor's statement before a magistrate.
14: Police, SOT Police, Cyberabad has took custody of the Bandi Bhagirath. Police have conducted the investigation which they usually conduct as per BNSS. And as per POXO protocols, we have full confidence in the investigation. We have full confidence in the judicial procedure. We are very confident that we will be cleared of these allegations and we will come out clean.
6: Cyberabad police said that multiple teams were deployed across several locations, including Delhi and Karimnagar, before Bhagirath was traced near the police academy area and apprehended by the special operations team during a patrolling operation. The arrest has triggered sharp political and public reactions, with activists demanding strict action in the case.
15: We have been demanding since initially that this fellow should be arrested and put behind the bars, and the trial should be made on the immediate trials. We demand that a sitting judge, this case should be addressed.
6: Union Minister Bandi Sanjay has said that when it comes to law, everyone is equal. He, however, maintained that the charges against his son are nothing but a political conspiracy. With Abdul Bashir in Hyderabad, Bureau Report, India Today.
5: Was Thalaivar unhappy over Talapathy's win? That's the question that's been driving the buzz for days. Now Rajnikant has stepped in to set the record straight, denying any jealousy, calling the speculation misplaced and addressing the moments that triggered the very chatter. India Today reports, take a look.
16: சார் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு.
5: Was Thalaivar unhappy over Talapathy's win? After weeks of speculation, Rajnikant puts the buzz to rest, setting the record straight on his stance over Vijay's victory.
17: விஜய் மேலே எனக்கு போறாமே அப்படின்னு நான் அரசியல் வந்து இல்லை, அரசியல் நான் இல்லைன்னு சொல்லி விலகி ஆச்சு. அரசியல் நான் இல்லாத போது அவர் மேலே எனக்கு ஏன் போறாமே? ஒருவேளை கமல்ஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் என்ன போகாமல் வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. எனக்கும் விஜயருக்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ். நான் முதலையே சொல்லியிருக்கேன். நான் வந்து விஜயை வந்து நான் சும்மா இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டால் அது எனக்கு நல்லதில்லை கெட்ட பேர். விஜய் என்ன பற்றி கம்பேர் பண்ணிட்டா அவருக்கு நல்லதில்லை. சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்துட்ருக்காரு. அவர் சிஎம் ஆனதில் எனக்கு என்ன போகிறாங்க.
5: He also strikes a personal note, calls Stalin's loss upsetting, says friendship is beyond politics.
17: Stalin avargal vandha kolathoorla vandha thottathu enak konja sangalama irundhathu adukaga or nanbanangra murayila nadpu murayila avara poyana paathen அதுக்கு வந்து நான் வந்து இங்கே விஜய் வந்து சிஎம் ஆகக்கூடாது போர் வரக்கூடாது அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து ரஜினி அங்கே போயிருக்காங்க வேறு ஏதோ ரெண்டு பெரிய பார்ட்டியை வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலையில் நான் அதெல்லாம் பேச முடியுமா? அப்படி பேசுகிற ஒரு தரங்கெட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை.
5: So what triggered the buzz? Thalaiwar's meeting with Stalin soon after the results set the rumor mills churning and adding fuel to the fire. That moment of silence when asked about Vijay as chief minister.
16: Sir, Vijay mudalvara porpe irukkaru.
5: Kamal Hassan also weighs in, backs Vijay but cools expectations. Says judging a government in days is like astrology. Calls for 6 months and says don't over or underestimate newcomers.
18: ரெண்டு நாள்ல சொல்லக்கூடியது ஜோசியமா தான் இருக்க முடியும். ஆறு நாள்ல சொல்லக்கூடியது அப்படிதான் இருக்க முடியும். 15 நாள்லயும் அப்படிதான் இருக்க முடியும். அதான் ஒரு 6 மாசம் டைம் கொடுக்க வேண்டாம். புதியவர்கள் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர், அதனால

0: There is no resolution to the war in West Asia. Global crisis is increasing because of the conflict. But at the receiving end is Aam Aadmi. It is another blow to the common man. The prices of CNG have been increased once again. This time, the prices have been increased by 1 rupee per kilo, marking the second consecutive increase in 48 hours and deepening the fuel cost burden on commuters. Earlier on May 15th, CNG prices were increased by rupees 2 per kilo. With the latest revision, CNG in Delhi will now cost 80.09 per kilo. In Noida and Ghaziabad, the revised rate stands at 88.70 per kilo. This hike will likely affect transportation costs as lakhs of private vehicle owners, cab operators and commercial transport users depend on CNG.
1: First time, in fact, the CNG prices have breached 80 rupees per kg. In fact, in Noida and other parts of NCR, Ghaziabad, it will be eventually 88, more than even 88 rupees per kilogram. In fact, one of the CNG pumps, many of these areas, we also ventured this since this morning after we heard the announcement. Few of the CNG pumps are not even operational. We have been told that they are waiting for a notification and probably this will be also time for them to profit making. But eventually there is no idea how, you know, what will be that, what extent the price is going to go up. But at these the CNG pumps, kitna asar padega is par?
2: Bahut muskil padega isme. 2-3 rupiya din bhar ka kam se kam 15-20 rupiya. एक ऑटो से 50,000 ऑटो है, कितना रुपया लगा रहे हैं सरकार, कितना फायदे में जा रही है वो देखिए पहले आप.
0: Prime Minister Modi has raised an alarm that global conflicts could impact decades of economic progress.
3: आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है. पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है. ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं.
0: The repeated hikes are attributed to surging international gas prices, higher crude oil costs, rupee depreciation and supply disruptions due to the ongoing West Asia conflict. As India is gearing up to tackle the crisis, the Modi government is receiving criticism from opposition, calling the hike post-election recovery campaign.
4: Desh bhar mein jaye, desh ki janta bhar mein jaye, aam aadmi mar jaye. आम आदमी को जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं होगा. किसान मर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है. अब इसका परिणाम क्या होगा? आज डीजल नहीं मिल रहा है, लाइन की लाइन लगी है लंबी. पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है. सोने के दाम बढ़ गए, फॉरेन कंट्री मत जाओ बोल रहे और 15-15 दिन के लिए पंतप्रधान भाग रहे. ये सब जो है वो केवल उपदेश जो है, ये आज की हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है.
0: As the political war of words rages on, the inflating fuel prices continues to burn a hole in the common man's pocket. With Karan Singh and Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today.
5: Now, the CBI's investigation into the NEET paper leak is widening by the day. The probe is now uncovering a highly organized network from professors linked to the paper setting process to coaching connections and an alleged trail running across multiple states. The political battle over the controversy is also intensifying, with the opposition targeting the centre over alleged lapses in the examination system. While the government says strict action is already underway, here's a report on the same.
6: CBI's probe into the NEET paper leak is now revealing a multi-layered racket involving alleged insiders linked to the exam process, middlemen, coaching connections and the circulation of question papers across states. Among the alleged kingpins is Pune-based botany professor Manisha Mandhare. According to the CBI, Mandhare was associated with the examination process as a subject expert and had access to confidential botany and zoology question pools, which she leaked to students. Delhi's Rouse Avenue Court has now sent Mandhare to a 14-day CBI custody.
7: Manisha ji, aapko master mind ka
6: bataenge. Investigators believe one of the earliest dissemination points emerged through the connection between Manisha Mandhare and another Pune-based accused, Manisha Vaghmare. As per the CBI, Mandhare had mobilized NEET exam candidates through Vaghmare and disclosed questions to these students. The court proceedings have also unearthed links between P.V. Kulkarni, a retired chemistry professor, and the chemistry paper setting process. Both Manisha Vaghmare and P.V. Kulkarni have also been sent to 10-day CBI custody. The probe is still underway, and investigators say more arrests and disclosures are possible as the digital and financial evidence trail is examined. Meanwhile, the opposition continues to target the government over the paper leak. Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi has reiterated that Education Minister Dharmendra Pradhan must be sacked. Directly targeting Prime Minister Narendra Modi, Rahul Gandhi alleged that the BJP-RSS nexus has destroyed India's education system.
8: Sachai hai. कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है जो सेंटर है उसको डैमेज किया है ये एक नेक्सस है आरएसएस बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है.
6: In response, the BJP has accused the Congress of politicizing the issue, clarifying that the government has immediately taken corrective measures.
9: Rahul Gandhi ki aadat ho gayi hai ki har cheez ke liye Pradhan Mantri ko blame karte hain. NEET ko lekar jo dikkatein aayi hain, us par Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan ne bahut vistar se jawab de diya hai. Aur aainda dikkat na aaye iski puri guarantee di gayi.
10: राहुल गांधी विपक्षी नेता के नाते से जो कहना कहें परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो एप्रोप्रिएट एक्शन था सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया सीबीआई की जांच हो रही है धरपकड़ हो रही है.
6: As the CBI digs deeper and political heat intensifies, the NEET leakgate probe is now as much about accountability as it is about restoring trust in the system. With Anmol Bali and Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
5: Another day, another daughter, this time in Madhya Pradesh. Just 5 months ago, Twisha Sharma, resident of Uttar Pradesh's Noida, was married to Bhopal-based advocate Samarth Singh. She was promised happiness but was allegedly delivered horror. On Tuesday night, Twisha's family received the news of her death. Twisha's family has leveled some very serious allegations against her in-laws and husband. Her family claims she was subjected to mental harassment and domestic violence. They also allege that she was forced to terminate her pregnancy. The family has even made a claim that Twisha had called her mother shortly before her death and spoke about the pressure that she was under. But the police say no suicide note was recovered from the spot. It's a case of unnatural death that's been registered and an investigation is underway. Meanwhile, Twisha's family is having none of it and has started protesting outside the Chief Minister's residence, demanding justice for their daughter. Let me also tell you that the deceased's mother-in-law is a former judge, and a Bhopal court has already granted anticipatory bail to retired Judge Giribala Singh, citing her age. The sudden death of their 33-year-old daughter has raised several questions. Viewers, the cost of marriage can never be death. Another daughter has died. How many more before stricter laws are put in place? Clearly, Twisha deserved a future and not a funeral. And justice must be served.
11: दो आरोपी हैं, जो लड़का है समर और उसकी मदर.
12: Anticipatory bail देना माननीय न्यायालय का काम है. बाकी हम अपनी जांच कर रहे हैं और हमारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष और वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है.
5: Earlier, I spoke with Twisha's father, listening to what he had to say. And joining me in their hour of grief is Twisha's father and brother. Mr. Sharma, thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम समझ सकते हैं कि आपके लिए ये कितना ज़्यादा difficult time होगा आपके family के लिए अपने बेटी के loss पर, और जो पीड़ा आप अभी गुजर रहे हैं जिस पीड़ा से, हम उसको समझ सकते हैं. बट कुछ सवाल है जो हम भी आपसे पूछना चाहेंगे और जिनका जवाब पूरी देश अभी जानना चाहेगी. पहले बात तो, जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गए, वहां आप किससे मिले और उनसे क्या बातचीत हुई और उनके पास आपने क्या मांगे रखी?
13: जी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हमारी कोई ज्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की हमसे, और एक तरीके से देखा जाए तो लाचारी प्रकट हुई. उन्होंने बोला कि इस जुडिशरी में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते और जुडिशरी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. और इसमें एक चीज बड़ी स्पष्टता सामने निकल के आ रही है कि जो अक्यूज्ड हैं उनकी फैमिली से एक बहुत बड़ी लोकायुक्त हैं जिनका नाम सत्येंद्र सिंह है, जो इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो एक लोकायुक्त के सामने कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई बड़े से बड़ा नेता भी जाने से डरता है, और इसी के कारण जो है हम हर चीज से यहाँ पर तड़प रहे हैं. तड़प तड़प के सांस हमारी मर रही है और ये कानून हमारे लिए एक अभिशाप बन चुका है. आज आप देखिए कि मैं इतने दिन से यहाँ तड़प रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी FIR हुई, उसके बाद एक एक स्टेप पर हमारे अड़ंगे डाले गए. ये साफ साफ प्रतीत होता है PM रिपोर्ट से और बॉडी को देखने के बाद, चोट के मार्क्स देखने के बाद में, कि देयर इज सम सस्पिशियस थिंग्स.
5: एक ऐसी कॉल सामने आई है कि त्विशा सुसाइड के पहले, इसे अभी सुसाइड जो पुलिस कह रही है, ठहरा रही है, उसके पहले उनकी बात हुई थी अपने भाई के साथ. क्या आपको पता है उस कॉल में एग्जैक्टली बात क्या हुई थी? क्या उसने बताया था कि उसको डर है अपने जान गंवाने की?
13: नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी. वो कॉल में जो बात हुई थी, उनकी जो कॉल थी, वो अपनी मदर के साथ बातचीत कर रही थी. वो रो रही थी, वो 10-5 में रो रही थी. जब बातचीत करते ही करते 10-5 पर उसका पीछे से आवाज आई और एक जो आवाज समर्थ की लग रही थी, उसके हस्बैंड की लग रही थी, और धड़ाम से फोन कट कर दिया गया. और उसके बाद ये बराबर फोन मिलाती रही और इसको समर्थ को भी मिलाया, लड़की को भी अपने मिलाया, इनकी सास को भी मिलाया, किसी तीनों ने फोन नहीं उठाया. और जब फोन उठाया तब ये घटना घट चुकी थी.
5: एक और जो सवाल सामने, जी नहीं नहीं प्लीज बोलिए.
13: जब फोन उठाया उसने तब बोला शी इज नो मोर.
5: मेरा आखिरी दो सवाल है आपसे. एक ये कि जो अबॉर्शन की रिपोर्ट्स आई है, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर थी त्विशा से खुद कि उस पे किसी तरह का भी दबाव है उस फैमिली से, समर्थ के फैमिली से?
13: भयानक दबाव उसके ऊपर, इतना भयानक दबाव था कि उसके चैट्स में साफ रिफ्लेक्ट होता है. वो उससे दोनों ये माँ बेटे कहते थे किसका बच्चा है ये.
5: तो आप क्लेम कर रहे हैं कि अबॉर्शन का दबाव था समर्थ के
13: दबाव था से? ये तो लड़की ने बोला कि पापा मैं इस बच्चे को इनके कंसेंट के साथ ही इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ. मैं नहीं चाहती ऐसी स्थिति में बच्चे के की जहां पर मुझे ऐसा ट्रस्ट ही नहीं किया जा रहा है. तो इसने उन्हीं के घर के ही सारे क्लिनिक से जहां इन्होंने एविडेंस दिए हैं, आप उन एविडेंस को देखोगे, फैब्रिकेटेड एविडेंस इन्होंने जमा किए कि डॉक्टर्स की राय है, जो कि जो पेपर उन्होंने सबमिट किया उसमें साफ साफ लिखा है कि इट इज नॉट फॉर द लॉ पर्पस. उसमें उन्होंने डेट के भी जो डाले हैं उसमें भी डेट ऐसा लग रहा है कि उसमें अपने हिसाब से डेट डाली गई है. उसके अंदर सेम डेट में वो अबॉर्शन का भी ट्रीटमेंट करा रही है, सेम डेट में वो अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करा रही है, और उसमें डॉक्टर उसके वो लिख रहा है. तो ये इनके फैमिली डॉक्टर्स ही हैं जो उनकी क्लिनिक्स हैं जहां पर ये लोग ये एक्टिविटी करके रहे. देयर आर लॉट ऑफ डूबियस थिंग्स. आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपको मैंने बताया इतना इन्फ्लुएंसियल हो गया कि हमारे ऊपर कोर्ट में अटैक हुआ, हमको वहां से भगाने की कोशिश की गई, यहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल है, हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं. आप समझ रहे हैं ना हम किनके खिलाफ?
5: बिल्कुल. एक तरीके से क्या आप कहेंगे कि आपका ये लड़ाई अब ये सिस्टम के अगेंस्ट ही हो चुका है?
13: बिल्कुल अंग्रेज हो चुका है जी सिस्टम, बिल्कुल काम लचरी हो चुका है सिस्टम. हमसे भरोसा जरूर दिला रहा है पर काम ही नहीं कर पा रहा ना. आपका अभियुक्त घूम रहे हैं, फ्री होकर के घूम रहे हैं. गिरीवाला जी को बेल दे दी गई, आपके PM रिपोर्ट के लिए अटका दिया गया आपका काम. और क्या आप उम्मीद करेंगे न्याय की? हम चिल्ला रहे हैं, हम मर रहे हैं यहाँ पर. हमको मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है। हम चाह रहे हैं भाई देशवासियों से कैसे भी ये एक तरीके का निर्भया कांड की तरीके से निकल के आ रहा है, यहां पर सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है हमको।
5: नवनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ऐसे मुश्किल वक्त पर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपकी बात पहुंचा रहे हैं। हम ये केस
13: इसको किसी भी तरीके से मेरे केस को इंडिपेंडेंट बॉडी से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, PM2 जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप लोगों का यही सहयोग है, ये अपील मेरी सुने जो इसके जिम्मेदार पोस्ट पर लोग हैं। मैं एक बहुत भारत का एक सम्मानी छोटा सा नागरिक हूँ, प्लीज हेल्प मी आउट।
5: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपके मैसेज को आगे तक लेके जाएंगे।
13: थैंक यू जी।
5: Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. After days of search operations and mounting political attention, Bhagirath surrendered on Saturday and was taken into custody. The case has triggered a major storm in the state, with activists demanding strict action, while Bandi Sanjay has termed the case a political conspiracy. Here's a report. Take a look.
6: After days of cat and mouse chase, Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. Images accessed by India Today showed Bhagirath, accompanied by his lawyers, surrendering before the cops late on Saturday. After days of search operations, lookout notices and political heat, Bhagirath was taken into custody and later remanded to judicial custody by a local court. The case was registered based on a complaint involving a 17-year-old girl. Police invoked serious sections of the Bharatiya Nyay Sanhita along with the provisions of the POXO Act after recording the survivor's statement before a magistrate.
14: Police, SOT Police, Cyberabad has took custody of the Bandi Bhagirath. Police have conducted the investigation which they usually conduct as per BNSS. And as per POXO protocols, we have full confidence in the investigation. We have full confidence in the judicial procedure. We are very confident that we will be cleared of these allegations and we will come out clean.
6: Cyberabad police said that multiple teams were deployed across several locations, including Delhi and Karimnagar, before Bhagirath was traced near the police academy area and apprehended by the special operations team during a patrolling operation. The arrest has triggered sharp political and public reactions, with activists demanding strict action in the case.
15: We have been demanding since initially that this fellow should be arrested and put behind the bars, and the trial should be made on the immediate trials. We demand that a sitting judge, this case should be addressed.
6: Union Minister Bandi Sanjay has said that when it comes to law, everyone is equal. He, however, maintained that the charges against his son are nothing but a political conspiracy. With Abdul Bashir in Hyderabad, Bureau Report, India Today.
5: Was Thalaivar unhappy over Talapathy's win? That's the question that's been driving the buzz for days. Now Rajnikant has stepped in to set the record straight, denying any jealousy, calling the speculation misplaced and addressing the moments that triggered the very chatter. India Today reports. Take a look.
16: சார் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு.
5: Was Thalaivar unhappy over Talapathy's win? After weeks of speculation, Rajnikant puts the buzz to rest, setting the record straight on his stance over Vijay's victory.
17: விஜய் மேலே எனக்கு போறாமே நான் அரசியல் வந்து இல்லை, அரசியல் நான் இல்லைன்னு சொல்லி விலகி ஆச்சு. அரசியல் நான் இல்லாத போது அவர் மேலே எனக்கு ஏன் போறாமே? ஒருவேளை கமல்ஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் எனக்கு பொறாமை வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. எனக்கும் விஜயருக்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ். நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன். நான் வந்து விஜயை வந்து நான் சும்மா இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டால் அது எனக்கு நல்லதில்லை கெட்ட பேர். விஜய் என்னை பற்றி கம்பேர் பண்ணிவிட்டால் அவருக்கு நல்லதில்லை. சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்துட்ருக்காரு. அவர் சிஎம் ஆனதில் எனக்கு என்ன போகிறாங்க.
5: He also strikes a personal note, calls Stalin's loss upsetting, says friendship is beyond politics.
17: ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அந்த குளத்தூரில் வந்து தோத்தது எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது. அதுக்காக ஒரு நண்பனுங்கிற முறையில் நட்பு முறையில் அவரை போய் நான் பார்த்தேன். அதுக்கு வந்து நான் வந்து இங்கே விஜய் வந்து அது சிஎம் ஆகக்கூடாது, போர் வரக்கூடாது, அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து ரஜினி அங்கே போயிருக்காங்க, வேறு ஏதோ ரெண்டு பெரிய பார்ட்டியை வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலையில் தான் அதெல்லாம் பேச முடியுமா? அப்படி பேசுகிற ஒரு தரங்கெட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை.
5: Triggered the buzz. Thalaiwar's meeting with Stalin soon after the results set the rumor mills churning. And adding fuel to the fire, that moment of silence when asked about Vijay as chief minister.
16: Sir, Vijay mudalvara porpe irukkaru.
5: Kamal Hassan also weighs in, backs Vijay but cools expectations. Says judging a government in days is like astrology. Calls for 6 months and says don't over or underestimate newcomers.
18: ரெண்டு நாள்ல சொல்லக்கூடியது ஜோசியமா தான் இருக்க முடியும். ஆறு நாள்ல சொல்லக்கூடியது அப்படிதான் இருக்க முடியும். 15 நாள்லயும் அப்படிதான் இருக்க முடியும். அதான் ஒரு 6 மாசம் டைம் கொடுக்க வேண்டாம். நம்ம புதியவர்கள் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர். அதனால புதியவர்கள்ங்கிறது வந்து புதுசு கிடையாது. அரசியல் சுதந்திரம் இந்தியா கிடைச்ச போது எல்லாருமே புதிய மினிஸ்டர்ஸ் தான்.
5: From whispers to clarity, Thalaiwar draws the line. No jealousy, no rivalry. But the bigger question now, will this finally put the speculation to rest or will it only add fresh fuel to the fire? With Pramod Madhav and Ankita Garg, Bureau Report, India Today. Tamil superstar Vijay's dramatic rise to the chief minister's chair in Tamil Nadu is sparking political comparisons across the south, especially with the Andhra Pradesh deputy chief minister Pawan Kalyan. But the Janasena chief has now made it clear that Andhra's political landscape is very different from Tamil Nadu's and that political success cannot be replicated overnight. Here's a report on the same. Take a look.
6: Vijay's stunning ascent to Tamil Nadu's top job has sent ripples far beyond the state's borders. Amid this political fervor, comparisons have emerged with Andhra Pradesh's superstar and deputy chief minister Pawan Kalyan. While speaking to his party workers at Jan Sena's headquarters in Mangalagiri, Pawan Kalyan acknowledged the mounting pressure. The power star directly addressed his fans and political supporters who are wondering whether Pawan will immediately achieve the same feat as Vijay. Pawan pointedly reminded supporters that every state has its own distinct political dynamics and that what works in Tamil Nadu doesn't automatically translate to Andhra Pradesh. Solo politics, he made clear, is far easier said than done. Pawan Kalyan used a Telugu idiom to illustrate his point and sought to dismiss any comparisons to the new Tamil Nadu chief minister.
19: మన ముఖ్యంగా మొన్న తమిళనాడు ఎలక్షన్స్ వచ్చి ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా నన్ను చంపేస్తారు అందరం. దాని పరిస్థితులు వేరు, మన పరిస్థితులు వేరు. అంటే ఎందుకు చెప్తా అంటే దాని పరిస్థితులు వేరు, మన పరిస్థితులు వేరు.
6: Pawan's remarkable political ascent saw him transform from a mass hero to a mass politician.
19: Unka shikar karega.
6: Although he faced early headwinds after founding the Jan Sena party in 2014, he rebounded to achieve a stunning victory in the 2024 elections, assuming office as the deputy chief minister of Andhra Pradesh. Therefore, Pawan's legion of fans are unlikely to stop comparing him with Vijay anytime soon. Bureau Report, India Today.
5: On his birthday, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu announced cash incentives for families having more than two children to tackle falling birth rates. Families may get Rs. 30,000 for a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. While the government says the move targets demographic decline, the opposition has criticized it as a diversionary tactic. Take a look at this report. It was Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu's birthday, but the gift was for the people of the state. Chief Minister Naidu announced major incentives for families with more than two children to tackle declining population growth. Under the proposal, families will get Rs. 30,000 on the birth of a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. This announcement was made after the government noticed decline in the young population and the fertility rate is also hitting all-time low of 1.5. It was feared that 23% of the population may be over the age of 60 by 2047. Chief Minister Naidu, like before, said that children should be seen as wealth, not a burden, as he flagged concerns over falling population numbers earlier multiple times. Chief Minister Naidu assured that the government's population management policy will focus on boosting the birth rate. He also added that Anganwadi centres will be strengthened to provide nutritious food for mothers and children through the Women and Child Welfare Department. But while the Chief Minister laid out the details of the plan, the opposition was quick to react. Congress MP Karthi Chidambaram took a swipe at the announcement with just one word: seriously? Meanwhile, YSR Congress called the move an attempt to divert attention from what he termed the failures of the TDP-led government in Andhra Pradesh. From cash incentives to political criticism, Naidu's population push has now triggered a large debate. Can money motivate bigger families, or is this simply a political headline ahead of a demographic challenge? Bureau Report, India Today. On that note, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and news through the very day. Thank you for watching. This is Riya Kundu.
20: Watching India Today.
21: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
22: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
23: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. explore country roads.
1: Thank God I get to wake
23: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
20: You are watching India Today.
5: Fuel prices are biting harder. Just 2 days after a 2 rupee hike, CNG prices went up again by rupees 1. This is, remember, the second hike in just 48 hours amid global energy turmoil and has stoked a massive political storm. Take a look at this news report.

0: There is no resolution to the war in West Asia. Global crisis is increasing because of the conflict. But at the receiving end is Aam Aadmi. It is another blow to the common man. The prices of CNG have been increased once again. This time, the prices have been increased by 1 rupee per kilo, marking the second consecutive increase in 48 hours and deepening the fuel cost burden on commuters. Earlier on May 15th, CNG prices were increased by rupees 2 per kilo. With the latest revision, CNG in Delhi will now cost 80.09 per kilo. In Noida and Ghaziabad, the revised rate stands at 88.70 per kilo. This hike will likely affect transportation costs as lakhs of private vehicle owners, cab operators and commercial transport users depend on CNG.
1: First time, in fact, the CNG prices have breached 80 rupees per kg. In fact, in Noida and other parts of NCR, Ghaziabad, it will be eventually 88, more than even 88 rupees per kilogram. In fact, one of the CNG pumps, many of these areas, we also ventured this since this morning after we heard the announcement. Few of the CNG pumps are not even operational. We have been told that they are waiting for a notification and probably this will be also time for them to profit making. But eventually there is no idea how, you know, what will be that, what extent the price is going to go up. But at these the CNG pumps, kitna asar padega ispe?
2: Bahut mushkil padega isme. 2-3 rupiya din bhar ka kam se kam 15-20 rupiya. एक ऑटो से 50,000 ऑटो है कितना रुपया लगा रहे हैं सरकार कितना फायदे में जा रही है वो देखिए पहले आप.
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रेज्ड एन अलार्म दैट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स कुड इंपैक्ट डेकेड्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस.
3: आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है. पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है. ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं.
0: The repeated hikes are attributed to surging international gas prices, higher crude oil costs, rupee depreciation and supply disruptions due to the ongoing West Asia conflict. As India is gearing up to tackle the crisis, the Modi government is receiving criticism from opposition, calling the hike post-election recovery campaign.
4: Desh bhar mein jaye, desh ki janta bhar mein jaye, aam aadmi mar jaye. आम आदमी को जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं होगा. किसान मर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है. अब इसका परिणाम क्या होगा? आज डीजल नहीं मिल रहा है, लाइन की लाइन लगी है लंबी. पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है. सोने के दाम बढ़ गए, फॉरेन कंट्री मत जाओ बोल रहे और 15-15 दिन के लिए पंतप्रधान भाग रहे. ये सब जो है वो केवल उपदेश जो है, ये आज की हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है.
0: As the political war of words rages on, the inflating fuel prices continues to burn a hole in the common man's pocket. With Karan Singh and Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today.
5: Now, the CBI's investigation into the NEET paper leak is widening by the day. The probe is now uncovering a highly organized network from professors linked to the paper setting process to coaching connections and an alleged trail running across multiple states. The political battle over the controversy is also intensifying, with the opposition targeting the centre over alleged lapses in the examination system. While the government says strict action is already underway, here's a report on the same.
6: Probe into the NEET paper leak is now revealing a multi-layered racket involving alleged insiders linked to the exam process, middlemen, coaching connections, and the circulation of question papers across states. Among the alleged kingpins is Pune-based botany professor Manisha Mandhare. According to the CBI, Mandhare was associated with the examination process as a subject expert and had access to confidential botany and zoology question pools, which she leaked to students. Delhi's Rouse Avenue Court has now sent Mandhare to a 14-day CBI custody.
7: Manisha ji, aapko paas hai mic. Ye
8: bata rahe hain kya is bare
6: mein. Investigators believe one of the earliest dissemination points emerged through the connection between Manisha Mandhare and another Pune-based accused, Manisha Vaghmare. As per the CBI, Mandhare had mobilized NEET exam candidates through Vaghmare and disclosed questions to these students. The court proceedings have also unearthed links between P.V. Kulkarni, a retired chemistry professor, and the chemistry paper setting process. Both Manisha Vaghmare and P.V. Kulkarni have also been sent to 10-day CBI custody. The probe is still underway, and investigators say more arrests and disclosures are possible as the digital and financial evidence trail is examined. Meanwhile, the opposition continues to target the government over the paper leak. Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi has reiterated that Education Minister Dharmendra Pradhan must be sacked. Directly targeting Prime Minister Narendra Modi, Rahul Gandhi alleged that the BJP-RSS nexus has destroyed India's education system.
9: Sachai hai. कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है जो सेंटर है उसको डैमेज किया है ये एक नेक्सस है आरएसएस बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है.
6: In response, the BJP has accused the Congress of politicizing the issue, clarifying that the government has immediately taken corrective measures.
10: Rahul Gandhi ki aadat ho gayi hai ki har cheez ke liye Pradhan Mantri ko blame karte hain. NEET ko lekar jo dikkatein aayi hain, us par Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan ne bahut vistar se jawab de diya hai. Aur aainda dikkat na aaye iski puri guarantee di gayi.
11: राहुल गांधी विपक्ष के नेता के नाते से जो कहना कहें परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो अप्रोप्रिएट एक्शन था सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया सीबीआई की जांच हो रही है धरपकड़ हो रही है.
6: As the CBI digs deeper and political heat intensifies, the NEET leakgate probe is now as much about accountability as it is about restoring trust in the system. With Anmol Bali and Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
5: Another day, another daughter, this time in Madhya Pradesh. Just 5 months ago, Twisha Sharma, resident of Uttar Pradesh's Noida, was married to Bhopal-based advocate Samarth Singh. She was promised happiness but was allegedly delivered horror. On Tuesday night, Twisha's family received the news of her death. Twisha's family has leveled some very serious allegations against her in-laws and husband. Her family claims she was subjected to mental harassment and domestic violence. They also allege that she was forced to terminate her pregnancy. The family has even made a claim that Twisha had called her mother shortly before her death and spoke about the pressure that she was under. But the police say no suicide note was recovered from the spot. It's a case of unnatural death that's been registered and an investigation is underway. Meanwhile, Twisha's family is having none of it and has started protesting outside the Chief Minister's residence, demanding justice for their daughter. Let me also tell you that the deceased's mother-in-law is a former judge and a Bhopal court has already granted anticipatory bail to retired Judge Giribala Singh, citing her age. The sudden death of their 33-year-old daughter has raised several questions. Viewers, the cost of marriage can never be death. Another daughter has died. How many more before stricter laws are put in place? Clearly, Twisha deserved a future and not a funeral. And justice must be served.
12: दो आरोपी हैं जो लड़का है समर्थ और उसकी माता है.
13: Anticipatory bail देना माननीय न्यायालय का काम है. बाकी हम अपनी जांच कर रहे हैं और हमारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष और वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है.
5: Earlier, I spoke with Twisha's father, listening to what he had to say. And joining me in their hour of grief is Twisha's father and brother. Mr. Sharma, thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम समझ सकते हैं कि आपके लिए ये कितना ज़्यादा difficult time होगा आपके family के लिए अपने बेटी के loss पर, और जो पीड़ा आप अभी गुजर रहे हैं जिस पीड़ा से, हम उसको समझ सकते हैं. बट कुछ सवाल है जो हम भी आपसे पूछना चाहेंगे और जिनका जवाब पूरी देश अभी जानना चाहेगी. पहले बात तो, जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गए, वहां आप किससे मिले और उनसे क्या बातचीत हुई और उनके पास आपने क्या मांगे रखी?
14: जी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हमारी कोई ज्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की हमसे, और एक तरीके से देखा जाए तो लाचारी प्रकट हुई. उन्होंने बोला कि इस जुडिशरी में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते और जुडिशरी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. और इसमें एक चीज बड़ी स्पष्टता सामने निकल के आ रही है कि जो अक्यूज्ड हैं उनकी फैमिली से एक बहुत बड़ी लोकायुक्त हैं जिनका नाम सत्येंद्र सिंह है, जो इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो एक लोकायुक्त के सामने कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई बड़े से बड़ा नेता भी जाने से डरता है, और इसी के कारण जो है हम हर चीज से यहाँ पर तड़प रहे हैं. तड़प तड़प के सांस हमारी मर रही है और ये कानून हमारे लिए एक अभिशाप बन चुका है. आज आप देखिए कि मैं इतने दिन से यहाँ तड़प रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी FIR हुई, उसके बाद एक एक स्टेप पर हमारे अड़ंगे डाले गए. ये साफ साफ प्रतीत होता है PM रिपोर्ट से और बॉडी को देखने के बाद, चोट के मार्क्स देखने के बाद में, कि देयर इज सम सस्पिशियस थिंग्स.
5: एक एक ऐसी कॉल सामने आई है कि त्विशा सुसाइड के पहले, इसे अभी सुसाइड जो पुलिस कह रही है, ठहरा रही है, उसके पहले उनकी बात हुई थी अपने भाई के साथ. क्या आपको पता है उस कॉल में एग्जैक्टली बात क्या हुई थी? क्या उसने बताया था कि उसको डर है अपने जान गंवाने की?
14: नहीं नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी. वो कॉल में जो बात हुई थी, उनकी जो कॉल थी, वो अपनी मदर के साथ बातचीत कर रही थी. वो रो रही थी, वो 10-5 में रो रही थी. जब बातचीत करते ही करते ही 10-5 पर उसका पीछे से आवाज आई और एक जो आवाज समर्थ की लग रही थी, उसके हस्बैंड की लग रही थी, और धड़ाम से फोन कट कर दिया गया. और उसके बाद ये बराबर फोन मिलाती रही और इसको समर्थ को भी मिलाया, लड़की को भी अपने मिलाया, इनकी सास को भी मिलाया, किसी तीनों ने फोन नहीं उठाया. और जब फोन उठाया तब ये घटना घट चुकी थी.
5: एक और जो सवाल सामने, नहीं प्लीज बोलिए.
14: जब फोन उठाया उसने तब बोला शी इज नो मोर.
5: मेरा आखिरी दो सवाल है आपसे. एक ये कि जो अबॉर्शन की रिपोर्ट्स आई है, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर थी त्विशा से खुद कि उस पे किसी तरह का भी दबाव है उस फैमिली से, समर्थ के फैमिली से?
14: भयानक दबाव उसके ऊपर, इतना भयानक दबाव था कि उसके चैट्स में साफ रिफ्लेक्ट होता है. वो उससे दोनों ये माँ बेटे कहते थे किसका बच्चा है ये.
5: तो आप क्लेम कर रहे हैं कि अबॉर्शन का दबाव था समर्थ की
14: दबाव था से? ये तो लड़की ने बोला कि पापा मैं इस बच्चे को इनके कंसेंट के साथ ही इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ. मैं नहीं चाहती ऐसी स्थिति में बच्चे के की जहां पर मुझे ऐसा ट्रस्टी नहीं किया जा रहा है. तो इसने उन्हीं के घर के ही सारे क्लिनिक से जहां इन्होंने एविडेंस दिए हैं, आप उन एविडेंस को देखोगे, फैब्रिकेटेड एविडेंस इन्होंने जमा किए कि डॉक्टर्स की राय है, जो कि जो पेपर उन्होंने सबमिट किया साफ साफ लिखा है कि इट इज नॉट फॉर द लॉ पर्पस. उसमें उन्होंने डेट के भी जो डाले हैं उसमें भी डेट ऐसा लग रहा है कि उसमें अपने हिसाब से डेट डाली गई है. उसके अंदर सेम डेट में वो अबॉर्शन का भी ट्रीटमेंट करा रही है, सेम डेट में वो अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करा रही है, और उसमें डॉक्टर उसके वो लिख रहा है. तो ये इनके फैमिली डॉक्टर्स ही हैं जो उनकी क्लिनिक्स हैं जहां पर ये लोग ये एक्टिविटी करके रहे. देयर आर लॉट ऑफ ड्यूबियस थिंग्स. दी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपको मैंने बताया इतना इन्फ्लुएंसियल हो गया कि हमारे ऊपर कोर्ट में अटैक हुआ, हमको वहां से भगाने की कोशिश की गई, यहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल है, हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं. आप समझ रहे हैं ना हम किन के खिलाफ?
5: बिल्कुल. एक तरीके से क्या आप कहेंगे कि आपका ये लड़ाई अब ये सिस्टम के अगेंस्ट ही हो चुका है?
14: बिल्कुल अंग्रेज हो चुका है जी सिस्टम, बिल्कुल काम लचरी हो चुका है. सिस्टम हमसे भरोसा जरूर दिला रहा है पर काम ही नहीं कर पा रहा ना. आपका अभियुक्त घूम रहे, फ्री होकर के घूम रहे हैं. गिरिवाला जी को बेल दे दी गई, आपके PM रिपोर्ट के लिए अटका दिया गया आपका काम. और क्या आप उम्मीद करेंगे न्याय की? हम चिल्ला रहे हैं, हम मर रहे हैं यहां पर, हमको मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है।
5: जी
14: हम चाह रहे हैं भाई देशवासियों से कैसे भी, ये एक तरीके का निर्भया कांड की तरीके से निकल के आ रहा है, यहां पर सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है हमको।
5: नवनीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ऐसे मुश्किल वक्त पर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपकी बात पहुंचा रहे हैं। हम ये केस
14: इसको किसी भी तरीके से, मेरे केस को इंडिपेंडेंट बॉडी से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, PM2 जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप लोगों का यही सहयोग है, ये अपील मेरी सुने जो इसके जिम्मेदार पोस्ट पर लोग हैं। मैं एक बहुत भारत का एक सम्मानी छोटा सा नागरिक हूं, प्लीज हेल्प मी आउट।
5: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपके मैसेज को आगे तक लेके जाएंगे।
14: थैंक यू जी।
5: Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. After days of search operations and mounting political attention, Bhagirath surrendered on Saturday and was taken into custody. The case has triggered a major storm in the state, with activists demanding strict action, while Bandi Sanjay has termed the case a political conspiracy. Here's a report. Take a look.
6: After days of cat and mouse chase, Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. Images accessed by India Today showed Bhagirath, accompanied by his lawyers, surrendering before the cops late on Saturday. After days of search operations, lookout notices and political heat, Bhagirath was taken into custody and later remanded to judicial custody by a local court. The case was registered based on a complaint involving a 17-year-old girl. Police invoked serious sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita along with the provisions of the POXO Act after recording the survivor's statement before a magistrate.
15: Police, SOT Police, Cyberabad has took custody of the Bandi Bhagirath. Police have conducted the investigation which they usually conduct as per BNSS. And as per POXO protocols, we have full confidence in the investigation. We have full confidence in the judicial procedure. We are very confident that we will be cleared of these allegations and we will come out clean.
6: Cyberabad police said that multiple teams were deployed across several locations, including Delhi and Karimnagar, before Bhagirath was traced near the police academy area and apprehended by the special operations team during a patrolling operation. The arrest has triggered sharp political and public reactions, with activists demanding strict action in the case.
16: We have been demanding since initially that this fellow should be arrested and put behind the bars, and the trial should be made on the immediate trials. We demand that a sitting judge, this case should be addressed.
6: Union Minister Bandi Sanjay has said that when it comes to law, everyone is equal. He, however, maintained that the charges against his son are nothing but a political conspiracy. With Abdul Bashir in Hyderabad, Bureau Report, India Today.
5: Was Thalaivar unhappy over Talapati's win? That's the question that's been driving the buzz for days. Now Rajnikanth has stepped in to set the record straight, denying any jealousy, calling the speculation misplaced and addressing the moments that triggered the very chatter. India Today reports. Take a look.
17: சார், விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு.
6: Was Thalaivar unhappy over Talapati's win? After weeks of speculation, Rajnikanth puts the buzz to rest, setting the record straight on his stance over Vijay's victory.
18: விஜய் மேலே எனக்கு போறாமே நான் அரசியல் வந்து இல்லை, அரசியல் நான் இல்லைன்னு சொல்லி விலகி ஆச்சு. அரசியல் நான் இல்லாத போது அவர் மேலே எனக்கு ஏன் போறாமே? ஒருவேளை கமல்ஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் என்ன பொறாமை வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. எனக்கும் விஜயருக்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ். நான் முதலையே சொல்லியிருக்கேன். என் நான் வந்து விஜயை வந்து நான் சும்மா இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டால் அது எனக்கு நல்லதில்லை கெட்ட பேர். விஜய் என்னை பற்றி கம்பேர் பண்ணிட்டால் அவருக்கு நல்லதில்லை. சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்துட்ருக்கேன். அவர் சிஎம் ஆனதில் எனக்கு என்ன போகிறாங்க.
5: He also strikes a personal note, calls Stalin's loss upsetting, says friendship is beyond politics.
18: ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அந்த குளத்தூரில் வந்து தோத்தது எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது. அதுக்காக ஒரு நண்பனுங்கிற முறையில் நட்பு முறையில் அவரை போய் நான் பார்த்தேன். அதுக்கு வந்து நான் வந்து இங்கே விஜய் வந்து சிஎம் ஆகக்கூடாது, இப்போ அவர் வரக்கூடாது, அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து ரஜினி அங்கே போயிருக்காங்க, வேறு ஏதோ ரெண்டு பெரிய பார்ட்டியை வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலை தான் அதெல்லாம் பேச முடியுமா? அப்படி பேசுகிற ஒரு தரங்கெட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை.
5: Triggered the buzz. Thalaiwa's meeting with Stalin soon after the results set the rumor mills churning. And adding fuel to the fire, that moment of silence when asked about Vijay as chief minister.
17: Sir, Vijay mudalvara porpetirukkaru.
5: Kamal Hassan also weighs in, backs Vijay but cools expectations. Says judging a government in days is like astrology. Calls for 6 months and says don't over or underestimate newcomers.
3: ரெண்டு நாள்ல சொல்லக்கூடியது ஜோசியமா தான் இருக்க முடியும். ஆறு நாள்ல சொல்லக்கூடியது அப்படிதான் இருக்க முடியும். 15 நாள்லயும் அப்படிதான் இருக்க முடியும். அதான் ஒரு 6 மாசம் டைம் கொடுக்க வேண்டாம். புதியவர்கள் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர். அதனால புதியவர்கள்ங்கிறது வந்து புதுசு கிடையாது அரசியல். சுதந்திரம் இந்தியா கிடைச்ச போது எல்லாருமே புதிய மினிஸ்டர்ஸ் தான்.
5: From whispers to clarity, Thalaiwa draws the line. No jealousy, no rivalry. But the bigger question now, will this finally put the speculation to rest or will it only add fresh fuel to the fire? With Pramod Madhav and Ankita Garg, Bureau Report, India Today. On his birthday, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu announced cash incentives for families having more than 2 children to tackle falling birth rates. Families may get Rs. 30,000 for a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. While the government says the move targets demographic decline, the opposition has criticized it as a diversionary tactic. Take a look at this report. It was Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu's birthday, but the gift was for the people of the state. Chief Minister Naidu announced major incentives for families with more than 2 children to tackle declining population growth. Under the proposal, families will get Rs. 30,000 on the birth of a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. This announcement was made after the government noticed decline in the young population and the fertility rate.

0: There is no resolution to the war in West Asia. Global crisis is increasing because of the conflict. But at the receiving end is Aam Aadmi. It is another blow to the common man. The prices of CNG have been increased once again. This time, the prices have been increased by 1 rupee per kilo, marking the second consecutive increase in 48 hours and deepening the fuel cost burden on commuters. Earlier on May 15th, CNG prices were increased by rupees 2 per kilo. With the latest revision, CNG in Delhi will now cost 80.09 per kilo. In Noida and Ghaziabad, the revised rate stands at 88.70 per kilo. This hike will likely affect transportation costs as lakhs of private vehicle owners, cab operators and commercial transport users depend on CNG.
1: First time, in fact, the CNG prices have breached 80 rupees per kg. In fact, in Noida and other parts of NCR, Ghaziabad, it will be eventually 88, more than even 88 rupees per kilogram. In fact, one of the CNG pumps, many of these areas, we also ventured this since this morning after we heard the announcement. Few of the CNG pumps are not even operational. We have been told that they are waiting for a notification and probably this will be also time for them to profit making. But eventually there is no idea how, you know, what will be that, what extent the price is going to go up. But at these CNG pumps, kitna asar padega is par?
2: Bahut mushkil padega isme. 2-3 rupiya din bhar ka kam se kam 15-20 rupiya. एक ऑटो से 50,000 ऑटो है कितना रुपया लगा रहे हैं सरकार कितना फायदे में जा रही है वो देखिए पहले आप
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रेज्ड एन अलार्म दैट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स कुड इंपैक्ट डेकेड्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस
3: आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है पहले कोरोना आया फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं
0: द रिपीटेड हाइक्स आर एट्रिब्यूटेड टू सर्जिंग इंटरनेशनल गैस प्राइसेस Higher crude oil. Conflict. From opposition, calling the hike post-election recovery campaign.
4: देश भाड़ में जाए, देश की जनता भाड़ में जाए, आम आदमी मर जाए. आम आदमी को जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं होगा किसान मर जाए इनको कोई लेना देना नहीं है अब इसका परिणाम क्या होगा आज डीजल नहीं मिल रहा है लाइन की लाइन लगी है लंबी पेट्रोल नहीं मिल रहा है डीजल नहीं मिल रहा है सोने के दाम बढ़ गए फॉरेन कंट्री मत जाओ बोल रहे और 15-15 दिन के लिए पंतप्रधान भाग रहे ये सब जो है वो केवल उपदेश जो है ये आज की हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है
0: As the political war of words rages on, the inflating fuel prices continues to burn a hole in the common man's pocket. With Karan Singh and Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today.
5: Now, the CBI's investigation into the NEET paper leak is widening by the day. The probe is now uncovering a highly organized network from professors linked to the paper setting process to coaching connections and an alleged trail running across multiple states. The political battle over the controversy is also intensifying with the opposition targeting the centre over alleged lapses in the examination system. While the government says strict action is already underway, here's a report on the same.
6: CBI's probe into the NEET paper leak is now revealing a multi-layered racket involving alleged insiders linked to the exam process, middlemen, coaching connections, and the circulation of question papers across states. Among the alleged kingpins is Pune-based botany professor Manisha Mandhare. According to the CBI, Mandhare was associated with the examination process as a subject expert and had access to confidential botany and zoology question pools, which she leaked to students. Delhi's Rao's Avenue Court has now sent Mandhare to a 14-day CBI custody.
7: Manisha ji, aapko master mind
6: bata. Investigators believe one of the earliest dissemination points emerged through the connection between Manisha Mandhare and another Pune-based accused, Manisha Waghmare. As per the CBI, Mandhare had mobilized NEET exam candidates through Waghmare and disclosed questions to these students. The court proceedings have also unearthed links between P.V. Kulkarni, a retired chemistry professor, and the chemistry paper setting process. Both Manisha Waghmare and P.V. Kulkarni have also been sent to 10-day CBI custody. The probe is still underway, and investigators say more arrests and disclosures are possible as the digital and financial evidence trail is examined. Meanwhile, the opposition continues to target the government over the paper leak. Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi has reiterated that Education Minister Dharmendra Pradhan must be sacked. Directly targeting Prime Minister Narendra Modi, Rahul Gandhi alleged that the BJP-RSS nexus has destroyed India's education system.
8: Sachai hai. कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है जो सेंटर है उसको डैमेज किया है ये एक नेक्सस है आरएसएस बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है.
6: In response, the BJP has accused the Congress of politicizing the issue, clarifying that the government has immediately taken corrective measures.
9: Rahul Gandhi ki aadat ho gayi hai ki har cheez ke liye Pradhan Mantri ko blame karte hain. NEET ko lekar jo dikkatein aayi hain, us par Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan ne bahut vistar se jawab de diya hai. Aur aainda dikkat na aaye iski puri guarantee di gayi.
10: राहुल गांधी विपक्षी नेता के नाते से जो कहना कहें परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो एप्रोप्रिएट एक्शन था सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया सीबीआई की जांच हो रही है धरपकड़ हो रही है.
6: As the CBI digs deeper and political heat intensifies, the NEET leak gate probe is now as much about accountability as it is about restoring trust in the system. With Anmol Bali and Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
5: Another day, another daughter, this time in Madhya Pradesh. Just 5 months ago, Twisha Sharma, resident of Uttar Pradesh's Noida, was married to Bhopal-based advocate Samarth Singh. She was promised happiness but was allegedly delivered horror. On Tuesday night, Twisha's family received the news of her death. Twisha's family has leveled some very serious allegations against her in-laws and husband. Her family claims she was subjected to mental harassment and domestic violence. They also allege that she was forced to terminate her pregnancy. The family has even made a claim that Twisha had called her mother shortly before her death and spoke about the pressure that she was under. But the police say no suicide note was recovered from the spot. It's a case of unnatural death that's been registered and an investigation is underway. Meanwhile, Twisha's family is having none of it and has started protesting outside the Chief Minister's residence, demanding justice for their daughter. Let me also tell you that the deceased's mother-in-law is a former judge and a Bhopal court has already granted anticipatory bail to retired Judge Giribala Singh, citing her age. The sudden death of their 33-year-old daughter has raised several questions. Viewers, the cost of marriage can never be death. Another daughter has died. How many more before stricter laws are put in place? Clearly, Twisha deserved a future and not a funeral. And justice must be served.
11: दो आरोपी हैं, जो लड़का है समर्थ और उसकी मदर.
12: Anticipatory bail देना माननीय न्यायालय का काम है. बाकी हम अपनी जांच कर रहे हैं और हमारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष और वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है.
5: Earlier, I spoke with Twisha's father, listening to what he had to say. And joining me in their hour of grief is Twisha's father and brother. Mr. Sharma, thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम समझ सकते हैं कि आपके लिए ये कितना ज़्यादा difficult time होगा आपके family के लिए अपने बेटी के loss पर, और जो पीड़ा आप अभी गुजर रहे हैं जिस पीड़ा से, हम उसको समझ सकते हैं. बट कुछ सवाल है जो हम भी आपसे पूछना चाहेंगे और जिनका जवाब पूरी देश अभी जानना चाहेगी. पहले बात तो, जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गए, वहां आप किससे मिले और उनसे क्या बातचीत हुई और उनके पास आपने क्या मांगे रखी?
13: जी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हमारी कोई ज्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की हमसे, और एक तरीके से देखा जाए तो लाचारी प्रकट हुई. उन्होंने बोला कि इस जुडिशरी में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते और जुडिशरी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. और इसमें एक चीज बड़ी स्पष्टता सामने निकल के आ रही है कि जो अक्यूज्ड हैं उनकी फैमिली से एक बहुत बड़ी लोकायुक्त हैं जिनका नाम सत्येंद्र सिंह है, जो इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो एक लोकायुक्त के सामने कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई बड़े से बड़ा नेता भी जाने से डरता है, और इसी के कारण जो है हम हर चीज से यहाँ पर तड़प रहे हैं. तड़प तड़प के सांस हमारी मर रही है और ये कानून हमारे लिए एक अभिशाप बन चुका है. आज आप देखिए कि मैं इतने दिन से यहाँ तड़प रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी FIR हुई, उसके बाद एक एक स्टेप पर हमारे अड़ंगे डाले गए. ये साफ साफ प्रतीत होता है PM रिपोर्ट से और बॉडी को देखने के बाद, चोट के मार्क्स देखने के बाद में, कि देयर इज सम सस्पिशियस थिंग्स.
5: एक ऐसी कॉल सामने आई है कि त्विशा सुसाइड के पहले, इसे अभी सुसाइड जो पुलिस कह रही है, ठहरा रही है, उसके पहले उनकी बात हुई थी अपने भाई के साथ. क्या आपको पता है उस कॉल में एग्जैक्टली बात क्या हुई थी? क्या उसने बताया था कि उसको डर है अपने जान गंवाने की?
13: नहीं नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी. वो कॉल में जो बात हुई थी, उनकी जो कॉल थी, वो अपनी मदर के साथ बातचीत कर रही थी. वो रो रही थी, वो 10-5 में रो रही थी. जब बातचीत करते ही करते 10-5 पर उसका पीछे से आवाज आई और एक जो आवाज समर्थ की लग रही थी, उसके हस्बैंड की लग रही थी, और धड़ाम से फोन कट कर दिया गया. और उसके बाद ये बराबर फोन मिलाती रही और इसको समर्थ को भी मिलाया, लड़की को भी अपने मिलाया, इनकी सास को भी मिलाया, किसी तीनों ने फोन नहीं उठाया. और जब फोन उठाया तब ये घटना घट चुकी थी.
5: एक और जो सवाल सामने, नहीं प्लीज बोलिए.
13: जब फोन उठाया उसने तब बोला शी इज नो मोर.
5: मेरा आखिरी दो सवाल है आपसे. एक ये कि जो अबॉर्शन की रिपोर्ट्स आई है, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर थी त्विशा से खुद कि उस पे किसी तरह का भी दबाव है उस फैमिली से, समर्थ के फैमिली से?
13: भयानक दबाव उसके ऊपर, इतना भयानक दबाव था कि उसके चैट्स में साफ रिफ्लेक्ट होता है. वो उससे दोनों ये माँ बेटे कहते थे किसका बच्चा है ये.
5: तो आप क्लेम कर रहे हैं कि अबॉर्शन का दबाव था समर्थ के
13: दबाव था
5: से?
13: ये तो लड़की ने बोला कि पापा मैं इस बच्चे को इनके कंसेंट के साथ ही इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ. मैं नहीं चाहती ऐसी स्थिति में बच्चे के की जहां पर मुझे ऐसा ट्रस्ट ही नहीं किया जा रहा है. तो इसने उन्हीं के घर के ही सारे क्लिनिक से जहां इन्होंने एविडेंस दिए हैं, आप उन एविडेंस को देखोगे, फैब्रिकेटेड एविडेंस इन्होंने जमा किए कि डॉक्टर्स की राय है, जो कि जो पेपर उन्होंने सबमिट किया उसमें साफ साफ लिखा है कि इट इज नॉट फॉर द लॉ पर्पस. उसमें उन्होंने डेट के भी जो डाले हैं उसमें भी डेट ऐसा लग रहा है कि उसमें अपने हिसाब से डेट डाली गई है. उसके अंदर सेम डेट में वो अबॉर्शन का भी ट्रीटमेंट करा रही है, सेम डेट में वो अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करा रही है, और उसमें डॉक्टर उसके वो लिख रहा है. तो ये इनके फैमिली डॉक्टर्स ही हैं जो उनकी क्लिनिक्स हैं जहां पर ये लोग ये एक्टिविटी करके रहे. देयर आर लॉट ऑफ डूबियस थिंग. आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपको मैंने बताया इतना इन्फ्लुएंसियल हो गया कि हमारे ऊपर कोर्ट में अटैक हुआ, हमको वहां से भगाने की कोशिश की गई, यहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल है, हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं. आप समझ रहे हैं ना हम किन के खिलाफ?
5: बिल्कुल. एक तरीके से क्या आप कहेंगे कि आपका ये लड़ाई अब ये सिस्टम के अगेंस्ट ही हो चुका है?
13: बिल्कुल अंगेज हो चुका है जी, सिस्टम बिल्कुल काम लचरी हो चुका है. सिस्टम हमसे भरोसा जरूर दिला रहा है पर काम ही नहीं कर पा रहा ना. आपका अभियुक्त घूम रहे हैं, फ्री होकर के घूम रहे हैं. गिरीवाला जी को बेल दे दी गई, आपके PM रिपोर्ट के लिए अटका दिया गया आपका काम. और क्या आप उम्मीद करेंगे न्याय की? हम चिल्ला रहे हैं, आप मर रहे हैं यहाँ पर. हमको मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है।
5: जी।
13: हम चाह रहे हैं भाई देशवासियों से कैसे भी ये एक तरीके का निर्भया कांड की तरीके से निकल के आ रहा है, यहाँ पर सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है हमको।
5: नवनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ऐसे मुश्किल वक्त पर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपकी बात पहुंचा रहे हैं। हम ये केस
13: इसको किसी भी तरीके से मेरे केस को इंडिपेंडेंट बॉडी से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, PM2 जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप लोगों का यही सहयोग है, ये अपील मेरी सुने जो इसके जिम्मेदार पोस्ट पर लोग हैं। मैं एक बहुत भारत का एक सम्मानी छोटा सा नागरिक हूँ, प्लीज हेल्प मी आउट।
5: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपके मैसेज को आगे तक लेके जाएंगे।
13: थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू,
5: थैंक यू। Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. After days of search operations and mounting political attention, Bhagirath surrendered on Saturday and was taken into custody. The case has triggered a major storm in the state, with activists demanding strict action, while Bandi Sanjay has termed the case a political conspiracy. Here's a report. Take a look.
6: After days of cat and mouse chase, Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. Images accessed by India Today showed Bhagirath, accompanied by his lawyers, surrendering before the cops late on Saturday. After days of search operations, lookout notices and political heat, Bhagirath was taken into custody and later remanded to judicial custody by a local court. The case was registered based on a complaint involving a 17-year-old girl. Police invoked serious sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita along with the provisions of the POXO Act after recording the survivor's statement before a magistrate.
14: Police, SOT Police, Cyberabad has took custody of the Bandi Bhagirath. Police have conducted the investigation which they usually conduct as per BNSS. And as per POXO protocols, we have full confidence in the investigation. We have full confidence in the judicial procedure. We are very confident that we will be cleared of these allegations and we will come out clean.
6: Cyberabad police said that multiple teams were deployed across several locations, including Delhi and Karimnagar, before Bhagirath was traced near the police academy area and apprehended by the special operations team during a patrolling operation. The arrest has triggered sharp political and public reactions, with activists demanding strict action in the case.
15: We have been demanding since initially that this fellow should be arrested and put behind the bars, and the trial should be made on the immediate trials. We demand that a sitting judge, this case should be addressed.
6: Union Minister Bandi Sanjay has said that when it comes to law, everyone is equal. He, however, maintained that the charges against his son are nothing but a political conspiracy. With Abdul Bashir in Hyderabad, Bureau Report, India Today.
5: Was Thalaivar unhappy over Talapathy's win? That's the question that's been driving the buzz for days. Now Rajnikant has stepped in to set the record straight, denying any jealousy, calling the speculation misplaced and addressing the moments that triggered the very chatter. India Today reports. Take a look.
16: சார் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு.
5: Was Thalaivar unhappy over Talapathy's win? After weeks of speculation, Rajnikant puts the buzz to rest, setting the record straight on his stance over Vijay's victory.
17: விஜய் மேலே எனக்கு போறாமே நான் அரசியல் வந்து இல்லை, அரசியல் நான் இல்லைன்னு சொல்லி விலகி ஆச்சு. அரசியல் இல்லாத போது அவர் மேலே எனக்கு ஏன் போறாம, ஒருவேளை கமல்ஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் என்ன போறாம வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. எனக்கும் விஜயருக்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ். நான் முதலையே சொல்லியிருக்கேன். என் நான் வந்து விஜயை வந்து நான் சும்மா இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டால் அது எனக்கு நல்லதில்லை கெட்ட பேர். விஜய் என்ன பற்றி கம்பேர் பண்ணிட்டா அவருக்கு நல்லதில்லை. சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்துட்ருக்கார். அவர் சிஎம் ஆனதில் எனக்கு என்ன போகிறாங்க.
5: He also strikes a personal note, calls Stalin's loss upsetting, says friendship is beyond politics.
17: ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அந்த குளத்தூரில் வந்து தோத்தது எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது. அதுக்காக ஒரு நண்பனுங்கிற முறையில் நட்பு முறையில் அவரை போய் நான் பார்த்தேன். அதுக்கு வந்து நான் வந்து இங்கே விஜய் வந்து சிஎம் ஆகக்கூடாது, இப்போ அவர் வரக்கூடாது, அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து ரஜினி அங்கே போயிருக்காங்க, வேறு ஏதோ ரெண்டு பெரிய பார்ட்டியை வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலையில் நான் அதெல்லாம் பேச முடியுமா? அப்படி பேசுகிற ஒரு தரங்கிட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை.
5: Triggered the buzz. Talaiwala's meeting with Stalin soon after the results set the rumor mills churning. And adding fuel to the fire, that moment of silence when asked about Vijay as chief minister.
16: Sir, Vijay mudalvara porpe irukkaru.
5: Kamal Hassan also weighs in, backs Vijay but cools expectations. Says judging a government in days is like astrology. Calls for 6 months and says don't over or underestimate newcomers.
3: ரெண்டு நாள்ல சொல்லக்கூடியது ஜோசியமா தான் இருக்க முடியும். ஆறு நாள்ல சொல்லக்கூடியது அப்படிதான் இருக்க முடியும். 15 நாள்லயும் அப்படிதான் இருக்க முடியும். அதான் ஒரு 6 மாசம் டைம் கொடுக்க வேண்டாம். புதியவர்கள் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர். அதனால புதியவர்கள்ங்கிறது வந்து புதுசு கிடையாது. அரசியல் சுதந்திரம் இந்தியா கிடைச்ச போது எல்லாருமே புதிய மினிஸ்டர்ஸ் தான்.
5: From whispers to clarity, Talaiwala draws the line. No jealousy, no rivalry. But the bigger question now, will this finally put the speculation to rest or will it only add fresh fuel to the fire? With Pramod Madhav and Ankita Garg, Bureau Report, India Today. Tamil superstar Vijay's dramatic rise to the chief minister's chair in Tamil Nadu is sparking political comparisons across the south, especially with the Andhra Pradesh deputy chief minister Pawan Kalyan. But the Janasena chief has now made it clear that Andhra's political landscape is very different from Tamil Nadu's and that political success cannot be replicated overnight. Here's a report on the same. Take a look.
6: Vijay's stunning ascent to Tamil Nadu's top job has sent ripples far beyond the state's borders. Amid this political fervor, comparisons have emerged with Andhra Pradesh's superstar and deputy chief minister Pawan Kalyan. While speaking to his party workers at Jan Sena's headquarters in Mangalagiri, Pawan Kalyan acknowledged the mounting pressure. The power star directly addressed his fans and political supporters who are wondering whether Pawan will immediately achieve the same feat as Vijay. Pawan pointedly reminded supporters that every state has its own distinct political dynamics and that what works in Tamil Nadu doesn't automatically translate to Andhra Pradesh. Solo politics, he made clear, is far easier said than done. Pawan Kalyan used a Telugu idiom to illustrate his point and sought to dismiss any comparisons to the new Tamil Nadu chief minister.
18: మన ముఖ్యంగా మొన్న తమిళనాడు ఎలక్షన్స్ వచ్చి ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా నన్ను చంపేస్తారు అందరం. దాని పరిస్థితులు వేరు, మన పరిస్థితులు వేరు. అంటే ఎందుకు చెప్తా అంటే దాని పరిస్థితులు వేరు, మన పరిస్థితులు వేరు.
6: Pawan's remarkable political ascent saw him transform from a mass hero to a mass politician. Although he faced early headwinds after founding the Jan Sena party in 2014, he rebounded to achieve a stunning victory in the 2024 elections, assuming office as the deputy chief minister of Andhra Pradesh. Therefore, Pawan's legion of fans are unlikely to stop comparing him with Vijay anytime soon. Bureau Report, India Today.
5: On his birthday, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu announced cash incentives for families having more than two children to tackle falling birth rates. Families may get Rs. 30,000 for a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. While the government says the move targets demographic decline, the opposition has criticized it as a diversionary tactic. Take a look at this report. It was Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu's birthday, but the gift was for the people of the state. Chief Minister Naidu announced major incentives for families with more than two children to tackle declining population growth. Under the proposal, families will get Rs. 30,000 on the birth of a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. This announcement was made after the government noticed decline in the young population and the fertility rate is also hitting all-time low of 1.5. It was feared that 23% of the population may be over the age of 60 by 2047. Chief Minister Naidu, like before, said that children should be seen as wealth, not a burden, as he flagged concerns over falling population numbers earlier multiple times. Chief Minister Naidu assured that the government's population management policy will focus on boosting the birth rate. He also added that Anganwadi centres will be strengthened to provide nutritious food for mothers and children through the Women and Child Welfare Department. But while the Chief Minister laid out the details of the plan, the opposition was quick to react. Congress MP Karthi Chidambaram took a swipe at the announcement with just one word: seriously? Meanwhile, YSR Congress called the move an attempt to divert attention from what he termed the failures of the TDP-led government in Andhra Pradesh. From cash incentives to political criticism, Naidu's population push has now triggered a large debate. Can money motivate bigger families, or is this simply a political headline ahead of a demographic challenge? Bureau Report, India Today. On that note, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and news through the very day. Thank you for watching. This is Riya Kundu.
19: Watching India Today.
20: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads. Thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
21: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
19: You are watching India Today.
5: Fuel prices are biting harder. Just 2 days after a 2 rupee hike, CNG prices went up again by rupees 1. This is, remember, the second hike in just 48 hours amid global energy turmoil and has stoked a massive political storm. Take a look at this news report.

0: There is no resolution to the war in West Asia. Global crisis is increasing because of the conflict. But at the receiving end is Aam Aadmi. It is another blow to the common man. The prices of CNG have been increased once again. This time, the prices have been increased by 1 rupee per kilo, marking the second consecutive increase in 48 hours and deepening the fuel cost burden on commuters. Earlier on May 15th, CNG prices were increased by rupees 2 per kilo. With the latest revision, CNG in Delhi will now cost 80.09 per kilo. In Noida and Ghaziabad, the revised rate stands at 88.70 per kilo. This hike will likely affect transportation costs as lakhs of private vehicle owners, cab operators and commercial transport users depend on CNG.
1: First time, in fact, the CNG prices have breached 80 rupees per kg. In fact, in Noida and other parts of NCR, Ghaziabad, it will be eventually 88, more than even 88 rupees per kilogram. In fact, one of the CNG pumps, many of these areas, we also ventured this since this morning after we heard the announcement. Few of the CNG pumps are not even operational. We have been told that they are waiting for a notification and probably this will be also time for them to profit making. But eventually there is no idea how, you know, what will be that, what extent the price is going to go up. But at these the CNG pumps, kitna asar padega is par?
2: Bahut mushkil padega isme. 2-3 rupiya din bhar ka kam se kam 15-20 rupiya. एक ऑटो से 50,000 ऑटो है कितना रुपया लगा रहे हैं सरकार कितना फायदे में जा रही है वो देखिए पहले आप.
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रेज्ड एन अलार्म दैट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स कुड इंपैक्ट डेकेड्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस.
3: आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है. पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है. ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं.
0: द रिपीटेड हाइक्स आर एट्रिब्यूटेड टू सर्जिंग इंटरनेशनल गैस प्राइसेस, higher crude oil costs, rupee depreciation and supply disruptions due to the ongoing West Asia conflict. As India is gearing up to tackle the crisis, the Modi government is receiving criticism from opposition, calling the hike post-election recovery campaign.
4: Desh bhar mein jaye, desh ki janta bhar mein jaye, aam aadmi mar jaye. आम आदमी को जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं होगा. किसान मर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है. अब इसका परिणाम क्या होगा? आज डीजल नहीं मिल रहा है, लाइन की लाइन लगी है लंबी. पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है. सोने के दाम बढ़ गए, फॉरेन कंट्री मत जाओ बोल रहे और 15-15 दिन के लिए पंतप्रधान भाग रहे. ये सब जो है वो केवल उपदेश जो है, ये आज की हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है.
0: As the political war of words rages on, the inflating fuel prices continues to burn a hole in the common man's pocket. With Karan Singh and Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today.
5: Now, the CBI's investigation into the NEET paper leak is widening by the day. The probe is now uncovering a highly organized network from professors linked to the paper setting process to coaching connections and an alleged trail running across multiple states. The political battle over the controversy is also intensifying, with the opposition targeting the centre over alleged lapses in the examination system. While the government says strict action is already underway, here's a report on the same.
6: Probe into the NEET paper leak is now revealing a multi-layered racket involving alleged insiders linked to the exam process, middlemen, coaching connections, and the circulation of question papers across states. Among the alleged kingpins is Pune-based botany professor Manisha Mandhare. According to the CBI, Mandhare was associated with the examination process as a subject expert and had access to confidential botany and zoology question pools, which she leaked to students. Delhi's Rouse Avenue court has now sent Mandhare to a 14-day CBI custody.
7: Manisha ji, aapko paas hai mic. Ye
8: kya kahenge aap is bare
6: mein? Investigators believe one of the earliest dissemination points emerged through the connection between Manisha Mandhare and another Pune-based accused, Manisha Vaghmare. As per the CBI, Mandhare had mobilized NEET exam candidates through Vaghmare and disclosed questions to these students. The court proceedings have also unearthed links between P.V. Kulkarni, a retired chemistry professor, and the chemistry paper setting process. Both Manisha Vaghmare and P.V. Kulkarni have also been sent to 10-day CBI custody. The probe is still underway, and investigators say more arrests and disclosures are possible as the digital and financial evidence trail is examined. Meanwhile, the opposition continues to target the government over the paper leak. Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi has reiterated that Education Minister Dharmendra Pradhan must be sacked. Directly targeting Prime Minister Narendra Modi, Rahul Gandhi alleged that the BJP-RSS nexus has destroyed India's education system.
9: Sachai hai. कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है जो सेंटर है उसको डैमेज किया है ये एक नेक्सस है आरएसएस बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है.
6: In response, the BJP has accused the Congress of politicizing the issue, clarifying that the government has immediately taken corrective measures.
10: Rahul Gandhi ki aadat ho gayi hai ki har cheez ke liye Pradhan Mantri ko blame karte hain. NEET ko lekar jo dikkatein aayi hain, us par Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan ne bahut vistar se jawab de diya hai. Aur aainda dikkat na aaye iski puri guarantee di gayi.
11: राहुल गांधी विपक्षी नेता के नाते से जो कहना कहें परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो अप्रोप्रिएट एक्शन था सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया सीबीआई की जांच हो रही है धरपकड़ हो रही है.
6: As the CBI digs deeper and political heat intensifies, the NEET leakgate probe is now as much about accountability as it is about restoring trust in the system. With Anmol Bali and Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
5: Another day, another daughter, this time in Madhya Pradesh. Just 5 months ago, Twisha Sharma, resident of Uttar Pradesh's Noida, was married to Bhopal-based advocate Samarth Singh. She was promised happiness but was allegedly delivered horror. On Tuesday night, Twisha's family received the news of her death. Twisha's family has leveled some very serious allegations against her in-laws and husband. Her family claims she was subjected to mental harassment and domestic violence. They also allege that she was forced to terminate her pregnancy. The family has even made a claim that Twisha had called her mother shortly before her death and spoke about the pressure that she was under. But the police say no suicide note was recovered from the spot. It's a case of unnatural death that's been registered and an investigation is underway. Meanwhile, Twisha's family is having none of it and has started protesting outside the Chief Minister's residence, demanding justice for their daughter. Let me also tell you that the deceased's mother-in-law is a former judge, and a Bhopal court has already granted anticipatory bail to retired Judge Giribala Singh, citing her age. The sudden death of their 33-year-old daughter has raised several questions. Viewers, the cost of marriage can never be death. Another daughter has died. How many more before stricter laws are put in place? Clearly, Twisha deserved a future and not a funeral. And justice must be served.
12: दो आरोपी हैं, जो लड़का है समर्थ और उसकी मदर.
13: Anticipatory bail देना माननीय न्यायालय का काम है. बाकी हम अपनी जांच कर रहे हैं और हमारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष और वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है.
5: Earlier, I spoke with Twisha's father, listening to what he had to say. And joining me in their hour of grief is Twisha's father and brother. Mr. Sharma, thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम समझ सकते हैं कि आपके लिए ये कितना ज़्यादा difficult time होगा आपके family के लिए अपने बेटी के loss पर, और जो पीड़ा आप अभी गुजर रहे हैं जिस पीड़ा से, हम उसको समझ सकते हैं. बट कुछ सवाल है जो हम भी आपसे पूछना चाहेंगे और जिनका जवाब पूरी देश अभी जानना चाहेगी. पहले बात तो, जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गए, वहां आप किससे मिले और उनसे क्या बातचीत हुई और उनके पास आपने क्या मांगे रखी?
14: जी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हमारी कोई ज्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की हमसे, और एक तरीके से देखा जाए तो लाचारी प्रकट हुई. उन्होंने बोला कि इस जुडिशरी में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते और जुडिशरी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. और इसमें एक चीज बड़ी स्पष्टता सामने निकल के आ रही है कि जो अक्यूज्ड हैं उनकी फैमिली से एक बहुत बड़ी लोकायुक्त हैं जिनका नाम सत्येंद्र सिंह है, जो इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो एक लोकायुक्त के सामने कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई बड़े से बड़ा नेता भी जाने से डरता है, और इसी के कारण जो है हम हर चीज से यहाँ पर तड़प रहे हैं. तड़प तड़प के सांस हमारी मर रही है और ये कानून हमारे लिए एक अभिशाप बन चुका है. आज आप देखिए कि मैं इतने दिन से यहाँ तड़प रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी FIR हुई, उसके बाद एक एक स्टेप पर हमारे अड़ंगे डाले गए. ये साफ साफ प्रतीत होता है PM रिपोर्ट से और बॉडी को देखने के बाद, चोट के मार्क्स देखने के बाद में, कि देयर इज सम सस्पिशियस थिंग्स.
5: एक ऐसी कॉल सामने आई है कि त्विशा सुसाइड के पहले, इसे अभी सुसाइड जो पुलिस कह रही है, ठहरा रही है, उसके पहले उनकी बात हुई थी अपने भाई के साथ. क्या आपको पता है उस कॉल में एग्जैक्टली बात क्या हुई थी? क्या उसने बताया था कि उसको डर है अपने जान गंवाने की?
14: नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी. वो कॉल में जो बात हुई थी, उनकी जो कॉल थी, वो अपनी मदर के साथ बातचीत कर रही थी. वो रो रही थी, वो 10-5 में रो रही थी. जब बातचीत करते ही करते ही 10-5 पर उसका पीछे से आवाज आई और एक जो आवाज समर्थ की लग रही थी, उसके हस्बैंड की लग रही थी, और धड़ाम से फोन कट कर दिया गया. और उसके बाद ये बराबर फोन मिलाती रही और इसको समर्थ को भी मिलाया, लड़की को भी अपने मिलाया, इनकी सास को भी मिलाया, किसी तीनों ने फोन नहीं उठाया. और जब फोन उठाया तब ये घटना घट चुकी थी.
5: एक और जो सवाल सामने, नहीं प्लीज बोलिए.
14: जब फोन उठाया उसने तब बोला शी इज नो मोर.
5: मेरा आखिरी दो सवाल है आपसे. एक ये कि जो अबॉर्शन की रिपोर्ट्स आई है, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर थी त्विशा से खुद कि उस पे किसी तरह का भाई दबाव है उस फैमिली से, समर्थ के फैमिली से?
14: भयानक दबाव उसके ऊपर, इतना भयानक दबाव था कि उसके चैट्स में साफ रिफ्लेक्ट होता है. वो उससे दोनों ये माँ बेटे कहते थे किसका बच्चा है ये.
5: तो आप क्लेम कर रहे हैं कि अबॉर्शन का दबाव था समर्थ की फैमिली से?
14: दबाव था. ये तो लड़की ने बोला कि पापा मैं इस बच्चे को इनके कंसेंट के साथ ही इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ. मैं नहीं चाहती ऐसी स्थिति में बच्चे के की, जहां पर मुझे ऐसा ट्रस्ट ही नहीं किया जा रहा है. तो इसने उन्हीं के घर के ही सारे क्लिनिक से जहां इन्होंने एविडेंस दिए हैं, आप उन एविडेंस को देखोगे, फैब्रिकेटेड एविडेंस इन्होंने जमा किए कि डॉक्टर्स की राय है, जो कि जो पेपर उन्होंने सबमिट किया उसमें साफ साफ लिखा है कि इट इज नॉट फॉर द लॉ पर्पस. उसमें उन्होंने डेट के भी जो डाले हैं उसमें भी डेट ऐसा लग रहा है कि उसमें अपने हिसाब से डेट डाली गई है. उसके अंदर सेम डेट में वो अबॉर्शन का भी ट्रीटमेंट करा रही है, सेम डेट में वो अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करा रही है, और उसमें डॉक्टर उसके वो लिख रहा है. तो ये इनके फैमिली डॉक्टर्स ही हैं जो उनकी क्लिनिक्स हैं जहां पर ये लोग ये एक्टिविटी करके रहे. देयर आर लॉट ऑफ ड्यूबियस थिंग्स. दी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपको मैंने बताया इतना इन्फ्लुएंसियल हो गया कि हमारे ऊपर कोर्ट में अटैक हुआ, हमको वहां से भगाने की कोशिश की गई, यहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल है, हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं. आप समझ रहे हैं ना हम किन के खिलाफ?
5: बिल्कुल. एक तरीके से क्या आप कहेंगे कि आपका ये लड़ाई अब ये सिस्टम के अगेंस्ट ही हो चुका है?
14: बिल्कुल अंग्रेज हो चुका है जी सिस्टम, बिल्कुल काम लचरी हो चुका है. सिस्टम हमसे भरोसा जरूर दिला रहा है पर काम ही नहीं कर पा रहा ना. आपका अभियुक्त घूम रहे, फ्री होकर के घूम रहे हैं. गिरिवाला जी को बेल दे दी गई, आपके PM रिपोर्ट के लिए अटका दिया गया आपका काम. और क्या आप उम्मीद करेंगे न्याय की? हम चिल्ला रहे हैं, हम मर रहे हैं यहां पर, हमको मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है।
5: जी
14: हम चाह रहे हैं भाई देशवासियों से कैसे भी, ये एक तरीके का निर्भया कांड की तरीके से निकल के आ रहा है, यहां पर सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है हमको।
5: नवनीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ऐसे मुश्किल वक्त पर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपकी बात पहुंचा रहे हैं। हम ये केस
14: इसको किसी भी तरीके से, मेरे केस को इंडिपेंडेंट बॉडी से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, PM2 जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप लोगों का यही सहयोग है, ये अपील मेरी सुने जो इसके जिम्मेदार पोस्ट पर लोग हैं। मैं एक बहुत भारत का एक सम्मानी छोटा सा नागरिक हूं, प्लीज हेल्प मी आउट।
5: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपके मैसेज को आगे तक लेके जाएंगे।
14: थैंक यू जी।
5: Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. After days of search operations and mounting political attention, Bhagirath surrendered on Saturday and was taken into custody. The case has triggered a major storm in the state, with activists demanding strict action, while Bandi Sanjay has termed the case a political conspiracy. Here's a report. Take a look.
6: After days of cat and mouse chase, Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. Images accessed by India Today showed Bhagirath, accompanied by his lawyers, surrendering before the cops late on Saturday. After days of search operations, lookout notices and political heat, Bhagirath was taken into custody and later remanded to judicial custody by a local court. The case was registered based on a complaint involving a 17-year-old girl. Police invoked serious sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita along with the provisions of the POXO Act after recording the survivor's statement before a magistrate.
15: Police, SOT Police, Cyberabad has took custody of the Bandi Bhagirath. Police have conducted the investigation which they usually conduct as per BNSS. And as per POXO protocols, we have full confidence in the investigation. We have full confidence in the judicial procedure. We are very confident that we will be cleared of these allegations and we will come out clean.
6: Cyberabad police said that multiple teams were deployed across several locations, including Delhi and Karimnagar, before Bhagirath was traced near the police academy area and apprehended by the special operations team during a patrolling operation. The arrest has triggered sharp political and public reactions, with activists demanding strict action in the case.
16: We have been demanding since initially that this fellow should be arrested and put behind the bars, and the trial should be made on the immediate trials. We demand that a sitting judge, this case should be addressed.
6: Union Minister Bandi Sanjay has said that when it comes to law, everyone is equal. He, however, maintained that the charges against his son are nothing but a political conspiracy. With Abdul Bashir in Hyderabad, Bureau Report, India Today.
5: Was Thalaivar unhappy over Talapati's win? That's the question that's been driving the buzz for days. Now Rajnikanth has stepped in to set the record straight, denying any jealousy, calling the speculation misplaced and addressing the moments that triggered the very chatter. India Today reports. Take a look.
17: சார், விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு.
6: Was Thalaivar unhappy over Talapati's win? After weeks of speculation, Rajnikanth puts the buzz to rest, setting the record straight on his stance over Vijay's victory.
18: விஜய் மேலே எனக்கு பொறாமை அப்படின்னு, நான் அரசியல் வந்து இல்லை, அரசியல் நான் இல்லைன்னு சொல்லி விலகி ஆச்சு. அரசியல் நான் இல்லாத போது அவர் மேலே எனக்கு ஏன் பொறாமை? ஒருவேளை கமல்ஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் எனக்கு பொறாமை வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. எனக்கும் விஜயருக்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ். நான் முதலையே சொல்லியிருக்கேன். என் நான் வந்து விஜயை வந்து நான் சும்மா இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டால் அது எனக்கு நல்லதில்லை கெட்ட பேர். விஜய் என்னை பற்றி கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டால் அவருக்கு நல்லதில்லை. சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்துட்ருக்கேன். அவர் சிஎம் ஆனதில் எனக்கு என்ன போகிறாங்க.
5: He also strikes a personal note, calls Stalin's loss upsetting, says friendship is beyond politics.
18: Stalin avargal vandha adu kolathurile vandha thottathu enakku konja sangalama irundhathu adukaga oru nanbanangra murayila nadpu murayila avaru poyana paatha அதுக்கு வந்து நான் வந்து இங்கே விஜய் வந்து அது சிஎம் ஆகக்கூடாது, போர் வரக்கூடாது, அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து ரஜினி அங்கே போயிருக்காங்க, வேறு ஏதோ ரெண்டு பெரிய பார்ட்டியை வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலை தான் அதெல்லாம் பேச முடியுமா? அப்படி பேசுகிற ஒரு தரங்கெட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை.
5: So what's triggered the buzz? Thalaiwar's meeting with Stalin soon after the results set the rumor mills churning. And adding fuel to the fire, that moment of silence when asked about Vijay as chief minister.
17: Sir, Vijay mudalvara porpetirukkaru.
5: Kamal Hassan also weighs in, backs Vijay but cools expectations. Says judging a government in days is like astrology. Calls for 6 months and says don't over or underestimate newcomers.
3: ரெண்டு நாள்ல சொல்லக்கூடியது ஜோசியமா தான் இருக்க முடியும், ஆறு நாள்ல சொல்லக்கூடியது அப்படிதான் இருக்க முடியும், 15 நாள்லயும் அப்படிதான் இருக்க முடியும். அதான் ஒரு 6 மாசம் டைம் கொடுக்க வேண்டாம். புதியவர்கள் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர், அதனால புதியவர்கள்ங்கிறது வந்து புதுசு கிடையாது. அரசியல் சுதந்திரம் இந்தியா கிடைச்ச போது எல்லாருமே புதிய மினிஸ்டர்ஸ் தான்.
5: From whispers to clarity, Thalaiwar draws the line. No jealousy, no rivalry. But the bigger question now, will this finally put the speculation to rest or will it only add fresh fuel to the fire? With Pramod Madhav and Ankita Garg, Bureau Report, India Today. On his birthday, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu announced cash incentives for families having more than 2 children to tackle falling birth rates. Families may get Rs. 30,000 for a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. While the government says the move targets demographic decline, the opposition has criticized it as a diversionary tactic. Take a look at this report. It was Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu's birthday, but the gift was for the people of the state. Chief Minister Naidu announced major incentives for families with more than 2 children to tackle declining population growth. Under the proposal, families will get Rs. 30,000 on the birth of a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. This announcement was made after the government noticed decline in the young population and the fertility rate is also hitting all-time low of 1.5. It was feared that 23% of the population may be over the age of 60 by 2047. Chief Minister Naidu, like before, said that children should be seen as wealth, not a burden, as he flagged concerns over falling population numbers earlier multiple times. Chief Minister Naidu assured that the government's population management policy will focus on boosting the birth rate. He also added that Anganwadi centres will be strengthened to provide nutritious food for mothers and children through the Women and Child Welfare Department. But while the Chief Minister laid out the details of the plan, the opposition was quick to react. Congress MP Karthi Chidambaram took a swipe at the announcement with just one word: seriously? Meanwhile, YSR Congress called the move an attempt to divert attention from what he termed the failures of the TDP-led government in Andhra Pradesh. From cash incentives to political criticism, Naidu's population push has now triggered a large debate. Can money motivate bigger families? Or is this simply a political headline ahead of a demographic challenge? Bureau Report, India Today. On that note, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and news through the very day. Thank you for watching. This is Riya Kundu.

0: Yeah, we also ventured this since this morning after we heard the announcement. Few of the CNG pumps are not even operational. We have been told that they are waiting for a notification, and probably this will be also time for them to profit making. But eventually, there is no idea how, you know, what will be the, at what extent the price is going to go up. But at these the CNG pumps, kitna asar padega is par?
1: Bahut mushkil padega isme. 2-3 rupiya din bhar ka kam se kam 15-20 rupiye. Ek auto se 50,000 auto hai, kitna rupiya laga rahe hain sarkar, kitna फायदे में जा रही है वो देखिए पहले आप।
2: Prime Minister Modi has raised an alarm that global conflicts could impact decades of economic progress.
3: आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए, और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है, और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं।
2: The repeated hikes are attributed to surging international gas prices, higher crude oil costs, rupee depreciation and supply disruptions due to the ongoing West Asia conflict. As India is gearing up to tackle the crisis, the Modi government is receiving criticism from opposition, calling the hike post-election recovery campaign.
4: देश भाड़ में जाए, देश की जनता भाड़ में जाए, आम आदमी मर जाए, आम आदमी को जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं होगा। किसान मर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। अब इसका परिणाम क्या होगा? आज डीजल नहीं मिल रहा है, लाइन की लाइन लगी है लंबी, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, सोने के दाम बढ़ गए, फॉरेन कंट्री मत जाओ बोल रहे, और 15-15 दिन के लिए पंतप्रधान भाग रहे। ये सब जो है वो केवल उपदेश जो है, ये आज की हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है।
2: As the political war of words rages on, the inflating fuel prices continues to burn a hole in the common man's pocket. With Karan Singh and Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today.
5: Now, the CBI's investigation into the NEET paper leak is widening by the day. The probe is now uncovering a highly organized network from professors linked to the paper setting process to coaching connections and an alleged trail running across multiple states. The political battle over the controversy is also intensifying, with the opposition targeting the centre over alleged lapses in the examination system. While the government says strict action is already underway, here's a report on the same.
6: CBI's probe into the NEET paper leak is now revealing a multi-layered racket involving alleged insiders linked to the exam process, middlemen, coaching connections and the circulation of question papers across states. Among the alleged kingpins is Pune-based botany professor Manisha Mandhari. According to the CBI, Mandhari was associated with the examination process as a subject expert and had access to confidential botany and zoology question pools which she leaked to students. Delhi's Rouse Avenue Court has now sent Mandhari to a 14-day CBI custody.
7: Manisha ji, aapko paas se mic bata rahe hain, aap kahenge is bare mein.
6: Investigators believe one of the earliest dissemination points emerged through the connection between Manisha Mandhari and another Pune-based accused, Manisha Vaghmare. As per the CBI, Mandhari had mobilized NEET exam candidates through Vaghmare and disclosed questions to these students. The court proceedings have also unearthed links between P.V. Kulkarni, a retired chemistry professor, and the chemistry paper setting process. Both Manisha Vaghmare and P.V. Kulkarni have also been sent to 10-day CBI custody. The probe is still underway, and investigators say more arrests and disclosures are possible as the digital and financial evidence trail is examined. Meanwhile, the opposition continues to target the government over the paper leak. Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi has reiterated that Education Minister Dharmendra Pradhan must be sacked. directly targeting Prime Minister Narendra Modi. Rahul Gandhi alleged that the BJP-RSS nexus has destroyed India's education system.
8: सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है. ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है.
6: In response, the BJP has accused the Congress of politicizing the issue, clarifying that the government has immediately taken corrective measures.
9: Rahul Gandhi ki aadat ho gayi hai ki har cheez ke liye Pradhan Mantri ko blame karte hain. NIT ko lekar jo dikkatein aayi hain, us par Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan ne bahut vistar se jawab de diya hai. Aur aainda dikkat na aaye iski puri guarantee di gayi.
10: राहुल गांधी विपक्ष के नेता के नाते से जो कहना कहें, परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो अप्रोप्रिएट एक्शन था, सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया. सीबीआई की जांच हो रही है, धरपकड़ हो रही है.
6: As the CBI digs deeper and political heat intensifies, the NEET leakgate probe is now as much about accountability as it is about restoring trust in the system. With Anmol Bali and Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
5: Another day, another daughter, this time in Madhya Pradesh. Just 5 months ago, Twisha Sharma, resident of Uttar Pradesh's Noida, was married to Bhopal-based advocate Samarth Singh. She was promised happiness but was allegedly delivered horror. On Tuesday night, Twisha's family received the news of her death. Twisha's family has leveled some very serious allegations against her in-laws and husband. Her family claims she was subjected to mental harassment and domestic violence. They also allege that she was forced to terminate her pregnancy. The family has even made a claim that Twisha had called her mother shortly before her death and spoke about the pressure that she was under. But the police say no suicide note was recovered from the spot. It's a case of unnatural death that's been registered and an investigation is underway. Meanwhile, Twisha's family is having none of it and has started protesting outside the Chief Minister's residence, demanding justice for their daughter. Let me also tell you that the deceased's mother-in-law is a former judge, and a Bhopal court has already granted anticipatory bail to retired Judge Giribala Singh, citing her age. The sudden death of their 33-year-old daughter has raised several questions. Viewers, the cost of marriage can never be death. Another daughter has died. How many more before stricter laws are put in place? Clearly, Twisha deserved a future and not a funeral. And justice must be served.
11: दो आरोपी हैं, जो लड़का है समर और उसकी मदर.
12: एंटीसिपेटरी बेल देना माननीय न्यायालय का काम है. बाकी हम अपनी जांच कर रहे हैं और हमारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष और वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है.
5: Earlier, I spoke with Twisha's father, listening to what he had to say. And joining me in their hour of grief is Twisha's father and brother. Mr. Sharma, thank you so much for joining us. We can understand that it will be a very difficult time for your family, for your daughter's loss. And जो पीड़ा आप अभी गुजर रहे हैं जिस पीड़ा से, हम उसको समझ सकते हैं. बट कुछ सवाल है जो हम भी आपसे पूछना चाहेंगे और जिनका जवाब पूरी देश अभी जानना चाहेगी. पहले बात तो, जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गए, वहां आप किससे मिले और उनसे क्या बातचीत हुई और उनके पास आपने क्या मांगे रखी?
13: जी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हमारी कोई ज्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की हमसे, और एक तरीके से देखा जाए तो लाचारी प्रकट हुई. उन्होंने बोला कि इस जुडिशरी में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते और जुडिशरी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. और इसमें एक चीज बड़ी स्पष्टता सामने निकल के आ रही है कि जो अक्यूज्ड हैं उनकी फैमिली से एक बहुत बड़ी लोकायुक्त हैं जिनका नाम सत्येंद्र सिंह है, जो इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो एक लोकायुक्त के सामने कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई बड़े से बड़ा नेता भी जाने से डरता है. और इसी के कारण जो है हम हर चीज से यहाँ पर तड़फ रहे हैं, तड़प तड़प के सांस हमारी मर रही है, और ये कानून हमारे लिए एक अभिशाप बन चुका है। आज आप देखिए कि मैं इतने दिन से यहाँ तड़फ रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी FIR हुई, उसके बाद एक एक स्टेप पर हमारे अड़ंगे डाले गए। ये साफ साफ प्रतीत होता है PM रिपोर्ट से और बॉडी को देखने के बाद, चोट के मार्क्स देखने के बाद में, कि देर इज सम सस्पिशियस थिंग्स।
5: एक एक ऐसी कॉल सामने आई है कि त्विशा सुसाइड के पहले, इसे अभी सुसाइड जो पुलिस कह रही है, ठहरा रही है, उसके
13: जी
5: पहले उनकी बात हुई थी अपने भाई के साथ। क्या आपको पता है उस कॉल में एग्जैक्टली बात क्या हुई थी? क्या उसने
13: मेरे के
5: बताया
13: साथ
5: था
13: नहीं,
5: कि
13: उनकी
5: उसको
13: कॉल
5: डर है
13: लास्ट
5: अपने
13: कॉल
5: जान गंवाने की?
13: नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। वो कॉल में जो बात हुई थी, उनकी जो कॉल थी, वो अपनी मदर के साथ बातचीत कर रही थी, वो रो रही थी, वो 10-5 में रो रही थी। ये बातचीत करते ही करते ही 10-5 पर उसका पीछे से आवाज आई, और एक जो आवाज समर्थ की लग रही थी, उसके हस्बैंड की लग रही थी, तो धड़ाम से फोन कट कर दिया गया। और उसके बाद ये बराबर फोन मिलाती रही, और इसको समर्थ को भी मिलाया, लड़की को भी अपने मिलाया, इनकी सास को भी मिलाया, किसी तीनों ने फोन नहीं उठाया। और जब फोन उठाया तब ये घटना घट चुकी थी।
5: एक
13: जब
5: और जो
13: फोन उठाया तो
5: सवाल
13: बोला कि
5: सामने,
13: जी नो मोर,
5: जी
13: जी
5: नहीं नहीं
13: नो,
5: प्लीज बोलिए।
13: जब फोन उठाया उसने तब बोला शी इज नो मोर।
5: मेरा आखिरी दो सवाल है आपसे। एक ये कि जो अबॉर्शन की रिपोर्ट्स आई है, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर थी त्विशा से खुद कि उस पे किसी तरह का भी दबाव है उस फैमिली से, समर्थ के फैमिली से
13: भयानक
5: अबॉर्शन
13: दबाव
5: के लिए?
13: उसके ऊपर, इतना भयानक दबाव था कि उसके चैट्स में साफ रिफ्लेक्ट होता है, वो उससे दोनों ये माँ बेटे कहते थे किसका बच्चा है ये।
5: तो आप क्लेम कर रहे हैं कि अबॉर्शन का दबाव था समर्थ
13: था
5: की
13: दबाव
5: फैमिली
13: था,
5: से?
13: ये तो लड़की ने बोला कि पापा मैं इस बच्चे को इनके कंसेंट के साथ ही इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती ऐसी स्थिति में बच्चे के की जहां पर मुझे ऐसा ट्रस्ट ही नहीं किया जा रहा है। तो इसने उन्हीं के घर के ही सारे क्लिनिक से जहां इन्होंने एविडेंस दिए हैं, आप उन एविडेंस को देखोगे, फैब्रिकेटेड एविडेंस इन्होंने जमा किए कि डॉक्टर्स की राय है, जो कि जो पेपर उन्होंने सबमिट किया उसमें साफ साफ लिखा है कि इट इज नॉट फॉर द लॉ पर्पस। उसमें उन्होंने डेट के भी जो डाले हैं उसमें भी डेट ऐसा लग रहा है कि उसमें अपने हिसाब से डेट डाली गई है। उसके अंदर सेम डेट में वो अबॉर्शन का भी ट्रीटमेंट करा रही है, सेम डेट में वो अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करा रही है, और उसमें डॉक्टर उसके वो लिख रहा है। तो ये इनके फैमिली डॉक्टर्स ही हैं जो जो उनकी क्लिनिक्स हैं जहां पर ये लोग ये एक्टिविटी करके रहे। देयर आर लॉट ऑफ डूबियस थिंग। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपको मैंने बताया इतना इन्फ्लुएंसियल हो गया कि हमारे ऊपर कोर्ट में अटैक हुआ, हमको वहां से भगाने की कोशिश की गई, यहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल है, हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं ना हम किनके
5: जी
13: खिलाफ लड़ रहे
5: बिल्कुल।
13: हैं?
5: एक
13: जुडिशियल
5: तरीके से क्या
13: उनका
5: आप कहेंगे कि आपका ये लड़ाई अब ये सिस्टम के अगेंस्ट ही हो चुका है?
13: बिल्कुल अंगेज हो चुका है जी, सिस्टम बिल्कुल काम लचरी हो चुका है। सिस्टम हमसे भरोसा जरूर दिला रहा है पर काम ही नहीं कर पा रहा ना। आपका अभियुक्त घूम रहे हैं, फ्री होकर के घूम रहे हैं, गिरीवाला जी को बेल दे दी गई, आपके PM रिपोर्ट के लिए अटका दिया गया आपका काम, और क्या आप उम्मीद करेंगे न्याय की? हम चिल्ला रहे हैं, हम मर रहे हैं यहां पर, हमको मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है। हम
5: जी
13: चाह रहे हैं भाई देशवासियों से कैसे भी, ये एक तरीके का निर्भया कांड की तरीके से निकल के आ रहा है, यहां पर सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है हमको।
5: नवनीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ऐसे मुश्किल वक्त पर बहुत बहुत
13: जी
5: धन्यवाद। और हम बिल्कुल आपकी बात पहुंचा रहे हैं।
13: न्याय
5: हम ये
13: मिल रही है,
5: केस
13: आप इसको किसी भी तरीके से, मेरे केस को इंडिपेंडेंट बॉडी से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, PM2 जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप लोगों का यही सहयोग है, ये अपील मेरी सुने जो इसके जिम्मेदार पोस्ट पर लोग हैं। मैं बहुत भारत का एक सम्मानी छोटा सा नागरिक हूं, प्लीज हेल्प मी आउट।
5: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बिल्कुल आपके मैसेज को आगे तक लेके जाएंगे। थैंक
13: थैंक यू जी, थैंक यू।
5: यू। यूनियन मिनिस्टर बंदी संजय कुमार सन बंदी साई भागीरथ हैज बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद अ पॉक्सो केस रजिस्टर्ड बाय साइबराबाद पुलिस। After days of search operations and mounting political attention, Bhagirath surrendered on Saturday and was taken into custody. The case has triggered a major storm in the state, with activists demanding strict action, while Bandi Sanjay has termed the case a political conspiracy. Here's a report. Take a look.
6: After days of cat and mouse chase, Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad police. Images accessed by India Today showed Bhagirath, accompanied by his lawyers, surrendering before the cops late on Saturday. After days of search operations, lookout notices and political heat, Bhagirath was taken into custody and later remanded to judicial custody by a local court. The case was registered based on a complaint involving a 17-year-old girl. Police invoked serious sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita along with the provisions of the POXO Act after recording the survivor's statement before a magistrate.
14: Police, SOT police, Cyberabad has took custody of the Bandi Bhagirath. Police have conducted the investigation which they usually conduct as per BNSS. And as per POXO protocols, we have full confidence in the investigation. We have full confidence in the judicial procedure. We are very confident that we will be cleared of these allegations and we will come out clean.
6: Cyberabad police said that multiple teams were deployed across several locations, including Delhi and Karimnagar, before Bhagirath was traced near the police academy area and apprehended by the special operations team during a patrolling operation. The arrest has triggered sharp political and public reactions, with activists demanding strict action in the case.
15: We have been demanding since initially that this fellow should be arrested and put behind the bars, and the trial should be made on the immediate trials. We demand that a sitting judge, this case should be addressed.
6: Union Minister Bandi Sanjay has said that when it comes to law, everyone is equal. He, however, maintained that the charges against his son are nothing but a political conspiracy. With Abdul Bashir in Hyderabad, Bureau Report, India Today.
5: Was Thalaivar unhappy over Talapathy's win? That's the question that's been driving the buzz for days. Now Rajnikanth has stepped in to set the record straight, denying any jealousy, calling the speculation misplaced and addressing the moments that triggered the very chatter. India Today reports, take a look.
16: சார் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு.
6: Was Thalaivar unhappy over Talapathy's win? After weeks of speculation, Rajnikanth puts the buzz to rest, setting the record straight on his stance over Vijay's victory.
17: விஜய் மேல எனக்கு போறாமே நான் அரசியல் வந்து இல்லை, அரசியல் நான் இல்லைன்னு சொல்லி விலகி ஆச்சு. அரசியல் நான் இல்லாத போது அவர் மேல எனக்கு ஏன் போறாமே? ஒருவேளை கமல்ஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் என்ன பொறாமை வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. எனக்கும் விஜயருக்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ். நான் முதலையே சொல்லியிருக்கேன், விஜயை வந்து நான் சும்மா இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டால் அது எனக்கு நல்லதில்லை. கெட்ட பேர் விஜய் என்னை பற்றி கம்பேர் பண்ணிட்டால் அவருக்கு நல்லதில்லை. சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்துட்ருக்கேன், அவர் சிஎம் ஆனதில் எனக்கு என்ன பொறாமை?
6: He also strikes a personal note, calls Stalin's loss upsetting, says friendship is beyond politics.
17: ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அந்த குளத்தூரில் வந்து தோத்தது எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது. அதுக்காக ஒரு நண்பனுங்கிற முறையில், நட்பு முறையில் அவரை போய் நான் பார்த்தேன். அதுக்கு வந்து நான் வந்து இங்கே விஜய் வந்து அரசு சிஎம் ஆகக்கூடாது, இப்போ அவருக்கு வரக்கூடாது, அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து ரஜினி அங்கே போயிருக்காங்க, வேறு ஏதோ ரெண்டு பெரிய பார்ட்டியை வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலையில் தான் அதெல்லாம் பேச முடியுமா? அப்படி பேசுகிற ஒரு தரங்கெட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை.
6: Triggered the buzz. Thalaivar's meeting with Stalin soon after the results set the rumor mills churning. And adding fuel to the fire, that moment of silence when asked about Vijay as Chief Minister.
16: Sir, Vijay mudalvara porupe irukkaru.
6: Kamal Hassan also weighs in, backs Vijay, but cools expectations. Says judging a government in days is like astrology. Calls for 6 months and says don't over or underestimate newcomers.
18: ரெண்டு நாள்ல சொல்லக்கூடியது ஜோசியமா தான் இருக்க முடியும், ஆறு நாள்ல சொல்லக்கூடியது அப்படித்தான் இருக்க முடியும், பதினஞ்சு நாள்லயும் அப்படித்தான் இருக்க முடியும். அதான் ஒரு ஆறு மாசம் டைம் கொடுக்க வேண்டாம். நம்ம புதியவர்கள் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர், அதனால புதியவர்கள்ங்கிறது வந்து புதுசு கிடையாது. அரசியல் சுதந்திரம் இந்தியா கிடைச்ச போது எல்லாருமே புதிய மினிஸ்டர்ஸ் தான்.
5: From whispers to clarity, the liver draws the line. No jealousy, no rivalry. But the bigger question now, will this finally put the speculation to rest, or will it only add fresh fuel to the fire? With Pramod Madhav and Ankita Garg, Bureau Report, India Today. Tamil superstar Vijay's dramatic rise to the Chief Minister's chair in Tamil Nadu is sparking political comparisons across the south, especially with the Andhra Pradesh Deputy Chief Minister Pawan Kalyan. But the Janasena chief has now made it clear that Andhra's political landscape is very different from Tamil Nadu's, and that political success cannot be replicated overnight. Here's a report on the same. Take a look.
6: Vijay's stunning ascent to Tamil Nadu's top job has sent ripples far beyond the state's borders. Amid this political fervour, comparisons have emerged with Andhra Pradesh's superstar and Deputy Chief Minister Pawan Kalyan. While speaking to his party workers at Jan Sena's headquarters in Mangalagiri, Pawan Kalyan acknowledged the mounting pressure. The power star directly addressed his fans and political supporters who are wondering whether Pawan will immediately achieve the same feat as Vijay. Pawan pointedly reminded supporters that every state has its own distinct political dynamics and that what works in Tamil Nadu doesn't automatically translate to Andhra Pradesh. Solo politics, he made clear, is far easier said than done. Pawan Kalyan used a Telugu idiom to illustrate his point and sought to dismiss any comparisons to the new Tamil Nadu Chief Minister.
19: మన ముఖ్యంగా మొన్న తమిళనాడు ఎలక్షన్స్ వచ్చి ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా నన్ను చంపేస్తారు అందరం. దాని పరిస్థితులు వేరు, మన పరిస్థితులు వేరు. అంటే ఎందుకు చెప్తా అంటే దాని పరిస్థితులు వేరు, మన పరిస్థితులు వేరు.
6: Pawan's remarkable political ascent saw him transform from a mass hero to a mass politician. Although he faced early headwinds after founding the Jan Sena party in 2014, he rebounded to achieve a stunning victory in the 2024 elections, assuming office as the Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh. Therefore, Pawan's legion of fans are unlikely to stop comparing him with Vijay anytime soon. Bureau Report, India Today.
5: On his birthday, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu announced cash incentives for families having more than two children to tackle falling birth rates. Families may get Rs. 30,000 for a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. While the government says the move targets demographic decline, the opposition has criticized it as a diversionary tactic. Take a look at this report. It was Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu's birthday, but the gift was for the people of the state. Chief Minister Naidu announced major incentives for families with more than two children to tackle declining population growth. Under the proposal, families will get Rs. 30,000 on the birth of a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. This announcement was made after the government noticed decline in the young population and the fertility rate is also hitting all-time low of 1.5. It was feared that 23% of the population may be over the age of 60 by 2047. Chief Minister Naidu, like before, said that children should be seen as wealth, not a burden, as he flagged concerns over falling population numbers earlier multiple times. Chief Minister Naidu assured that the government's population management policy will focus on boosting the birth rate. He also added that Anganwadi centres will be strengthened to provide nutritious food for mothers and children through the Women and Child Welfare Department. But while the Chief Minister laid out the details of the plan, the opposition was quick to react. Congress MP Karthi Chidambaram took a swipe at the announcement with just one word: seriously? Meanwhile, YSR Congress called the move an attempt to divert attention from what he termed the failures of the TDP-led government in Andhra Pradesh. From cash incentives to political criticism, Naidu's population push has now triggered a large debate. Can money motivate bigger families, or is this simply a political headline ahead of a demographic challenge? Bureau Report, India Today. On that note, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and news through the very day. Thank you for watching. This is Riya Kundu.
20: Watching India Today.
21: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as it can. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now. TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
22: I have no idea how this election is going to play out,
21: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
23: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
24: Universities mein ke log bithaye gaye hain, vice chancellors bithaye gaye hain, professors bithaye gaye hain. इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है. पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं. अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं. अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं. यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है. प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए.
20: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: There is no resolution to the war in West Asia. Global crisis is increasing because of the conflict. But at the receiving end is Aam Aadmi. It is another blow to the common man. The prices of CNG have been increased once again. This time, the prices have been increased by 1 rupee per kilo, marking the second consecutive increase in 48 hours and deepening the fuel cost burden on commuters. Earlier on May 15th, CNG prices were increased by rupees 2 per kilo. With the latest revision, CNG in Delhi will now cost 80.09 per kilo. In Noida and Ghaziabad, the revised rate stands at 88.70 per kilo. This hike will likely affect transportation costs as lakhs of private vehicle owners, cab operators and commercial transport users depend on CNG.
1: First time, in fact, the CNG prices have breached 80 rupees per kg. In fact, in Noida and other parts of NCR, Ghaziabad, it will be eventually 88, more than even 88 rupees per kilogram. In fact, one of the CNG pumps, many of these areas, we also ventured this since this morning after we heard the announcement. Few of the CNG pumps are not even operational. We have been told that they are waiting for a notification, and probably this will be also time for them to profit making. But eventually there is no idea how, you know, what will be that, what extent the price is going to go up. But at these the CNG pumps, kitna asar padega isko?
2: Bahut mushkil padega isme. 2-3 rupiya din bhar ka kam se kam 15-20 rupiya. एक ऑटो से 50,000 ऑटो है, कितना रुपया लगा रहे हैं सरकार, कितना फायदे में जा रही है वो देखिए पहले आप.
0: Prime Minister Modi has raised an alarm that global conflicts could impact decades of economic progress.
3: आज की दुनिया किस तरह नई-नई चुनौतियों से जूझ रही है. पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए, और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है. ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है, और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं.
0: The repeated hikes are attributed to surging international gas prices, higher crude oil costs, rupee depreciation and supply disruptions due to the ongoing West Asia conflict. As India is gearing up to tackle the crisis, the Modi government is receiving criticism from opposition, calling the hike post-election recovery campaign.
4: Desh bhar mein jaye, desh ki janta bhar mein jaye, aam aadmi mar jaye. आम आदमी को जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं होगा. किसान मर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है. अब इसका परिणाम क्या होगा? आज डीजल नहीं मिल रहा है, लाइन की लाइन लगी है लंबी. पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है. सोने के दाम बढ़ गए, फॉरेन कंट्री मत जाओ बोल रहे, और 15-15 दिन के लिए पंतप्रधान भाग रहे. ये सब जो है वो केवल उपदेश जो है, ये आज की हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है.
0: As the political war of words rages on, the inflating fuel prices continues to burn a hole in the common man's pocket. With Karan Singh and Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today.
5: Now, the CBI's investigation into the NEET paper leak is widening by the day. The probe is now uncovering a highly organized network from professors linked to the paper setting process to coaching connections and an alleged trail running across multiple states. The political battle over the controversy is also intensifying, with the opposition targeting the centre over alleged lapses in the examination system. While the government says strict action is already underway, here's a report on the same.
6: Probe into the NEET paper leak is now revealing a multi-layered racket involving alleged insiders linked to the exam process, middlemen, coaching connections and the circulation of question papers across states. Among the alleged kingpins is Pune-based botany professor Manisha Mandhare. According to the CBI, Mandhare was associated with the examination process as a subject expert and had access to confidential botany and zoology question pools, which she leaked to students. Delhi's Rouse Avenue court has now sent Mandhare to a 14-day CBI custody.
7: Manisha ji, aapko master mind bata rahe hain.
6: Investigators believe one of the earliest dissemination points emerged through the connection between Manisha Mandhare and another Pune-based accused, Manisha Vaghmare. As per the CBI, Mandhare had mobilized NEET exam candidates through Vaghmare and disclosed questions to these students. The court proceedings have also unearthed links between P.V. Kulkarni, a retired chemistry professor, and the chemistry paper setting process. Both Manisha Vaghmare and P.V. Kulkarni have also been sent to 10-day CBI custody. The probe is still underway, and investigators say more arrests and disclosures are possible as the digital and financial evidence trail is examined. Meanwhile, the opposition continues to target the government over the paper leak. Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi has reiterated that Education Minister Dharmendra Pradhan must be sacked. Directly targeting Prime Minister Narendra Modi, Rahul Gandhi alleged that the BJP-RSS nexus has destroyed India's education system.
8: सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है. ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है.
6: In response, the BJP has accused the Congress of politicizing the issue, clarifying that the government has immediately taken corrective measures.
9: Rahul Gandhi ki aadat ho gayi hai ki har cheez ke liye Pradhanmantri ko blame karte hain. NEET ko lekar jo dikkatein aayi hain us par Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan ne bahut vistar se jawab de diya hai aur aainda dikkat na aaye iski puri guarantee di gayi.
10: राहुल गांधी विपक्षी नेता के नाते से जो कहना कहें, परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो अप्रोप्रिएट एक्शन था, सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया. सीबीआई की जांच हो रही है, धरपकड़ हो रही है.
6: As the CBI digs deeper and political heat intensifies, the NEET leakgate probe is now as much about accountability as it is about restoring trust in the system. With Anmol Bali and Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
5: Another day, another daughter, this time in Madhya Pradesh. Just 5 months ago, Twisha Sharma, resident of Uttar Pradesh's Noida, was married to Bhopal-based advocate Samarth Singh. She was promised happiness but was allegedly delivered horror. On Tuesday night, Twisha's family received the news of her death. Twisha's family has leveled some very serious allegations against her in-laws and husband. Her family claims she was subjected to mental harassment and domestic violence. They also allege that she was forced to terminate her pregnancy. The family has even made a claim that Twisha had called her mother shortly before her death and spoke about the pressure that she was under. But the police say no suicide note was recovered from the spot. It's a case of unnatural death that's been registered and an investigation is underway. Meanwhile, Twisha's family is having none of it and has started protesting outside the Chief Minister's residence, demanding justice for their daughter. Let me also tell you that the deceased's mother-in-law is a former judge, and a Bhopal court has already granted anticipatory bail to retired Judge Giribala Singh, citing her age. The sudden death of their 33-year-old daughter has raised several questions. Viewers, the cost of marriage can never be death. Another daughter has died. How many more before stricter laws are put in place? Clearly, Twisha deserved a future and not a funeral. And justice must be served.
11: दो आरोपी हैं, जो लड़का है समर्थ और उसकी मदर.
12: Anticipatory bail देना माननीय न्यायालय का काम है. बाकी हम अपनी जांच कर रहे हैं और हमारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष और वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है.
5: Earlier, I spoke with Twisha's father, listening to what he had to say. And joining me in their hour of grief is Twisha's father and brother. Mr. Sharma, thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम समझ सकते हैं कि आपके लिए ये कितना ज़्यादा difficult time होगा आपके family के लिए अपने बेटी के loss पर, और जो पीड़ा आप अभी गुजर रहे हैं जिस पीड़ा से, हम उसको समझ सकते हैं. बट कुछ सवाल है जो हम भी आपसे पूछना चाहेंगे और जिनका जवाब पूरी देश अभी जानना चाहेगी. पहले बात तो, जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गए, वहां आप किससे मिले और उनसे क्या बातचीत हुई और उनके पास आपने क्या मांगे रखी?
13: जी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हमारी कोई ज्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की हमसे, और एक तरीके से देखा जाए तो लाचारी प्रकट हुई. उन्होंने बोला कि इस जुडिशरी में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते और जुडिशरी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. और इसमें एक चीज बड़ी स्पष्टता सामने निकल के आ रही है कि जो अक्यूज्ड हैं उनकी फैमिली से एक बहुत बड़ी लोकायुक्त हैं जिनका नाम सत्येंद्र सिंह है, जो इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो एक लोकायुक्त के सामने कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई बड़े से बड़ा नेता भी जाने से डरता है, और इसी के कारण जो है हम हर चीज से यहाँ पर तड़प रहे हैं. तड़प तड़प के सांस हमारी मर रही है और ये कानून हमारे लिए एक अभिशाप बन चुका है. आज आप देखिए कि मैं इतने दिन से यहाँ तड़फ रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी FIR हुई, उसके बाद एक एक स्टेप पर हमारे अड़ंगे डाले गए. ये साफ साफ प्रतीत होता है PM रिपोर्ट से और बॉडी को देखने के बाद, चोट के मार्क्स देखने के बाद में, कि देयर इज सम सस्पिशियस थिंग्स.
5: एक ऐसी कॉल सामने आई है कि त्विशा सुसाइड के पहले, इसे अभी सुसाइड जो पुलिस कह रही है, ठहरा रही है, उसके पहले उनकी बात हुई थी अपने भाई के साथ. क्या आपको पता है उस कॉल में एग्जैक्टली बात क्या हुई थी? क्या उसने बताया था कि उसको डर है अपने जान गंवाने की?
13: नहीं नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी. वो कॉल में जो बात हुई थी, उनकी जो कॉल थी, वो अपनी मदर के साथ बातचीत कर रही थी. वो रो रही थी, वो 10:05 में रो रही थी. जब बातचीत करते ही करते ही 10:05 पर उसका पीछे से आवाज आई और एक जो आवाज समर्थ की लग रही थी, उसके हस्बैंड की लग रही थी, और धड़ाम से फोन कट कर दिया गया. और उसके बाद ये बराबर फोन मिलाती रही और इसको समर्थ को भी मिलाया, लड़की को भी अपने मिलाया, इनकी सास को भी मिलाया, किसी तीनों ने फोन नहीं उठाया. और जब फोन उठाया तब ये घटना घट चुकी थी.
5: एक और जो सवाल सामने, जी नहीं नहीं प्लीज बोलिए.
13: जब फोन उठाया उसने तब बोला शी इज नो मोर.
5: मेरा आखिरी दो सवाल है आपसे. एक ये कि जो अबॉर्शन की रिपोर्ट्स आई है, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर थी त्विशा से खुद कि उस पे किसी तरह का भी दबाव है उस फैमिली से, समर्थ के फैमिली से?
13: भयानक दबाव उसके ऊपर, इतना भयानक दबाव था कि उसके चैट्स में साफ रिफ्लेक्ट होता है. वो उससे दोनों ये माँ बेटे कहते थे किसका बच्चा है ये.
5: तो आप क्लेम कर रहे हैं कि अबॉर्शन का दबाव था समर्थ की
13: दबाव से? था. ये तो लड़की ने बोला कि पापा मैं इस बच्चे को इनके कंसेंट के साथ ही इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ. मैं नहीं चाहती ऐसी स्थिति में बच्चे के की जहां पर मुझे ऐसा ट्रस्ट ही नहीं किया जा रहा है. तो इसने उन्हीं के घर के ही सारे क्लिनिक से जहां इन्होंने एविडेंस दिए हैं, आप उन एविडेंस को देखोगे, फैब्रिकेटेड एविडेंस इन्होंने जमा किए कि डॉक्टर्स की राय है, जो कि जो पेपर उन्होंने सबमिट किया उसमें साफ साफ लिखा है कि इट इज नॉट फॉर द लॉ पर्पस. उसमें उन्होंने डेट के भी जो डाले हैं उसमें भी डेट ऐसा लग रहा है कि उसमें अपने हिसाब से डेट डाली गई है. उसके अंदर सेम डेट में वो अबॉर्शन का भी ट्रीटमेंट करा रही है, सेम डेट में वो अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करा रही है, और उसमें डॉक्टर उसके वो लिख रहा है. तो ये इनके फैमिली डॉक्टर्स ही हैं जो उनकी क्लिनिक्स हैं जहां पर ये लोग ये एक्टिविटी करके रहे. देयर आर लॉट ऑफ डूबियस थिंग्स. दी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपको मैंने बताया इतना इन्फ्लुएंसियल हो गया कि हमारे ऊपर कोर्ट में अटैक हुआ, हमको वहां से भगाने की कोशिश की गई, यहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल है, हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं. आप समझ रहे हैं ना हम किन के खिलाफ?
5: बिल्कुल. एक तरीके से क्या आप कहेंगे कि आपका ये लड़ाई अब ये सिस्टम के अगेंस्ट ही हो चुका है?
13: बिल्कुल अंग्रेज हो चुका है जी सिस्टम. बिल्कुल काम लचरी हो चुका है. सिस्टम हमसे भरोसा जरूर दिला रहा है पर काम ही नहीं कर पा रहा ना. आपका अभियुक्त घूम रहे, फ्री होकर के घूम रहे हैं. गिरिवाला जी को बेल दे दी गई, आपके PM रिपोर्ट के लिए अटका दिया गया आपका काम. और क्या आप उम्मीद करेंगे न्याय की? हम चिल्ला रहे हैं, हम मर रहे हैं यहाँ पर, हमको हमको मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है। हम चाह रहे हैं भाई देशवासियों से कैसे भी, ये एक तरीके का निर्भया कांड की तरीके से निकल के आ रहा है, यहाँ पर सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है हमको।
5: नवनीति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ऐसे मुश्किल वक्त पर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपकी बात पहुंचा रहे हैं। हम ये केस
13: इसको किसी भी तरीके से, मेरे केस को इंडिपेंडेंट बॉडी से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, PM2 जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप लोगों का यही सहयोग है, ये अपील मेरी सुने जो इसके जिम्मेदार पोस्ट पर लोग हैं। मैं एक बहुत भारत का एक सम्मानी छोटा सा नागरिक हूँ, प्लीज हेल्प मी आउट।
5: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपके मैसेज को आगे तक लेके जाएंगे।
13: थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू,
5: थैंक यू। Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. After days of search operations and mounting political attention, Bhagirath surrendered on Saturday and was taken into custody. The case has triggered a major storm in the state, with activists demanding strict action, while Bandi Sanjay has termed the case a political conspiracy. Here's a report. Take a look.
14: After days of cat and mouse chase, Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. Images accessed by India Today showed Bhagirath, accompanied by his lawyers, surrendering before the cops late on Saturday. After days of search operations, lookout notices and political heat, Bhagirath was taken into custody and later remanded to judicial custody by a local court. The case was registered based on a complaint involving a 17-year-old girl. Police invoked serious sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita along with the provisions of the POXO Act after recording the survivor's statement before a magistrate.
15: Police, SOT Police, Cyberabad has took custody of the Bandi Bhagirath. Police have conducted the investigation which they usually conduct as per BNSS. And as per POXO protocols, we have full confidence in the investigation, we have full confidence in the judicial procedure. We are very confident that we will be cleared of these allegations and we will come out clean.
14: Cyberabad police said that multiple teams were deployed across several locations, including Delhi and Karimnagar, before Bhagirath was traced near the police academy area and apprehended by the special operations team during a patrolling operation. The arrest has triggered sharp political and public reactions, with activists demanding strict action in the case.
16: We have been demanding since initially that this fellow should be arrested and put behind the bars, and the trial should be made on the immediate trials. We demand that a sitting judge, this case should be addressed.
14: Union Minister Bandi Sanjay has said that when it comes to law, everyone is equal. He, however, maintained that the charges against his son are nothing but a political conspiracy. With Abdul Bashir in Hyderabad, Bureau Report, India Today.
5: Was Thalaivar unhappy over Talapathy's win? That's the question that's been driving the buzz for days. Now Rajnikanth has stepped in to set the record straight, denying any jealousy, calling the speculation misplaced and addressing the moments that triggered the very chatter. India Today reports. Take a look.
17: சார் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு.
14: Was Thalaivar unhappy over Talapathy's win? After weeks of speculation, Rajnikanth puts the buzz to rest, setting the record straight on his stance over Vijay's victory.
18: விஜய் மேலே எனக்கு போறாமே, நான் அரசியல் வந்து இல்லை, அரசியல் நான் இல்லைன்னு சொல்லி விலகி ஆச்சு. அரசியல் நான் இல்லாத போது அவர் மேலே எனக்கு ஏன் போறாமே? ஒருவேளை கமல்ஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் என்ன பொறாமை வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. எனக்கும் விஜயருக்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ். நான் முதலையே சொல்லியிருக்கேன். என் நான் வந்து விஜயை வந்து நான் சும்மா இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டா அது எனக்கு நல்லதில்லை கெட்ட பேர். விஜய் என்னை பற்றி கம்பேர் பண்ணிட்டா அவருக்கு நல்லதில்லை. சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்துட்ருக்காரு. அவர் சிஎம் ஆனதில் எனக்கு என்ன போகிறாங்க.
5: He also strikes a personal note, calls Stalin's loss upsetting, says friendship is beyond politics.
18: Stalin avargal vandha adu kolathurile vandu thottathu enakku konja sangalama irundhathu. Adukaga oru nanbanangra murayila nadpu murayila avaru poi na paathara. அதுக்கு வந்து நான் வந்து இங்கே விஜய் வந்து அரசு சிஎம் ஆகக்கூடாது, போர் வரக்கூடாது, அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து ரஜினி அங்கே போயிருக்காங்க, வேறு ஏதோ ரெண்டு பெரிய பார்ட்டியை வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலையில் நான் அதெல்லாம் பேச முடியுமா? அப்படி பேசுகிற ஒரு தரங்கெட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை.
5: So what triggered the buzz? Thalaiwal's meeting with Stalin soon after the results set the rumor mills churning. And adding fuel to the fire, that moment of silence when asked about Vijay as chief minister.
17: Sir, Vijay mudalvara porpetirkaru.
5: Kamal Hassan also weighs in, backs Vijay but cools expectations. Says judging a government in days is like astrology. Calls for 6 months and says don't over or underestimate newcomers.
3: ரெண்டு நாள்ல சொல்லக்கூடியது ஜோசியமா தான் இருக்க முடியும், 6 நாள்ல சொல்லக்கூடியது அப்படிதான் இருக்க முடியும், 15 நாள்லயும் அப்படிதான் இருக்க முடியும். அதான் ஒரு 6 மாசம் டைம் கொடுக்க வேண்டாம். புதியவர்கள் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர், அதனால புதியவர்கள்ங்கிறது வந்து புதுசு கிடையாது அரசியல். சுதந்திரம் இந்தியா கிடைச்ச போது எல்லாருமே புதிய மினிஸ்டர்ஸ் தான்.
5: From whispers to clarity, Thalaiwal draws the line. No jealousy, no rivalry. But the bigger question now, will this finally put the speculation to rest or will it only add fresh fuel to the fire? With Pramod Madhav and Ankita Garg, Bureau Report, India Today. On his birthday, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu announced cash incentives for families having more than 2 children to tackle falling birth rates. Families may get Rs. 30,000 for a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. While the government says the move targets demographic decline, the opposition has criticized it as a diversionary tactic. Take a look at this report. It was Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu's birthday, but the gift was for the people of the state. Chief Minister Naidu announced major incentives for families with more than 2 children to tackle declining population growth. Under the proposal, families will get Rs. 30,000 on the birth of a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. This announcement was made after the government noticed decline in the young population and the fertility rate is also hitting all-time low of 1.5. It was feared that 23% of the population may be over the age of 60 by 2047. Chief Minister Naidu, like before, said that children should be seen as wealth, not a burden, as he flagged concerns over falling population numbers earlier multiple times. Chief Minister Naidu assured that the government's population management policy will focus on boosting the birth rate. He also added that Anganwadi centres will be strengthened to provide nutritious food for mothers and children through the Women and Child Welfare Department. But while the Chief Minister laid out the details of the plan, the opposition was quick to react. Congress MP Karthi Chidambaram took a swipe at the announcement with just one word: seriously? Meanwhile, YSR Congress called the move an attempt to divert attention from what he termed the failures of the TDP-led government in Andhra Pradesh. From cash incentives to political criticism, Naidu's population push has now triggered a large debate. Can money motivate bigger families, or is this simply a political headline ahead of a demographic challenge? Bureau Report, India Today. On that note, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and news through the very day. Thank you for watching. This is Riya Kundu.
19: You are watching India Today.